0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी के मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी

0: जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। चिंतन

परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस नश्वर संसार में कोई भी जीव या वस्तु स्थायी नहीं है। जिसका सृजन हुआ है एक निश्चित अवधि के पश्चात उसका अंत होना तय है, ये अटल सत्य है। अनेक बार हम पद प्रतिष्ठा के अहंकार में आकर इस सत्य को भूल जाते हैं। यही हमारे दुख और कष्टों का कारण है। जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है वह जीवन के अर्थ को जान लेता है और जीवन में आनंद उठाता है। अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्तियों में गिना जाता है। भविष्य का चिंतन छोड़कर वर्तमान में सत्कर्म करने से मनुष्य भयहीन और शांत रहता है। इसलिए लोभ, मोह, अहंकार आदि अवगुणों को त्याग कर स्वयं को मानवता की सेवा में समर्पित कर ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। इसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, मेरा नहीं है। ये वस्तुएं प्रकृति की देन हैं, मेरी नहीं है। केवल एक परमात्मा ही मेरा है और मैं उस पार ब्रह्म परमात्मा का हूं। ये बात यदि भली प्रकार समझ में आ जाए तो मनुष्य को शांति की प्राप्ति हो जाती है।

प्रभु की आराधना करने से हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। हमारे भीतर जिस लोभ मोह अहंकार आदि के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं, भक्ति के द्वारा वह समाप्त हो जाते हैं और हृदय में प्रेम जागृत होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 80।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिलीज किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

7:10 पर सुप्रभात कार्यक्रम में आज विशेष के साथ मोतीलाल नेहरू की जयंती, छत्रपति शाहू जी महाराज की पुण्यतिथि और रमणीक स्थल सांगला विषयों पर बात होगी। साथ ही पर्यावरण में उपयोगी पक्षी गिद्ध के बारे में जानकारी दी जाएगी। 7:40 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ प्याग। 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वर्ष 1995 में आई आंदोलन फिल्म के गीत। गीतांजलि कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 9:00। सुबह 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत। 10:30 पर हिमाचली गीत और लोकगीत सुनवाए जाएंगे। 11:05 पर पेश की जाएंगी कव्वालियां। 11:30 पर प्रसारित किया जाएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:00 सैनिक भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे सैनिकों के लिए। 12:30 पर घर परिवार कार्यक्रम में आज बातचीत का विषय रहेगा अपनी बेटियों को सिखाएं आत्मरक्षा के गुण, बनाएं उन्हें आत्मनिर्भर। साथ ही डिजिटल घड़ी के बारे में जानकारी दी जाएगी। खान पान में क्यों की सब्जी बनाने की विधि बतलाई जाएगी। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 5:10 पर सुनिएगा गैर फिल्मी भजन। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवा मंच 5:30 पर। विषय रहेगा युवाओं के लिए लक्ष्य निर्धारण का महत्व। 6:06 पर सदाबहार संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 9:00 कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 6:30। कार्यक्रम में आज चेरी और पलम की खेतीबाड़ी विषय पर बात होगी। 7:10 पर किसान वाणी कार्यक्रम में आज बातचीत का विषय रहेगा मधुमक्खी पालन रोजगार का उपयुक्त साधन। सबरस कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:00। 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा विख्यात गीतकार गुलशन बावरा पर। रात 10:00 सुनिएगा

नाटक 10:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से 9:20, 11:00, 3:00, 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिलीज किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है रिलीज किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से रिलीज किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 1:00 5:00, 7:00 और 11:00 हिंदी में समाचार, 1:05 5:05, 7:05 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9। तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिलीज किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। 6:55 होने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: अभियान कपास कांति इत्यस्य कृते 675,000 कोटि रूप्यकाणि स्वीकृतानि। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् इदम् अभियानं सर्वकारस्य फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन इति 5F विषयैः सह संरेखितमस्ति। कर्पासस्य उत्पादकतां वर्धयितुं च केन्द्रितमस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन आपत्कालीन ऋण रेखा प्रत्याभूति योजना 0.5 अनुमोदिता। योजनायाः अन्तर्गतं MSME इत्येतेषां कृते 100% ऋण प्रत्याभूतिः प्रदीयते। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन भारत सेमीकंडक्टर मिशन इत्यस्यान्तर्गतं इतोपि 2 सेमीकंडक्टर परियोजने अनुमोदिते।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: एतेषु सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सौकर्येण सह गैलियम नाइट्राइड तंत्रज्ञानस्य आधारे देशस्य प्रथमा वाणिज्य लघु माइक्रो LED प्रदर्शन सौविध्यम अंतर्भवति। केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 26 संसदि उपस्थापयितुं प्रस्तावोपि स्वीकृतः। श्री वैष्णव अवदत् यत् एतत् विधेयकं सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या अधिनियमः 29/650 इत्यस्य संशोधनं कर्तुं प्रयतते।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में पढ़ने लिखने और गणना की बुनियादी क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजे जाने के साथ ही औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है और इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अधिसूचना से निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेरा फेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया है। इस षड्यंत्र का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को रिसिन नामक घातक जैविक विष देना था।

दोस्तों गुड मॉर्निंग सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज 6 मई है। आज का दिन क्यों खास है, क्या क्या घटित हुआ आज के दिन, कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे, साथ ही सुनवाएंगे प्यारे प्यारे गीत। गीत वो जो आपके दिल को छू जाएं।

इस प्यारे से गीत के बाद सुप्रभात कार्यक्रम में बात करते हैं उन घटनाओं की जिनके कारण आज का ये दिन खास बन गया। ९९७ की बात करते हैं। आज के दिन फ्रांस की क्रिस्टीन जेनिन ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। 2004 में आज ही के दिन चीन ने सिक्किम को भारत का अंग माना। 2007 में फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस साकरोजी ने विजय हासिल की। बात करते हैं 1985 की। आज के दिन द्वितीय विश्व युद्ध में बेली पुलों के आविष्कारक सर डोनाल्ड बेली का इंग्लैंड में निधन हो गया। 1946 में आज के दिन प्रख्यात अधिवक्ता और महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भोला भाई देसाई का निधन हुआ। 1973 में पंजाबी भाषा के सुखवीर सुविख्यात कवि शिव कुमार बटालवी का निधन आज के दिन हुआ। और आज के दिन 2010 में प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस का निधन आज के दिन हुआ। किन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1861 की बात करते हैं। आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू के विषय में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। पहले आपको बताएं 1925 में कश्मीरी कवि अनुवादक और आलोचक रहमान राही का जन्म आज के दिन हुआ। आज ही के दिन 1964 में भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह का जन्म हुआ। और आज ही के दिन 1983 में भारतीय राइफल निशानेबाज गगन नारंग का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।

सुप्रभात, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में बात करते हैं मोतीलाल नेहरू की जयंती के विषय में। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता और ब्रिटिशकालीन राजनेता थे। मोतीलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती कार्यकर्ताओं में से एक थे। जलियांवाला बाग कांड के बाद 1919 में वह अमृतसर में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने। मोतीलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। मोतीलाल नेहरू पश्चिमी तरीके की शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रथम पीढ़ी के गिने चुने भारतीयों में से एक थे। उन्होंने कैम्ब्रिज से बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की और अंग्रेजी न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आरंभ किया। बाद में उन्होंने वकालत छोड़ दी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। मोतीलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर राष्ट्र सेवा को अपना धर्म बना लिया। वर्ष 1928 में उनके नेतृत्व में बनी नेहरू रिपोर्ट भारत का पहला स्वदेशी संविधान मसौदा थी, जिसमें डोमिनियन स्टेटस और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। उन्होंने विदेशी वस्त्रों का त्याग कर खादी को अपनाया और अपना घर आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। मोतीलाल नेहरू का संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग, कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। 6 फरवरी यानी 1931 6 फरवरी में मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया।

कहेगी। दोस्तों, आज छत्रपति शाहू जी महाराज की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में समाज को नई दिशा प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा, समानता, आरक्षण और सामाजिक न्याय की ठोस नींव रखी। छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। बाल्यकाल से ही वह शिवाजी महाराज की वंश परंपरा से जुड़ गए थे। महारानी आनंदीबाई ने उन्हें गोद लिया और इस प्रकार वह कोल्हापुर के छत्रपति बन गए। 1894 में महज 20 वर्ष की आयु में वह कोल्हापुर के शासक बने। उन्होंने अपने राज्य में निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। शोषित और पिछड़े वर्ग को के संबंध रखने वाले छात्रों के लिए उन्होंने अलग से छात्रावास खुलवाए। बालिकाओं की शिक्षा को उन्होंने विशेष रूप से बढ़ावा दिया। निर्धन और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिवाद के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने किसानों और श्रमिकों से वसूले जाने वाले अन्यायपूर्ण करों को कम किया और भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया। छत्रपति शाहू जी महाराज को राजऋषि और सामाजिक न्याय का जनक भी कहा जाता है।

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में बात करते हैं रमणीक स्थल सांगला के बारे में। सांगला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित एक खूबसूरत गांव है। ये बसपा घाटी में बसपा नदी के किनारे बसा हुआ है और उस घाटी की सबसे बड़ी बस्ती है। ये स्थल

स्थान समुद्र तल से लगभग 2621 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है। तिब्बती भाषा में सांगला का अर्थ है प्रकाश का मार्ग। ये स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सेब की बागानों और कामरू किले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत से मंदिर हैं। यहाँ के अधिदेवता बेरिंग नाग हैं। दो अन्य देवता माजेन नाग और पीरी नाग भी सांगला से संबंधित हैं। इनके अलावा बद्रीनाथ और छितकुल माता का मंदिर भी इस स्थान की धार्मिक आस्था का केंद्र है। ये स्थान भारत तिब्बत सीमा के पास स्थित है और पारंपरिक लकड़ी के घरों के लिए भी प्रसिद्ध है। रक्षम छितकुल वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ स्थित है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अप्रैल से अक्टूबर तक का समय इस स्थान पर जाने के लिए सबसे उपयुक्त रहता है।

सुप्रभात। कार्यक्रम में अब बात करते हैं पर्यावरण की आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी गिद्ध पक्षी के बारे में। गिद्ध कतई और काले रंग के भारी कद के पक्षी हैं जो बेहद तीव्र दृष्टि रखते हैं। सामान्यतः यह झुंड में रहते हैं और मृत मवेशियों के मांस का भक्षण करते हैं। शायद इसीलिए गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ये पक्षी जहां भी होते हैं वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। शिकारी पक्षियों के समान गिद्ध की चोंच भी टेढ़ी और मजबूत होती है, लेकिन इनके पंजे और नाखून ज्यादा तेज और मजबूत नहीं होते। ये किसी ऊंचे वृक्ष पर अपना भद्दा सा घोंसला बनाते हैं जिसमें मादा एक या दो सफेद अंडे देती है। भारत में गिद्धों की तीन प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लिंडर बिल्ड वल्चर और व्हाइट स्पंड वल्चर में बांटा गया है। अधिकांश गिद्धों के गले में एक बड़ी थैली होती है और ये लंबे समय तक बिना भोजन के भी रह सकते हैं। ये पक्षी घंटों तक हवा में उड़ सकते हैं। इनके लंबे चौड़े पंख लंबे समय तक उड़ते रहने में इनकी सहायता करते हैं। बहुत से गिद्ध खुले मैदानों, ऊंची चट्टानों या ऊंचे वृक्षों पर रहना ही पसंद करते हैं। विश्व भर में गिद्ध की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं जो रंग और आकार में भिन्न होती हैं। और दोस्तों, चलते चलते कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत।

0: सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के दहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला।
1: दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का सुप्रभात कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:40 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शुभ प्याग। ये कार्यक्रम हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं ओम प्रकाश और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रयाग FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तोलम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ मतदान और मतगणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
2: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय

0: मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
1: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
2: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली इस्तीफा नहीं दूंगी। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, नया पैतरा, भाजपा चुनाव आयोग पर आरोप। पत्र ने चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी के ऐलान को भी प्रमुखता से छापा है, हारे नहीं हराए गए, सड़क पर संघर्ष करूंगी। अमर उजाला ने विधानसभा चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मिले बधाई संदेश को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लॉम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Election Commission asks West Bengal Chief Secretary, DGP and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards post-poll violence. Election Commission issues notification for constitution of new assemblies in West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry following completion of electoral process. NIA charge sheets doctor, 2 others in ISIS linked bioterror plot to carry out mass poisoning. US President Donald Trump says Project Freedom to guide stranded vessels through Strait of Hormuz will be paused for a short period of time. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Delhi Capitals by 8 wickets. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Both leaders will hold wide-ranging discussions across the spectrum of bilateral relations, as also on regional and global issues of mutual interest. The President of Vietnam arrived in New Delhi yesterday on a 3-day visit to India. He was received by Minister of State for Home Affairs, Nityananda Rai, at the airport. He is accompanied by a higher-level delegation comprising several ministers and senior officials of the government of Vietnam. A strong business delegation is also accompanying the visiting dignitary. This is President Tho Lam's first state visit to India after being elected as the President of Vietnam in April this year. We have a report.
5: President of Vietnam Tho Lam will be accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. He will pay tributes to Mahatma Gandhi at the Rajghat. After the talks between Prime Minister Narendra Modi and the President of Vietnam, several MOUs will be signed and exchanged. President Draupadi Murmu will have a meeting with her Vietnamese counterpart at Rashtrapati Bhavan this evening. Lok Sabha Speaker Om Birla will call on the visiting dignitary. Mr. Tho Lam will also deliver the 56th Sapru House lecture today, organized by Indian Council of World Affairs. India and Vietnam share historical and civilizational ties which have steadily deepened over the years. President Tho Lam's visit coincides with the special occasion of the two countries marking the 10th anniversary of the elevation of relations to a comprehensive strategic partnership agreed during the visit of Prime Minister Modi to Vietnam in 2016. The engagement between the leaders is expected to provide fresh momentum to the robust bilateral relations and open new avenues for cooperation between India and Vietnam. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
4: Election Commission of India, ECI, has directed West Bengal Chief Secretary, Director General of Police and the Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards any incidents of post-poll violence. In a directive issued after reviewing the situation on the ground, the Commission stressed the need for strict and immediate action to maintain law and order following the assembly election results. The ECI asked the state administration and security agencies to take all necessary steps to prevent intimidation, reprisals or clashes linked to the electoral outcome. The poll body also instructed officials to ensure the safety and security of all citizens, particularly vulnerable groups and political workers, and to maintain a visible presence of security forces in sensitive areas. Senior officers have been asked to remain on alert and respond swiftly to any incidents reported from across the state. Election Commission EC has issued notifications for the constitution of new assemblies in West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry following the completion of the electoral process. The notifications have been sent to governors and lieutenant governors of the states and union territories, formally marking the end of the election cycle and setting the stage for the formation of new governments. A senior EC official said the issuance of the notification is a key constitutional step after the declaration of assembly election results. With this, the process of constituting the new assemblies is complete from the Commission's end. It enables the next steps in government formation as per laid down procedures, the official said. He added that the commission ensured adherence to all norms during the conduct of the assembly elections. The entire exercise from polling to counting was carried out in a free, fair and transparent manner. The BJP has said India is a democracy and it must always be respected. Reacting to alleged remarks by outgoing West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee that she will not resign, BJP spokesperson Sambit Patra termed the comments anarchic and urged restraint in making such statements. Mr. Patra said that the remarks are concerning because in the country's democracy, transfer of power has always taken place in a peaceful manner.
6: ये सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांति प्रिय तरीके से भारतवर्ष में होता आया है.
7: The transition of power has been very peaceful in India. In the last 75 years, India is known for this phenomenal democratic effect of its in the whole world. But today, what Mamata Banerjee has said and what she has done, I have to say with sorrow, this attack is not on the Bharatiya Janata Party. This attack is on democracy. This attack is on the constitution of India, that is, the constitution of Baba Saheb Ambedkar. Mamata Banerjee is saying that they have not lost and will not resign. This is the sense of entitlement and anarchy.
6: Mamata Banerjee hai ki wo keh rahi hai ki hum haare nahi hai aur hum resignation nahi
4: de. The BJP's appointed senior party leader and union minister Amit Shah as central observer for the election of the leader of the legislative party in West Bengal. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has been appointed as a central co-observer in the state. While Union Minister J.P. Nadda has been appointed as central observer for the election of the leader of the Legislative Party in Assam, Haryana Chief Minister Naib Singh Saini has been appointed as central co-observer in the state. Union Minister Dr. Mansukh Mandavia and BJP's Puducherry in charge, Nirmal Kumar Surana, have been appointed as central observers for the election of the leader of Legislative Party in Puducherry. U.S. President Donald Trump has congratulated Prime Minister Narendra Modi after BJP's victory in the recent assembly elections. White House spokesperson Khush Desai said President Trump has congratulated Prime Minister Modi on this recent historic and decisive election victory. In Tamil Nadu, TVK, which has emerged as the single largest party in the assembly elections, is likely to stake its claim to form a new government in the state. The party said its leader Joseph Vijay will meet the governor Rajendra Vishwanath Arlekar today and stake TVK's claim to form a new government in the state. The party needs the support of more than 10 MLAs to gain majority in the state assembly. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. The National Investigation Agency, NIA, has filed a charge sheet against three people, including a doctor, for the involvement in an ISIS-linked conspiracy to carry out mass poisoning in public spaces using a biological toxin. The accused Hyderabad-based Dr. Sayyed Ahmed Mohiuddin and co-accused Azad and Mohammed Suhail from Uttar Pradesh have been charge-sheeted before a special NIA court in Ahmedabad, Gujarat. Working under the guidance of the respective Islamic State-linked foreign-based handlers, the accused had operated in a coordinated manner to recruit vulnerable youth radicalized by the handlers to support jihad and spread terror through prohibited weapons and bioterrorism. They had planned to use ricin, a highly toxic substance derived from castor seeds and classified under Schedule 1 of the Chemical Weapons Convention, to carry out the nefarious agenda of ISIS. The case was originally registered by the Gujarat Anti-Terrorism Squad, ATS, following the arrest of Dr. Mohiuddin, an MBBS from China, after he was caught at a toll plaza carrying illegal weapons. In Punjab, two explosions outside Army and BSF premises in Amritsar and Jalandhar last night have put the security forces on high alert. Although no report of any casualty has been reported from both the places, but it has caused concerns in the area. In Amritsar, a blast occurred outside BSF campus adjoining Army establishments in well-guarded Khasa cantonment area. This road leads to the Attari border. U.S. President Donald Trump has announced that Project Freedom, a mission to guide stranded vessels through the Strait of Hormuz, will be paused for a short period of time. In a social media post, Trump said that great progress had been made towards reaching a comprehensive agreement with Iranian representatives to end the ongoing conflict. He explained that in light of the recent military developments and the advancement of diplomatic talks, there has been a mutual decision to pause the escort operations under Project Freedom for a short period. Trump added that the pause will allow time to see if a final agreement between the U.S. and Iran can be reached. The U.S. president's announcement came as Secretary of State Marco Rubio said the initial U.S.-Israeli offensive in Iran, Operation Epic Fury, is over. After achieving its objectives, we have more from a West Asia correspondent.
8: The situation across West Asia remains volatile, with multiple flashpoints threatened to unravel already fragile ceasefire arrangements. The Strait of Hormuz has once again become a focal point of confrontation as U.S. forces intensify efforts to secure commercial shipping lines. The UAE's interception of Iranian missiles and drones marks a significant escalation, raising concerns about widening the scope of conflict. Meanwhile, continued exchanges between Israel and Hezbollah in southern Lebanon suggest that hostilities are spreading across multiple fronts. Diplomatic channels remain active, but with competing narratives from Washington and Tehran, the risk of miscalculation remains high. Vinod Kumar, Akashvani News from Dubai.
4: Union Education Minister Dharmendra Pradhan will launch the School Management Committee SMC Guidelines 2026 at Vigyan Bhavan in New Delhi today. School Management Committee SMC play a vital role in strengthening foundational literacy and numeracy FLN under Nipun Bharat Mission in line with the vision of NEP 2020, which prioritizes universal FLN by grade 2. In IPL cricket, Chennai Super Kings defeated Delhi Capitals by 8 wickets at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night as Sanju Samson slammed an unbeaten 87 and Karthik Sharma contributed with 41. Today, Sunrisers Hyderabad and Punjab Kings will clash at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heavy rainfall over Bihar and Gangetic West Bengal today. IMD said the thunder squalls with wind speeds reaching up to 60 km per hour are also expected over these regions till tomorrow. It added that Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Sikkim are also likely to experience heavy rainfall today. The Met Department further forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Sunday. Meanwhile, the weather agency has predicted heat wave conditions at isolated places over West Rajasthan from Saturday to Monday. IMD also said that hot and humid conditions are expected over Konkan and Goa till Sunday. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
9: Thank you, Abhishek. The West Bengal Assembly elections continue to dominate headlines this morning. Kaun banega CM? BJP names Shah, Nadda as observers for Bengal, Assam, leads the Statesman. Suvendu tipped to be Chief Minister of Bengal, oath likely on May 9, speculates the Asian Age. The Asian Age writes that the power centre of the West Bengal government is all set to return to the historic Writers Building in the heart of Kolkata from Novonno in Howrah, the offices of outgoing CM Mamata Banerjee government after the regime change in the state. The Tribune in its editorial piece says, post-poll rancour, defiant Mamata rejects Bengal verdict. The paper writes that the acrimony witnessed during the West Bengal Assembly elections has intensified following the declaration of results. The aftermath is not unfolding as a routine democratic transition. Outgoing Chief Minister Mamata Banerjee has refused to accept the verdict. Ruling out her resignation, it's apparent that Mamata's agitational politics will keep the new government on its toes right from the word go. Cabinet gives nod to make insult to Vande Mataram an offence, reports The Hindu. Uttar Pradesh's new cuisine map leaves meat off the menu, lists only veg iconic dishes across 75 districts, says Hindustan Times. India condemns UAE strike, calls it unacceptable, notes the Pioneer. And finally, Washington Post, New York Times among top winners of Pulitzer Prizes, reports Hindustan Times. And with that, it's back to you, Abhishek.
4: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Vietnam Tho Lam in New Delhi today. Election Commission asks West Bengal Chief Secretary, DGP and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards post-poll violence. Election Commission issues notification for constitution of new assemblies in West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu, Puducherry following completion of electoral process. NIA charge sheets doctor, two others in ISIS-linked bio-terror plot to carry out mass poisoning. US President Donald Trump says Project Freedom to guide stranded vessels through Strait of Hormuz will be paused for a short period of time. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Delhi Capitals by 8 wickets. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
10: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वर्ष 1995 में आई आंदोलन फिल्म के गीत।

आंदोलन 1995 में आई हिंदी भाषा की फिल्म है। फिल्म का निर्देशन अजीज सेजवाल ने किया। फिल्म के लिए गीत लिखे गीतकार समीर ने और संगीत दिया संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई संजय दत्त, गोविंदा, ममता कुलकर्णी और सोमी अली ने।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं 1995 में

आंदोलन फिल्म के गीत। फिल्म का निर्माण किया साजिद नाडियाडवाला ने, निर्देशन किया अजीज सेजवाल ने।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं 1995 में आई आंदोलन फिल्म के गीत। इस फिल्म के गीतों को लिखा समीर ने, संगीत दिया नदीम श्रवण ने और इस फिल्म के गीतों को गाया कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, रूप कुमार राठौड़, सपना मुखर्जी, बाली ब्रह्म भट्ट और सुदेश भोसले ने।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं आंदोलन फिल्म के गीत। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई संजय दत्त, गोविंदा, ममता कुलकर्णी और सोमी अली ने।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं आंदोलन फिल्म के गीत। फिल्म में कुल 8 गीत हैं जो काफी लोकप्रिय रहे। कुल मिलाकर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही।

आंदोलन फिल्म के गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। गीतांजलि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के गाए आग और शोला फिल्म के इस गीत के साथ। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है।

मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में लीजिए सुनिए खुदगर्ज फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है इंदिवर की, संगीत राजेश रोशन का है।

मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में खुदगर्ज फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतांजलि कार्यक्रम में लीजिए सुनिए प्यार मोहब्बत फिल्म का ये गीत। आवाज हैं कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम अभी जारी है। कार्यक्रम के बाकी नगमे आप सुनेंगे 9:30 पर। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिलीज किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन, 17 मई को होगा मतदान। पंचायत चुनावों के लिए कल से भरे जाएंगे नामांकन पत्र, 12 मई को होगी नामांकन पत्रों की जांच। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है राज्य सरकार। और कुल्लू जिले में मढ़ी से आगे रोहतांग दर्रे की ओर किसी भी प्रकार की वाहन आवाजाही अगले आदेशों तक पूरी तरह बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के 17 मई को होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवार आज दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र वापिस ले सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आज ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 51 शहरी निकायों में कुल 1426 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 32 नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं, जबकि 1394 नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए हैं। नगर पंचायत और नगर परिषदों में मतों की गिनती 17 मई को मतदान पूरा होने के बाद शुरू होगी, जबकि नगर निगम चुनाव के लिए पड़ने वाले वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। प्रदेश की 3754 ग्राम पंचायतों में कल 7, 8 और 11 मई को नामांकन भरे जाएंगे। इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। तीन चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए 26, 28 और 30 मई को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव होगा। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं, जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 52,349 युवा पहली बार वोट डालेंगे। लाहौल स्पीति जिला की ताबो पंचायत में ग्रामवासियों ने पंचायत नेतृत्व का चयन सर्वसम्मति से किया है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि ताबो पंचायत का ये कदम न केवल स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, बल्कि अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणादायक है।
1: स्पीति के ताबो पंचायत में ग्रामवासियों ने आपसी सहमति और सौहार्द का परिचय देते हुए पंचायत नेतृत्व का चयन सर्वसम्मति से किया है। कुमारी छेरिंग किंजम को पंचायत प्रधान और थिनले दोर्जे को उपप्रधान चुना गया है। इस निर्णय के बाद पूरे पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बिना किसी विवाद और चुनावी प्रतिस्पर्धा के हुआ ये चयन ग्रामीणों की एकता और समझदारी और आपसी विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। ग्रामवासियों ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में पंचायत क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए किलाड़ में दूसरी रिहर्सल आयोजित की गई। इस अवसर पर निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पांगी के आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने बताया कि कुल 19 ग्राम पंचायतों में प्रधान व उप प्रधान, 97 वार्ड सदस्य, 15 पंचायत समिति सदस्य और एक जिला परिषद सदस्य के चुनाव में 15,791 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि पांगी में 26 व 28 मई को दो चरणों में चुनाव होंगे, जिनके लिए 97 मतदाता बूथ और 52 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संबंधी सामग्री का आवंटन 9 और 10 मई को किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में सभी अधिकारियों को सारी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने दूरदराज क्षेत्रों में स्थापित मतगणना केंद्रों में बिजली के वैकल्पिक साधनों की भी व्यवस्था करने को कहा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणना क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। ये नई शिक्षा नीति 2020 के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें कक्षा 2 तक सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणना क्षमता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट आने के बावजूद भी प्रदेश सरकार दोषी पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है, मगर सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस ईवीएम के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी, आज मुख्यमंत्री उसी ईवीएम को बाकी राज्यों में हार का कारण बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हार के समय ईवीएम को दोषी ठहराना तर्कसंगत नहीं है।
2: जिस ईवीएम की वजह से वो खुद जीत, आप कल्पना करिए, ईवीएम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में वोट हुए, ईवीएम के माध्यम से परिणाम निकले, सरकार कांग्रेस पार्टी उस वक्त तो प्रश्न खड़ा नहीं किया, लेकिन वेस्ट बंगाल में, आसाम में, पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो ईवीएम खराब है। वही ईवीएम जिस ईवीएम ने हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार को बनाया, हमने तो प्रश्न खड़ा नहीं किया। तो इसलिए अब तथ्यहीन बातें हैं, अर्थहीन बातें हैं, कोई मतलब नहीं है, और कांग्रेस को पूरे देश के लोगों ने नकारा है, सिरे से नकारा आ रहा है, अब हिमाचल प्रदेश भी आने वाले समय में निकालेगा।
0: कुल्लू जिला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग दर्रा जाने के उत्सुक सैलानी अब मढ़ी तक जा सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मढ़ी से आगे रोहतांग दर्रा की ओर किसी भी प्रकार की वाहन आवाजाही अगले आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
3: तक जाने के लिए पर्यटकों को एनजीटी के नियमानुसार ऑनलाइन परमिट हासिल करना होगा। एनजीटी के नियमानुसार गुलाबा से आगे मढ़ी व रोहतांग की ओर एक दिन में सिर्फ 1200 वाहन ही जा सकते हैं, जिनमें 800 पेट्रोल व 400 डीजल वाहन होंगे। इसके अतिरिक्त गुलाबा स्थित अस्थायी पुलिस बैरियर व मढ़ी में एक अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर स्थापित किया जाएगा। वहीं सड़क मरम्मत एवं टारिंग कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए रोहतांग मार्ग को प्रत्येक मंगलवार को आगामी 2 सप्ताह अर्थात 19 मई 2026 तक बंद रखा जाएगा। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ है। बीते 4 दिनों में हुई वर्षा के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंडक महसूस की जा रही है, जबकि निचले व मैदानी क्षेत्रों में उमस से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार के मुताबिक आज से प्रदेश में मौसम में सुधार आने की संभावना है।
4: 6 मई से लेकर 9 मई तक जो हमारे जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, यहाँ पे मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। हालांकि जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें विशेषतः डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, इसके जो आसपास क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में उसमें एक दो स्थानों में 6 मई से लेकर 9 मई तक हल्की बारिश हो सकती है। 7 मई से लेकर 9 मई तक प्रदेश में कोई अलर्ट नहीं।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, 44 से 54 आयु वाले भी डकार रहे वृद्धावस्था पेंशन। उपमंडल रोहडू की तांगणू जांगलिख पंचायत में 45 फर्जी लाभार्थियों का मामला आया सामने, विभाग कर रहा जांच। पंजाब केसरी ने पंचायत चुनाव पर लिखा है, कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू, एक सीट पर कई दावेदारों से गांवों में बड़ी हलचल। दैनिक जागरण ने खबर दी है, नशा तस्करी के आरोप तय तो नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, राज्यपाल से स्वीकृति के बाद राजपत्र में नियम अधिसूचित। मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, बर्फबारी, बारिश से 6 डिग्री तक गिरा पारा, मई के दूसरे सप्ताह भी जारी रहेगी ठंड। हिमाचल दस्तक के मुताबिक, हिमाचल में मई में बर्फबारी, बारिश व ओलावृष्टि से दिसंबर जैसी ठंड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन, 17 मई को होगा मतदान। पंचायत चुनावों के लिए कल से भरे जाएंगे नामांकन पत्र, 12 मई को होगी नामांकन पत्रों की जांच। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है राज्य सरकार। और कुल्लू जिले में मढ़ी से आगे रोहतांग दर्रे की ओर किसी भी प्रकार की वाहन आवाजाही अगले आदेशों तक पूरी तरह बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है गीतांजलि कार्यक्रम के बाकी नगमे।

0: जवाब हम देंगे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी अनुराधा पोटवाल और शब्बीर कुमार की।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
4: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जान

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ऑलराउंडर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में डाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में लिचिप्स ने लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के युगल स्वरों में राधा का संगम फिल्म का गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार अनु मलिक।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में राधा का संगम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतांजलि कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बपी लहड़ी की बनाई तर्ज पर अनजान का लिखा गीत। ये गीत हमने लिया है इल्जाम फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और शब्बीर कुमार की।

0: अरे का ठीक कहते हैं, जब दुई दिल प्यार करे तो ई ससुरा।
1: ससुरा? अरे कौन ससुरा?
0: अरे हमार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सिलसिला फिल्म का गीत इस समय आप सुन रहे हैं। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। संगीत दिया है शिव हरि ने और गीतकार है रजेंद्र।

0: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
1: Why not make a bold move this month?
0: Upgrade to the bold Baleno, a drive that feels bolder, smoother and makes every journey special.
1: Presenting your Baleno, the perfect combo of style, technology and safety.
0: EMI starting at just ₹3,999 per month.
1: And yes, it's available at an effective price of 5.64 lakhs.
0: Stock limited. Hurry, get 360 degree camera, head-up display, Smart Play Pro Plus, 6 airbags jaise kai features.
1: Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: अप्रैल धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
4: तो इंतजार कैसा? दिस अप्रैल ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। टीएनसी अप्लाई।
0: April just turned up the heat with exciting offers among the Nexa range.
1: Why not make a bold move this month?
0: Upgrade to the bold Baleno, a drive that feels bolder, smoother and makes every journey special.
1: Presenting your Baleno, the perfect combo of style, technology and safety.
0: EMI starting at just ₹3,999 per month.
1: And yes, it's available at an effective price of 5.64 lakhs.
0: Stock limited. Hurry, get 360 degree camera, head up display.

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन रहे हैं आप इस गीत को। इस गीत को आप सुन रहे हैं फ़कीर एफ़एम से।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज़ में।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीत व लोक गीत। कार्यक्रम का पहला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं धीरज शर्मा की आवाज़ में।

हिमाचली गीत व लोक गीत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, प्रदीप परदेसी व फौजा सेन की आवाज़ों में।

हिमाचली गीतों का आनंद ले रहे हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अंतिम हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुनील राणा की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीत व लोकगीत आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार लेके जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के 17 मई को होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवार आज दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आज ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 51 शहरी निकायों में कुल 1400

0: 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 3 चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए 26, 28 और 30 मई को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव होगा। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट आने के बावजूद भी प्रदेश सरकार दोषी पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है, मगर सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस ईवीएम के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी, आज मुख्यमंत्री उसी ईवीएम को बाकी राज्यों में हार का कारण बता रहे हैं।
1: जिस ईवीएम की वजह से वो खुद जीत, आप कल्पना करिए, ईवीएम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में वोट हुए, ईवीएम के माध्यम से परिणाम निकले, सरकार कांग्रेस पार्टी उस वक्त तो प्रश्न खड़ा नहीं किया, लेकिन वेस्ट बंगाल में, आसाम में, पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो ईवीएम खराब है। वही ईवीएम जिस ईवीएम ने हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार को बनाया, हमने तो प्रश्न खड़ा नहीं किया। तो इसलिए अब तथ्यहीन बातें हैं, अर्थहीन बातें हैं, कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस को पूरे देश के लोगों ने नकारा है, सिरे से आ रहा है, अब हिमाचल प्रदेश भी आने वाले समय में निकालेगा।
0: चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए किलाड़ में दूसरी रिहर्सल आयोजित की गई। इस अवसर पर निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पांगी के आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने बताया कि कुल 19 ग्राम पंचायतों में प्रधान व उपप्रधान, 97 वार्ड सदस्य, 15 पंचायत समिति सदस्य और एक जिला परिषद सदस्य के चुनाव में 15,791 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लाहौल स्पीति जिला की ताबो पंचायत में ग्रामवासियों ने पंचायत नेतृत्व का चयन सर्वसम्मति से किया है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि ताबो पंचायत का ये कदम न केवल स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, बल्कि अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणादायक है।
2: स्पीति के ताबो पंचायत में ग्रामवासियों ने आपसी सहमति और सौहार्द का परिचय देते हुए पंचायत नेतृत्व का चयन सर्वसम्मति से किया है। कुमारी छेरिंग किंजम को पंचायत प्रधान और थिनले दोर्जे को उपप्रधान चुना गया है। इस निर्णय के बाद पूरे पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बिना किसी विवाद और चुनावी प्रतिस्पर्धा के हुआ ये चयन ग्रामीणों की एकता और समझदारी और आपसी विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। ग्रामवासियों ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में पंचायत क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संबंधी सामग्री का आवंटन 9 और 10 मई को किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में सभी अधिकारियों को सारी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए हैं। कुल्लू जिला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग दर्रा जाने के उत्सुक सैलानी अब मढ़ी तक जा सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मढ़ी से आगे रोहतांग दर्रा की ओर किसी भी प्रकार की वाहन आवाजाही अगले आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
3: तक जाने के लिए पर्यटकों को एनजीटी के नियमानुसार ऑनलाइन परमिट हासिल करना होगा। एनजीटी के नियमानुसार गुलाबे से आगे मढ़ी व रोहतांग की ओर एक दिन में सिर्फ 1200 वाहन ही जा सकते हैं, जिनमें 800 पेट्रोल व 400 डीजल वाहन होंगे। इसके अतिरिक्त गुलाबा स्थित अस्थायी पुलिस बैरियर व मढ़ी में एक अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर स्थापित किया जाएगा। वहीं सड़क मरम्मत एवं टारिंग कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए रोहतांग मार्ग को प्रत्येक मंगलवार को आगामी 2 सप्ताह अर्थात 19 मई 2026 तक पूर्णतः बंद रखा जाएगा। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी कवालियां। इस कवाली को आप सुन रहे हैं कच्चे धागे फिल्म से।
5: जो सबको

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
3: और मैं हूँ आपका साथी अजीत। नमस्कार। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे जी ने सुविधा

0: चार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं,
1: शिक्षा से अधिक शक्तिशाली कोई और माध्यम नहीं है जिसने मानवता और पूरे विश्व का उपकार किया है। अच्छी शिक्षा ही हमें सही अर्थों में मानवता सिखाती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। श्रोताओं, इस संदर्भ में मुझे महान भौतिक विज्ञानी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रसिद्ध कथन याद आता है। उन्होंने कहा था,
1: शिक्षा केवल कुछ तथ्यों को याद करना नहीं है, लेकिन ये मन और मस्तिष्क को नवाचारी ढंग से सोचने के लिए विकसित करना है।
0: जी, तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
0: और संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
1: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी अवाना, प्रियांशी अवाना, रियांशी अवाना, ओजस अवाना, अनाया अवाना, गुरदीप अवाना और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी एवं अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 के कार्यक्रम में सुश्रुत के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ यमुना नदी के उद्गम और बकरवाल जनजाति के जीवन पर दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। भविष्य में भी ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की हमें आपसे अपेक्षा है।
1: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की।
1: कल हमने बुनियादी जानकारी ली थी सागर और महासागर की, और इनके बीच के अंतर को जाना था। आज जानेंगे एक और रोचक बात। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को बताइए ना कि वो रोचक बात क्या है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे।
0: विमलेश जी, बहुत पहले इसी कार्यक्रम में मैंने अपना संस्मरण बताया था, आपको याद होगा
1: जी।
0: और वो ये था कि जब मैं पहली बार चेन्नई के समुद्री तट मरीना बीच पर गया था
1: जी,
0: तो समुद्र की विशालता को देखकर मैं चकित रह गया था। लेकिन आपको याद तो जरूर होगा कि मैंने वहाँ क्या किया था सबसे पहले।
1: अजीत जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने सबसे पहले समुद्र के पानी को चखा था।
0: जी, आपको बिल्कुल याद है, पाठ्य पुस्तकों में तो पढ़ा था कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया था।
1: तो फिर क्यों ना आज चर्चा की जाए कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है।
0: अरे वाह, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली विमलेश जी। तो फिर आइए सबसे पहले जाने की शुरुआत कहाँ से होती है।
1: शुरुआत होती है वर्षा से। वर्षा का पानी जब धरती पर गिरता है, ये पानी मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है
0: जी।
1: मिट्टी और चट्टानों में कई प्रकार के खनिज होते हैं जो वर्षा के पानी में घुल जाते हैं। मुख्य खनिज है सोडियम क्लोराइड।
0: जी, नमक का रासायनिक नाम भी सोडियम क्लोराइड ही तो है।
1: बिल्कुल। फिर होता यह है कि वर्षा का जल या भूमिगत झरनों का जल बहता हुआ नदियों में मिल जाता है। नदियाँ इन घुले हुए खनिजों को बहाकर समुद्र तक ले जाती हैं। सैकड़ों नदियाँ यदि अपवाद छोड़ दें तो समुद्र में ही मिलती हैं।
0: तो फिर इस तरह हर दिन, हर घंटे, हर मिनट थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक समुद्र में जमा होता रहता है।
1: बिल्कुल।
0: अब विमलेश जी, हम बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया कोई एक दो दिनों की तो होती नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है ना।
1: जी अजीत जी, फिर तो जाहिर है कि लाखों करोड़ों वर्षों में नदियों ने कितना नमक समुद्र में जमा कर दिया होगा। चलिए अब एक दूसरे आयाम को समझते हैं। दूसरा आयाम है वाष्पीकरण।
0: तो दूसरे आयाम को जरा आप ही विस्तार से समझाइए।
1: जी जरूर। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक नहीं उड़ता, नमक वहीं रह जाता है। एक उदाहरण देती हूँ
0: जी।
1: यदि आप किसी बर्तन के पानी में नमक घोलकर उस पानी को गर्म करें तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन नमक वहीं रह जाएगा। यही प्रक्रिया समुद्र में भी होती है।
0: विमलेश जी, श्रोताओं को बता दें कि एक और भी बहुत बड़ा कारण है
1: जी
0: समुद्र के पानी के खारा होने का।
1: बताइए।
0: और वो ये है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और पानी के अन्य स्रोत भी तो होते हैं
1: जी,
0: जो पानी में नमक मिलाते हैं। यानी नमक सिर्फ नदियों से ही नहीं लेकिन समुद्र के अंदर से भी आता है।
1: जी ये बात तो है, लेकिन अजीत जी मेरे मन में एक और प्रश्न है, वो ये है कि इस प्रकार तो नमक बढ़ता ही रहेगा, फिर पानी कहाँ बचेगा? वो तो नमक का गाढ़ा घोल बन जाएगा। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ।
0: वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने विमलेश जी, यही तो कमाल है प्रकृति का। दरअसल होता यह है कि कुछ नमक समुद्री जीव उपयोग कर लेते हैं जैसे कोरल, और कुछ नमक समुद्र की तलहटी में ही रह जाता है
1: जी।
0: तभी तो समुद्र में नमक की मात्रा में संतुलन बना रहता है।
1: जी सचमुच अद्भुत है प्रकृति। इस संतुलन को आंकड़ों में ऐसे समझना चाहिए कि औसतन समुद्र के पानी में 3.5% नमक होता है, यानी 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी।
1: जी
0: तो श्रोताओ, अब ये भी जानिए।

0: श्रृंखला में आज की चर्चा हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आइए सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है? 8800-440-559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है द स्मार्ट मंकी।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से एक बंदर की मजेदार गतिविधियों के बारे में बताते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और विशेषकर कूड़े के समुचित निपटान की चर्चा की गई है।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a dustbin nearby. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Farida and Anju saw this and felt ashamed. They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. Have you seen people throwing packets or bottles in the park or on the road? Talk about it. After having biscuits, what do you do with the wrapper? Is there a dustbin in your school? Do you know where it is?
0: The Smart Monkey. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Artist, Farhan Ali Naqvi. Recorded by Sangeet Kumar. Assistance in production, Jagabandhu Jana. Directed and produced by Ajit Horo. Dear listeners, if you want to give your feedback on our program, you are most welcome to contact us on our IVRS number 8800-440-559. We may be contacted as well on our email address. Our email address is audio@ciet.nic.in. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलूं।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: राग देसी।
1: राग रस पर से श्रृंखला के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में राग देसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग देसी की व्युत्पत्ति, थाट, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में।

राग देसी। राग देसी की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद अर्थात कोमल ग और कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी-कभी इसमें कोमल धैवत अर्थात कोमल ध का प्रयोग कर लिया जाता है। इसके आरोह में गंधार

हेवत यानी ग और ध ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोहों में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर पंचम यानी प है और संवादी स्वर ऋषभ यानी रे है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। राग देसी के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

राग देसी की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग देसी की स्वर मालिका की स्थाई

राग देसी की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है आजादी का ध्वज लहराया। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है सैनिकों के लिए। कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: 6.70 lakh.
1: Yes, rupees 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your prongs today.
0: Hurry! Offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
4: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
5: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
6: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
1: Yes, rupees 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
0: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.72 lakhs.
1: Yes, rupees 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
6: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
4: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
5: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
7: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में कर्ज फिल्म का यह गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में कर्ज फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: अप्रैल धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.76 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
3: तो इंतजार कैसा, 10 अप्रैल ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
4: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
5: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
5: Yes, rupees 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में

सनिक भाई और लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। सनिक भाइयों, जय हिंद।

FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए और दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम घर परिवार। कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को, सखियों को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते और सभी सखियों का स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम घर परिवार में। सखियों, हर दिन की तरह आज फिर से हाजिर हो गए हम ढेर सारी जानकारियां, गीत संगीत व स्वादिष्ट लजीज पकवान लेकर। पकवान तो हम बनाएंगे और खाएंगे भी, उससे पहले करते हैं आज की बातचीत आपके साथ साझा। सखियों, आज हम बात करेंगे अपनी बेटियों के बारे में और थोड़ी सी चर्चा हमारी होगी कि बेटियों को किस तरह से हम सिखाएं आत्मरक्षा के गुण और किस तरह से उन्हें बनाएं आत्मनिर्भर। सखी, बेटियों की बात हो रही है तो हमारी बेटियां परिवार, समाज और राष्ट्र का गौरव है, जो प्रेम शक्ति और संस्कारों का प्रतीक है। और हमारी बेटियां शिक्षा, खेल और रक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर परचम भी लहरा रही हैं। बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी विशेष योजनाएँ भी चला रही है। शिक्षा और करियर की इनकी बात करें तो हमारी बेटियाँ फाइटर पायलट से लेकर खिलाड़ी तक हर क्षेत्र में आगे हैं। पहले के समय की बात करें सखियों, तो हर कोई ना कोई जो है बेटियों के पैदा होने पर बहुत ही सैड हो जाते थे या उदास हो जाते थे या फिर उनका पैदा होना ही अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन आज के समय की बात करें कि आज का समय इतना बदल गया है कि आज बेटियों के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं और बेटियों को बेटों के बराबर समझा जाता है। उन्हें बेटों के समान शिक्षा दी जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने फैसले जो है खुद ले सके। सखियों, बात करें थोड़ी सी बेटियों की आत्मरक्षा की, तो आत्मरक्षा हमारी बेटियां कैसे करें इसके लिए उन्हें थोड़ा सा पहले से ही पता होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। कैसे उन्हें अपना बचाव करना है इसके लिए जागरूकता सखियों बेहद ज़रूरी है। आत्मविश्वास और सही तकनीक से खतरों से बचना है। मुख्य कौशल में सतर्कता, शारीरिक हमले, आसपास की वस्तुओं का उपयोग, कानूनी रूप से उचित बल का प्रयोग शामिल है। ये हर उम्र की बेटियों के लिए आवश्यक सुरक्षा कौशल है। तो सुखियो, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके लिए साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस पहले प्यारे से गीत के साथ।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: खार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सखी, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप कार्यक्रम सुन रही हैं घर परिवार, और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी सखी सुमन। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी अपनी सखियों के साथ करनी हैं। तो सखियों, बेटियों की आत्मरक्षा की हम बात कर रहे थे, तो हमें अपनी बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने हैं। आज के समय में ये बेहद ज़रूरी है, जिसमें ना सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत अपनी बेटियों को बनाना है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाना है। आत्मरक्षा का मतलब सखियों सिर्फ लड़ना नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना है। शारीरिक तकनीकों की सखियों बात करें तो इसमें मार्शल आर्ट क्लास, जिसमें जूडो कराटे और सिखाए जाते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी बेटियों को आनी चाहिए, ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इसके साथ साथ हमलावरों के कमज़ोर अंग, जैसे उनके नाक, आँख, गला और पेट के निचले हिस्से पर भी हम प्रहार कर सकती हैं। इसे हथेली के निचले हिस्से से नाक पर तेज़ी से मारना सिखा सकते हैं, और अगर हमलावर बहुत पास हो तो कोहनी से उसकी ठोड़ी या छाती पर भी वार किया जा सकता है। इसके लिए सखियों, मानसिक सतर्कता बेहद ज़रूरी है। हालात के प्रति जागरूकता यानी सिचुएशन अवेयरनेस हमेशा अपने आसपास के माहौल पर नज़र रखना सिखाती है। अक्सर सखियों, हमने देखा है कि अचानक बहुत सारे बच्चे यूं ही कह सकते हैं कि हमारी बेटियां चलते समय फ़ोन उनके कानों पर लगा होता है, जिससे उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता है और उनकी बात कोई और भी सुन सकता है, या उनका पीछा भी आसानी से कर रहा होता है और वो फ़ोन पर बिज़ी होती हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। इसलिए हमें बेटियों को बताना है कि वो जब भी चले तो सतर्क होकर चले। इन छोटी छोटी बातों को अपना कर हम बड़े बड़े हादसों को होने से टाल सकती हैं। कहीं भी अकेले जाना हो तो सुनसान रास्तों को नहीं चुनना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को ये बताना है कि जब भी कहीं जाना हो तो भीड़ भड़के वाले या रौनक वाले रास्ते से जाएं, जहां पर उनको कोई परेशानी हो तो और लोग उनका साथ दे सके। तो सखियों, ज़रूरत है हमारी बेटियों को जागरूक होने की। जागरूक होंगी तो वह दूसरी सखियों को भी, दूसरी बेटियों को भी जागरूक कर पाएंगी। और हाँ सखियों, खासकर हम माताओं को अपनी बेटियों को बताना है कि कहीं किसी व्यक्ति या किसी स्थिति में असुरक्षा महसूस हो तो तुरंत वहां से हट जाना चाहिए, ताकि हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी ना हो। और कई बार सखियों, हमारी बेटियां अपनी आवाज़ का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, यानी ज़ोर से चिल्ला सकती हैं, ज़ोर से बोल सकती हैं, ताकि हमलावर थोड़ा सा डर जाए, ताकि आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हो और हम अपनी बढ़ती बेटियों को ये बता सकती हैं कि वो कमज़ोर नहीं हैं, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। सखियों, बेटियों को आत्मरक्षा के गुणों के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाना है, ताकि जीवन की चुनौतियों का सामना भी वो कर सके। हमें अपनी बेटियों को बदलते समय के साथ साथ सशक्त बनाना है, और आज भी हमारी बेटियाँ अपने करियर अपनी मर्जी से नहीं, अपने करियर को खुद चुन सकती हैं, और अपनी मर्जी से तो वह चुन ही सकती हैं, उसमें अपने माता पिता की भी सहायता ले सकती हैं। और इसका बड़ा कारण आत्मनिर्भरता है, और आत्मनिर्भर होकर वो जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। आत्मनिर्भर बनना ही कामयाबी की सखियों पहली सीढ़ी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए अभिभावकों का सहयोग और प्रोत्साहन बेहद बेहद ज़रूरी है। हमें अपनी बेटियों के टैलेंट को प्रोत्साहित करना है। किसी विषय में उनकी रुचि ज़्यादा हो, वहाँ उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। ये जानना उनके लिए, हम पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे किस ओर बढ़ना चाहते हैं। ये नहीं है कि हमें अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपनी है। आजकल के समय में सखियों, कंपटीशन बहुत है, और कई बार बच्चे असफल भी हो जाते हैं। तो निराश नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखनी है। निराशा तो जीवन में बहुत ही हमें अंधेरे में धकेल देती है। निराश बिल्कुल नहीं होना है, और आगे बढ़ने की तैयारी फिर से करनी है। अगर गिर भी जाते हैं, फिर से उठना है और आगे बढ़ना है। कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती है। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए बच्चों को पहले से ही हारने और हार पर सफल होने की क्षमता विकसित करना सिखाएं। सखियो, हम खुद को इतना आत्मनिर्भर बना सकती है, और ताकि हम अपनी बेटियों की रोल मॉडल भी बन सके। अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हम माताओं का बेहद ज़रूरी हाथ रहता है। हम अभिभावकों को बच्चों के साथ, चाहे बेटा हो बेटी हो, दोस्ताना व्यवहार करना है ताकि वे अपने दिल की बात हमारे साथ कह सके और हम उनका मार्गदर्शन कर सके, उन्हें सही राह दिखा सके और उनके अंदर जो झिझक है वो भी ख़त्म हो सके। तो सके थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

सखी, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कार्यक्रम इस समय आप सुन रही हैं घर परिवार, और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं डिजिटल वॉच के बारे में। डिजिटल घड़ियां तो आप सभी ने देखी है, नाम भी सुना है, और बहुत सारी हमारी सखियां जो है उनका इस्तेमाल भी करती हैं। डिजिटल घड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो समय की सुइयों की बजाय अंकों में डिजिटल में LED या LCD स्क्रीन पर दिखाती है। ये घड़ियाँ बिजली या बैटरी से चलती हैं और समय के मामले में अत्यंत स्ट्रीक होती हैं। इसमें आमतौर पर 12 या 24 घंटे का फॉर्मेट होता है जो आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसमें क्वार्टर्स क्रिस्टल का उपयोग होता है जो कि स्ट्रीक समय प्रदान करता है। इसमें अलार्म टाइमर जैसी सुविधाएँ भी होती हैं। सखी, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सही समय जानना बेहद ज़रूरी है। ऑफिस, कॉलेज या किसी ज़रूरी काम के लिए मिनट में देरी भी परेशानी खड़ी कर देती है। डिजिटल घड़ियां GPS या रेडियो सिग्नल से खुद को अधिकारित समय के लिए सिंक कर लेती है, जिससे वे बेहद स्ट्रीक बन जाती है। फैशन की दौड़ में देखें तो लोग डिजिटल वॉच पसंद करते हैं। ये घड़ियों के अंदर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है। ये डिजिटल घड़ियाँ स्मार्ट वॉच इन्हें कहा जाता है। इसमें फ़ोन से कॉल हम देख सकते हैं और अपने कदमों को भी गिन सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इसमें छोटा सा अंतर ये है कि एनालॉग घड़ी जिसमें सुइयां टिक टिक करती हैं और डिजिटल में स्क्रीन पर सीधे नंबर चमकते हैं। तो सही हुए ना इस घड़ी के कितने सारे फ़ायदे, और एक तो ये है कि फैशन में भी बहुत अच्छी लगती है, बंदे की, इंसान की या हमारी सखियों की पर्सनैलिटी भी इससे डेवलप हो जाती है। अच्छा लगता है घड़ी पहने हुए, अगर किसी ने पहनी हो तो उसे देखकर बहुत बढ़िया लगता है। और देखा देखी हम भी सभी सखियाँ जो है घड़ी पहनना चाहती हैं। तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि व्यक्तिगत निखार तो भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर कर ही आता है, और व्यक्तिगत निखार के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर आप प्रोफेशनल जॉब करती हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर ये चीज़ें आपने पहनी होंगी तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी निखर कर आती है, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। तेरी बातों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, आगे बढ़ रही है, स्मार्ट वॉच भी चल रही है और सिंपल घड़ियां भी चल रही हैं। तो जल्दी से घर परिवार के किचन में चलते हैं और क्यों की सब्जी बनाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोता क्यों की सब्जी पसंद करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, कुछ श्रोताओं ने या सखियों ने कभी खाई भी नहीं होगी, और कुछ तो वो रोज़ बनाती हैं या खाती हैं या स्वाद लेती हैं। क्योंकि सब्जी हिमाचली सब्जी है, इसे रामफली या वकला भी कहते हैं। इसे पारंपरिक या स्वास्थ्यवर्धक पहाड़ी व्यंजन कहा जाता है जो हिमाचल में बहुत ही शौक से खाया जाता है। ये फली आलू और बेसिक मसालों के साथ बनाई जाती है, दही के साथ भी इसे बनाया जाता है, काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। ये आलू के साथ बनाई जाने वाली सब्जी है। क्यों काट सबसे पहले मार्केट से ले आए, उसे धो ले, काट ले, आलू के टुकड़े कर ले, अब तेल डालकर कढ़ाई में पकाएं, थोड़ा सा जीरा चटकाएं, चटकाने पर राई भी इसमें डालें, और आधा चम्मच राई का हम डाल सकती हैं या थोड़ा सा अपनी मुताबिक, क्योंकि हमारी सखियां जो है घर परिवार का काम करती है, उन्हें आइडिया थोड़ा सा लग जाता है। अब हरी मिर्च काट कर डालें, इसमें हींग डालें, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार डालकर टमाटर की प्यूरी या टुकड़े भी डाल सकती हैं। अब क्यों पकाएं सिम आंच पर, और कुछ मिनट पकने के बाद तैयार हो जाएगी आपकी ये सब्जी। इसे बनाए खाएं और मज़े लें। और कुछ सब्जियां कुछ सखियां जो है अलग तरीके से बनाती हैं। वो जीरे की जगह सबसे पहले प्याज डालती हैं, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने पर टमाटर की प्यूरी डालती हैं और उसमें मसाले डाल देती हैं, मसालों के साथ ही दही भी डाल देती हैं। दही को भूनने के बाद जो है क्यों डाल देती हैं और 10-15 मिनट पकाती हैं। पकाने के बाद थोड़ा सा उन्हें मैश करती हैं और मैश करने के बाद जो है तैयार हो जाती है सखियों हमारी सब्जी बनकर। तो सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। कुछ सखियां क्या है, पहले उबाल लेती हैं, इसे उबाल कर नितार देती हैं और फिर दही का तड़का लगाती है। यानी पहले प्याज या जीरा कुछ भी डाल ले, फिर मसाले डालें, अगर टमाटर डालना है तो डाल ले, नहीं तो दही डालकर उसमें जो मैश किए हुए क्यों है वो डाल दें और फिर पकाए। स्वादिष्ट लजीज सब्जी आपकी तैयार हो जाएगी। और आप सोचें बनाने की विधि या तैयारी करें, और चलते चलते हम आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता जारी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोडनकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनके

जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुइसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Trinamool Congress chief Mamata Banerjee that she will not resign and tender her resignation to the governor as the outgoing chief minister. In a social media post, he accused that resistance to accountability and the refusal to accept the public's mandate by her Trinamool Congress is an example of compromised democracy in Bengal. India is among the most resilient large emerging market economies over the past 5 years, according to Moody's ratings. In its recent report, the agency said that India is better placed than most of its peers to absorb future global shocks, supported by strong foreign exchange reserves, a stable and predictable policy framework, and deep domestic capital markets. The foreign ministers of China, Wang Yi, and Iran, Abbas Araghchi, today held talks in Beijing amid mounting pressure on Iran to open the Strait of Hormuz for international shipping and reach a deal with the US to end the war. Araghchi's visit comes in the immediate backdrop of U.S. Secretary of State Marco Rubio's announcement yesterday that major U.S. military operations against Iran are over. And in IPL cricket, host Sunrisers Hyderabad will take on Punjab Kings this evening at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं. अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे.
2: असली मुकद्दर है. हाँ, सच है, मन जीना चाहे पर तन हर पल ढलता जाए. इस क्षणभंगुर जीवन में ही जीने का अर्थ निखरता जाए. और आपने लिखा है तो हर पल को गले लगा ले, दर्द में भी मुस्कान सजा ले, सुरीले सफर में आज अपने दिल को फिर से जगा ले. बहुत सुंदर लिखा है आपने. भावों का ये सागर बहता है सुरीला सफर के इस मंच पर, हर दिल खुद से मिलता रहता है. बिल्कुल सही कहा आपने. लेकिन जनाब, आप इतने शानदार कवि हैं, आपकी कविताओं से हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और बताइए आज कौन कौन से गीत हैं. और ये जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, इसमें गायक कलाकार कौन थे? आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत.

जी हाँ, ये आवाज़ें लता मंगेशकर और किन की थी आपको ही बताना है। राजा मेहदी अली खान के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आदरणीय, ये एक ही शब्द से बहुत सारे गाने होते हैं, आप कौन सा शामिल करोगे ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये इसमें ऐसा सोचना ही क्यों है हुजूर, आपने अगर एक ही शब्द के कई गाने निकाल दिए तो कोई गाना तो मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट से, और अगर ना भी मिले तो ये कोई पेपर थोड़ी है जहां हम पास या फेल हो जाएंगे। ये कार्यक्रम है जहां हम इस सुरीले सफर का आनंद लेना चाहते हैं, सिर्फ आनंद उस संगीत का, उस अनमोल, उन अनमोल गीतों का जो हमारे सुनहरी जो गीत संसार है, संगीत की दुनिया है, उन अनमोल गानों का हमें सिर्फ आनंद लेना है। और उस आनंद में, खेल खेल में हम एक कार्यक्रम लेकर आपके लिए आए हैं जहां आपको बताना है कि क्या इस शब्द से जुड़े गीत आपने जो चुने हैं वो हमारी पसंद से मेल खाते हैं कि नहीं, बस इतनी ही तो बात है। जैसे अभी हमारी इबारा आपने पढ़ी थी उसमें नैना शब्द भी आया था और पीड़ा शब्द भी आया था, तो ये गाने आपको मिल गए नैना वर से रिमझिम रिमझिम, है ना, और मैं कासे कहूँ पीड़ अपने जिया की। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को बुना गया है, और अगर हो सकता है आपने इस तरह के और गाने चुने होंगे वो आप हमें लिखें तो वो भी अच्छा लगेगा कि हमारे श्रोताओं ने मशक्कत तो की। एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज का सफ़र सुरीला तो है फिर भी मन को अंतर्मुख कर देने वाला है, शब्द तो आसानी से चुन लिए जाएंगे परंतु अर्थपूर्ण गीत चुनने में कठिनाई आ रही है, फिर भी हमने ट्राई किया है, ये शाम की तन्हाइयाँ ओरे माझी हमने देखी है, सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो, दोनों किसी को नज़र नहीं आए चल दरिया में डूब जाएं, जिंदगी में प्यार करना सीख ले, जिसको जीना है मरना सीख ले, एक बार ज़रा फिर कह दो देखो मौसम क्या बाहर है आगे भी जाने ने तू। बहुत सारे गीतों को आपने लिखा और हमें अच्छा लगा कि आपने एक मेहनत हमारे सामने रखी है कि ये गीत आपकी इबारत से मिलते हैं। हो सकता है इसमें एकाध गीत आपकी जो आपने चुना है वो हमारी इबारत में हो। एक श्रोता ने तो और भी अच्छे तरीके से अपनी बात लिखी है, उन्होंने कहा है कि सुंदर इबारत दी है आपने दीदी, इसमें भावनाएं प्रकृति और प्यार तीनों का खूबसूरत मेल है, इस इबारत से गानों के लिए जो संभावित शब्द निकलते हैं वो इस तरह हो सकते हैं दुख दर्द सागर नैना जिंदगी बाहर शाम तन्हाई मन महबूबा प्यार प्रकृति रूह सुकून दरिया और जीवन। यानी आपने उन शब्दों को कहीं ना कहीं टटोला है और उनसे जुड़े गीत हमारे इस इबारत में होंगे या आज की महफिल में होंगे, इस जो कार्यक्रम है सुराना सुरीला सफर में होंगे, ये आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी अभिव्यक्ति दुख की गहराइयों से निकलकर प्रेम और प्रकृति की उड़ान भरती हुई जीवन के द्वंद्व को सुंदरता से बयान कर रही लगता है, ये पंक्तियां जीवन के सबसे गहरे द्वंद्व दुख और प्रेम विरह और प्रकृति और नश्वरता और शाश्वतता को बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं। नैना दुख के सागर में डूबे हों, जिंदगी पीड़ाओं में उलझी हो, फिर भी महबूब की पुकार और बाहर की चहक रूह को छू जाती है, बाहर प्यार और दरिया की रवानगी ये सिर्फ बाहरी नज़ारे नहीं हैं बल्कि ये हमारे अंतर्मन के ही विस्तार हैं, मन जितना जीना चाहता है तन उतना ही मरना जाता है बढ़ता जाता है, इस शाश्वत सत्य को जीवन का सार है पहचान लेना चाहिए और हर पल को जीने की प्रेरणा ले लेनी चाहिए, यकीनन इसे महसूस करने मात्र से सुकून मिल सकता है। बिल्कुल सुकून मिलता है जब हम गहराई से जीवन को जीते हैं। तो जी, तो हमने जैसा कि कहा कि आज इस कार्यक्रम में एक प्रयोग हमने किया है, उन आवाज़ों को शामिल किया है जो गीतकार के रूप में है या फिर संगीतकार के रूप में है और कभी कभी किन्हीं किन्हीं गीतों में सुनाई देती है। एक सवाल हम थोड़ी देर बाद में आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि जो गीत अब तक आपने सुना उसमें वो खास आवाज़ किसकी थी और अब जो अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं वो आवाज़ किसकी है।

शैलेंद्र सिंह का शैलेंद्र का लिखा गीत था और एसडी बर्मन का संगीत था। फिल्म का नाम था बंदिनी। आवाज आपको बतानी ही है किन की है और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मंदाकिनी जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत जिस गीत से की बहुत ही सुरीला गीत है और सबसे बड़ी बात कि वो जो गीत है मदन मोहन जी की आवाज से आपने शानदार शुरुआत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं ने भी अपनी बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखी है। हम यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने भी इस विषय पर एक इबारत खुद लिख दी है। एक सखी लिखती है कि उदासी की चादर जब रूह को घेर लेती है तो दुनिया की हर रौनक फीकी और हर शोर बेगाना सा लगने लगता है। ऐसा लगता है मानो वक्त ठहर गया है और खुशियों का रास्ता भूल गया है। लेकिन ऐ दिल जरा ठहर, खिड़की के बाहर उस ढलती सूरज की लालिमा को देख, उन परिंदों की चहचहाट को सुन जो थक कर भी मुस्कुरा रहे हैं। तेरा हम सफर, तेरी अपनी अंतरात्मा तुझे पुकार रही है, उत्साह को महसूस कर जो हर हाल में तेरे साथ है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक शांत यात्री है, प्रकृति उसका आश्रय स्थल, जो भटकते हुए मन को निर्मलता और स्थिरता प्रदान करती है। कस्तूरी मृग की तरह भटकता हुआ मन प्रकृति की गोद में आनंद पाता है। हरी भरी प्रकृति माँ की तरह मन को एकाग्र कर सकती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी प्यारी प्यारी है, तन्हाइयाँ, किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग। जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। ये सच है, पर सिर्फ खुद से ही सबसे प्यार करना सिखा देती है प्रकृति। बस कोई इससे जुड़ के देखे तो सही, वो हमें बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है। हम ही हैं जो मोबाइल से लगे रहते हैं और थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं प्रकृति से और उसे निहारते तक नहीं है। बहुत सुंदर। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, मोबाइल, जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने बंदिनी फिल्म का गीत सुना था, कलाकार का नाम आपको बताना है। और एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पूछ ले सीधा साधा सवाल है और सीधा साधा जवाब है कि जब हमने एक प्रयोग आज किया है कि उन आवाज़ों को हम गीतों में लेकर आए हैं जो कभी कभी सुनने को मिलती हैं, वो गीतकार की आवाज़ हो सकती है, वो संगीतकार की आवाज़ हो सकती है ना। तो एक गीत ऐसा है जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो जोड़ी है, उसके संगीतकार जो लक्ष्मीकांत जी हैं, उन्होंने उस गीत में अपनी आवाज़ दी है। और शायद ये भी सच है कि वो एकमात्र गीत है जिसमें लक्ष्मीकांत जी ने अपनी आवाज़ दी है। वो कौन सा गीत है? हमने उस गीत को इस लिस्ट में आज के सुरीले सफ़र में शामिल नहीं किया है। आपको बताना है वो कौन सा गीत है। और सुरीले सफ़र में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और एक और आवाज़, फिल्म का नाम मोम की गुड़िया, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लता मंगेशकर के साथ ये आवाज़ किसकी है आपको तय करना है।

जी तो आपको बताना है फिल्म मॉम की गुड़िया का ये गीत लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और हम आपको बता दें इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमें हंसी इसलिए आई कि जो हमारे जागरूक श्रोता हैं, संगीत प्रेमी श्रोता हैं, वो तो समझ गए होंगे कि ये आवाज़ किसकी थी। एक श्रोता लिखती हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने वैसे लिखा है कि मंदाकिनी जी आपने पहले मदन मोहन जी को सुनवाया था और उसके बाद एस डी बर्मन जी की आवाज़ में आपने एक से बढ़कर एक गीत सुनवा रही हैं आज आप। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक श्रोता लिखते हैं कि वो जो गीत आपने वो कौन थी फिल्म का सुनवाया था, उसमें लता जी के साथ तलत महमूद साहब थे। जी नहीं, लता जी के साथ मदन मोहन साहब साथ थे। हाँ, नैना बरसे रिमझिम एक कालजयी गीत है ये, जो मदन मोहन जी की आवाज़ में है, और उससे पहले तो आपने सुना ही था जो गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म दस्तक का, मदन मोहन जी की आवाज़ में, माहिरी मैं कासे कहूँ पीड़ अपने जिया की। तो अब अगला सवाल वही कि मोम की गुड़िया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर के साथ किन कलाकार ने गाया है, और आप बहुत सारे श्रोता अपनी जो है प्लेलिस्ट हमें दे रहे हैं कि हमने इन इन गीतों को चुना है। कोई बात नहीं, आपके गीत अगर हमारी गीतमाला से मेल नहीं खा रहे तो क्या हुआ, गीतों का आनंद तो ले रहे हैं और आपने एक कोशिश तो की है कि हाँ ये गीत आज के इस कार्यक्रम में हो सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि आपने जो है कुछ बातें, कुछ गीत और विविध भारती गीतमाला जैसे कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, सुरीला सफ़र कार्यक्रम भी हमें 50% अच्छा लग रहा है और हमें मजा तो आ रहा है, लेकिन 50% देखिए धीरे धीरे आपको 100% इसमें मजा आने वाला है। जैसे जैसे हमारे दिमाग खुलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पसंद, हमारे विचार और गीतों के लिए दौड़ेंगे ना, तो अच्छा लगेगा कि अरे वाह हम आपकी प्लेलिस्ट के करीब पहुंच गए हैं। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत ही सुंदर तरीके से कि रविंद्र जैन जी के गीत की पंक्तियां याद आ रही है, मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए, इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए। बिल्कुल आपने सही लिखा है, और ये गीत आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। कौन सा गीत है ये, इसका जिक्र अगर आप कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफ़र में आपका स्वागत है, आज के सफर में इबारत में अनसुलझे रहस्यों के बीच उनकी मधुर आवाज़ के साथ मनमोहक गाने सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र का प्रारूप आपने जिस तरीके से तैयार किया है, उस प्रारूप में कई भ्रांतियां सामने आ रही हैं, जिससे ये महसूस होता है जैसे कि शब्द गाने में हो या नहीं, शब्द गाने में हो या नहीं मायने नहीं रखते, भावार्थ पर भी गाने बज सकते हैं, जैसा कि कल पहले गाने में हुआ, यानी कल के किसी कार्यक्रम में हुआ, इसके बाद श्रोताओं द्वारा कोई गाना सोचना बेमानी सा लगता है। दूसरा इन्होंने लिखा कि शब्द का अनुमान सही हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाना शब्द से शुरू होगा या मुखड़े में कहीं भी होगा, इसका कोई निर्देश नहीं है, किसी विशिष्ट दिन को परिभाषित करने का कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है। तो ऐसे में श्रोताओं के पास कोई विकल्प नहीं है, हम कहेंगे आम तो निकलेगा या इमली, किसी श्रोता को मेरी बात गलत लगे तो साझा कर सकते हैं। अरे बात वो नहीं है कि आपने गलत लिखा है, सही आपका द्वंद्व, आपकी सोच अपनी जगह सही है कि भाई हम किसी गाने को सुनते हैं तो हमें क्या बदले में वो गाना सुनने को मिल जाएगा, यही तो इस कार्यक्रम का मज़ा है ना, कि आपने क्या चुना, आपकी आपका जो चुनाव है वो हमारे चुनाव से मिलता है या नहीं, यही इस कार्यक्रम का एक कहते हैं कि मोटो है कि इस कार्यक्रम को इसी तरीके से बुना गया है। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए अगला गीत सुनने के लिए। लता मंगेशकर के साथ कौन सी आवाज़ है ये, फिल्म का नाम है आज़ाद। और हाँ, हमारी इबारत पढ़कर बताइए कि आपकी लिस्ट में और कौन कौन से गाने हैं जो हमारी लिस्ट से मेल खाते हैं।

हाँ, कितना हंसी है सफर, कितना खूबसूरत मौसम है और साथ ही आप सभी हमारे खूबसूरत जो हमारे साथ चल रहे हैं। अब बताइए ना, इतने सुरीले सफर में अगर हम मनोरंजन नहीं करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए तो फिर किसका दोष। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत था ये। आपको बताना था कि लता मंगेशकर के साथ कौन कलाकार है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये चितलकर साहब हैं और सी रामचंद्र के नाम से ये संगीत देते हैं और बहुत ही मधुर आवाज़ के धनी हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात को लिखा है कि चितलकर साहब की आवाज़ है जो सी रामचंद्र के नाम से जानी जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 100 बातों में से एक बात इस कार्यक्रम में असल चीज़ मनोरंजन है जो कि 100% होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक और गीत आनंद बख्शी जी का गाया हुआ था, इसमें आपने चरस फिल्म का गीत नहीं लिया, आजा तेरी याद आई। बिल्कुल सही कहा आपने, अगली बार जब कभी भी ऐसी कोई इबारत हम गढ़ेंगे जिसमें यादों की बात होगी तो हो सकता है ये गीत हो जाए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा था तो दिलीप कुमार के लिए तलत महमूद साहब की आवाज़ थी। जी नहीं, ये नहीं थी, ये चितलकर साहब की आवाज़ थी, सी रामचंद्र साहब की आवाज़ है। हमारे श्रोताओं ने लिख भी दिया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर लग रहा है और आपने पूछा तो हम बता देते हैं कि ये आवाज़ जो अभी आपने थोड़ी देर पहले गीत सुनवाया था, गीतकार आनंद बख्शी साहब की थी। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गीत लता मंगेशकर के साथ फिल्म मोम की गुड़िया का था, बागों में बहार आई, इसमें लता जी के साथ आनंद बख्शी साहब गीत को गा रहे थे। और अब वो पुकार जो हम से हर एक को अच्छी लगती है, हमारा महबूब या हमारी महबूबा जब हमें पुकारे महबूबा महबूबा तो सोचिए कितने दिल खिल जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना आपके साथ भी, बताइएगा ज़रूर। कौन से कलाकार हैं आप सभी को मालूम है, फिर भी बताइएगा किस कलाकार ने इस गीत को आवाज़ दी है।

जी, तो मजा आ गया ना इस गीत को सुनकर। जरूर आप थिरके होंगे, बताना यकीनन आपके पैर बिल्कुल थिरके होंगे, मुझे विश्वास है। और वैसे भी सुरीले सफर का जो हमारा मंतव्य हो यही तो है कि दुखों से निकलकर हम थोड़ा सा खुशी की दुनिया में चले जाएं, जहां हमारे पैर थिरकें, जहां हमारे लब मुस्कुराएं और गुनगुनाएं। तो बस वही एक कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए कि हमारे श्रोता जो सुरीले सफर में हमारा साथ देते हैं वो इस कार्यक्रम में अंत तक हमसे जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ कभी कभी जो दुख और परेशानी आती हैं उसे भी मुकाबला करते रहें। देखिए ना, आप में से कितने श्रोताओं ने कितने सही जवाब दिए हैं। आप लिखते हैं कि भैया आपका जो सवाल था मंदाकिनी जी कि लक्ष्मीकांत जी ने किस फिल्म के लिए गाना गाया था, वो फिल्म थी देश प्रेमी, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, है ना, वो गीत याद आया हमको, गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही। ये गीत में जो है लक्ष्मीकांत जी की आवाज़ थी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारस मणि जो 1963 की फिल्म है, इस फिल्म में भी संगीत के साथ साथ लक्ष्मीकांत जी की आवाज़ के कुछ अंश मिल सकते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म दोस्ताना 1980 की फिल्म, इस गाने के कुछ हिस्सों में लक्ष्मीकांत जी ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के साथ अपनी आवाज़ दी है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हम तक पहुंचा दिए हैं कि अब तक जो गीत हमने आपको सुनवाए उनमें कौन कौन से कलाकार थे। तो अभी जो गीत आपने सुना फिल्म शोले का, महबूबा महबूबा, ये गीत किस कलाकार ने गाया था आपको पता है, लेकिन आपको हमें बताना है। तो चलते हैं सुरीले सफर

0: सफर के इस सफर में थोड़ा सा और आगे
1: झुके जो तेरे ने
0: जो ये गा रही हैं वो कौन है?
1: जो

कंगन फिल्म का गीत था, महेंद्र कपूर की आवाज़ी और साथ में जो गा रही थी ये आवाज किसकी थी आपको बताना है। गीतकार अनजान थे और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे गाने हैं और हम उन गानों का आनंद उठा रहे हैं। यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर का ये गीत नजर आएंगे इबादत पढ़ने से। और एक श्रोता लिखते हैं कि इस इबारत में कई शब्द अपने साथ एक कहानी लेकर आए और कुछ शब्द दो तीन दिनों से बार बार अपनी जगह कायम किए हुए हैं, इसलिए आज दुख सागर नैना और उलझी जिंदगी का दर्द बयां करते हुए महबूब प्रकृति प्यार का दामन थामे मन के शाश्वत सत्य को पहचान कर हर पल जीने की बात कर रहा है। अच्छा बताइएगा कौन से शब्द हैं जो दो तीन दिनों में बार बार अपनी जगह कायम है, उसका जिक्र कीजिएगा ताकि अगली बार जब हम अपनी इबारत लिखें तो ध्यान रखें कि उन शब्दों का इस्तेमाल बार बार नहीं हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमारी शादी की 33वीं सालगिरह है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप इसी तरह फलते फूलते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह है। अच्छा, आप थोड़े से नाराज लग रहे हैं। आज की थीम प्यार मोहब्बत वगैरह, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। प्रियतमा और प्रियकर एक दूसरे से कब मिलते, कब दिल से दिल मिलता है, ये दोनों के समझ में नहीं आता। क्या प्यार इसी को कहते हैं? विचार पूर्वक सोच समझकर जो होता है उसे प्यार नहीं कहा जाता। किताबों में छपते हैं चाहत के किसी, हकीकत की दुनिया में राहत नहीं है। ये बेकार बेकाम की चीज़ है। मोहब्बत को झूठी कहानी कहकर उसी झूठी कहानी पर रोने वाले हैं। प्यार किसी ने किया, प्यार लैला ने किया, प्यार राधा ने किया, प्यार मीरा ने किया, सबका प्यार एक ही है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला को सराहा गया और आम आदमी के प्यार को समाज ने कभी शिरीन फरहाद की बात आप कर रहे हैं स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही कुछ किस्से कुछ गीत सुनने के लिए आज का सुरीला सफर शुरू होने वाला है, इंतजार कीजिए। अच्छा, आप नाराज तो नहीं है ना? हम तो डर गए थे कि आप क्या लिखने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं आपके साथ लेख में आए शब्दों को देखते बजने वाले गीतों की संभावना तलाश कर रहा हूँ। बहुत सुंदर बात, ताकि अगली बार आपकी तलाश खत्म हो जाए, है ना, आप लिख पाएं वो गीत जो हमारी इबारत में लिखे हुए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जरा सी दुख भरी लग रही है इबारत, गमगीन गीत ज्यादा होंगे। नहीं है ना, मिले जुले गीत है, क्योंकि जिंदगी भी तो मिली जुली है, कभी खुशी कभी गम। एक श्रोता लिखते हैं कि भटकता मन एक अशांत यात्री है और प्रकृति उसका आश्रय स्थल। अच्छा, ये तो हमने पढ़ दिया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत तो बड़ी ही प्यारी प्यारी है, तन्हाइयां किसी की पुकार, प्रकृति के कई रंग, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो खुद से प्यार कर लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम तो समूह में रहने वाले प्राणी हैं, धरा पर अकेले रहकर जी नहीं सकते, इसलिए कोई प्रिय व्यक्ति पुकार रहा हो तो उसकी पुकार सुन लेनी चाहिए और अपने अंतर मन से महसूस करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वही जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था, महबूबा महबूबा, तो कोई आपको पुकार रहा है प्यार से तो उसे सुनिए। क्यों पुकार रहा है, उसको आपकी क्या जरूरत है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये सभी जिंदगी में ही हमें सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन की चंचलता को हवा की गति से भी तेज माना गया है, जो पल पल में सुख दुख यादों सपनों और चिंताओं में भटकता है। मन को एकाग्र कर प्रकृति की स्थिरता और जीवंतता के द्वारा संयमित किया जाना चाहिए। और यहाँ इस संदर्भ में प्रकृति को केवल एक परिदृश्य नहीं मन लेना है, बल्कि यहाँ प्रकृति एक माँ, सहचरी और एक शिक्षिका भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और हमारे श्रोता इतनी सुंदर इबारत लिखते हैं कि मुझे लगता है कि लगभग हर एक श्रोता लेखक है और उसे एक किताब लिखनी चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये बताइएगा कि कंगन फिल्म में महेंद्र कपूर के साथ वो कौन थी जो गुनगुना रही थी। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जी हाँ, फिल्म का नाम है एक बार कहो। माया गोविंद की रचना है, बप्पी लाहिड़ी की धुन है, सुलक्षणा पंडित की आवाज है, और साथ में कौन कलाकार गा रहे हैं आपको पता है, फिर भी हमें बताना है।

जी हाँ, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही कहा कि महबूबा महबूबा गाना जो है राहुल देव बर्मन की आवाज़ में था। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुँच चुके हैं। इस गीत में किसकी आवाज़ थी, पुरुष स्वर किसका था, आपको बताना है। और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है आंखियों के झरोखों से, आवाज रविंद्र जैन साहब की है, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन ही हैं।

जी, ये आवाज़ थी रविंद्र जैन साहब की और फिल्म का नाम था अखियों के झरोखों से। और इससे पहले का गीत जो हमने आपको फिल्म एक बार कहो से सुनवाया था, अभी तक आपके जवाब तो नहीं आए, उसमें सुलक्षणा पंडित के साथ थी बप्पी लाहिड़ी है ना। और अब आज का सुरीला सफर यहीं खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया और अंत तक बने रहे, आपके विचार हम तक पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाज़त, फिर मिलूंगी, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, किसी ने कहा था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। आज का जमाना कई जगह ऐसा देखा जाता है कि हर कोई सोचता है कि ये जो काम है वो बड़ी सरलता से बड़ी आसानी से हो जाए, हमें उसके लिए मेहनत ना करना पड़े। एक जमाना था जब इस देश की स्वतंत्रता के लिए मेहनत की गई, और जब मेहनत की गई तभी राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, वरना बैठे बैठे सोचने से कुछ हो नहीं सकता था। मुंगेरी लाल के सपने तो सभी देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे रण युद्ध में कूदना पड़ता है और जीतना पड़ता है उस विजय को।

ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, ये चौड़ी सड़कें, ये चलता हुआ कारखाना, ये सब इसके पीछे कोई ना कोई मेहनतकश व्यक्तित्व है, उनका समर्पण है। कोई इंजीनियर दिन रात मेहनत करके इनकी डिजाइन बना रहा होगा, कोई श्रमिक पूरी मेहनत और पूरी श्रद्धा के साथ इन्हें सजा रहा होगा। तभी आज हम बड़ी बड़ी कारखानों को चलते हुए देख रहे हैं और अपनी सुविधाओं की प्रत्येक वस्तु को अपने पास तक आते प्राप्त कर रहे हैं। यह सब आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। आज के ज़माने में कई जगह ऐसा पाया जाता है कि कई बच्चे, कई बड़े ये सोच कर बैठ जाते हैं कि हमें तो वो एक छोटी सी एसी कमरे में बड़े सामान्य से कुर्सी के साथ में बैठ जाना है और काम करना है। यहाँ पर वही काम किया जा सकता है जो सरल है, परंतु कुछ नया करने के लिए जंगे मैदान में उतरना पड़ता है। तो चलिए आज विचार करते हैं कि वो मैदान कौन सा है जिस युद्ध को लड़कर हमें अपने आप को विजित करना है।

जो लोग हमारे लिए दुनिया बना रहे हैं, ये जो लोग हमारे लिए दुनिया सजा रहे हैं, ये दुनिया बनाते समय, इसे सजाते समय उनके सपने होंगे, उनके ख्वाब होंगे कि कोई तो होगा जो आएगा हमसे और अच्छा करेगा। मेहनत करने वाला वही अच्छा करने का गुरूर रखता है और मन में एक आशा रखता है कि अभी तक जो हुआ है उससे अच्छा हम कर जाएंगे। आज हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में अलग जगाता हुआ खड़ा है। उसके पहले उस पर की गई मेहनत, आज हमारा देश सारी दुनिया में गर्व से खड़ा है। उसे बनाने के लिए उस पर की गई मेहनत, प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक व्यक्तित्व, प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक उस इंसान को प्रणाम करते हैं जिसने अपनी जंजीरों को तोड़ा, जिसने अपने आलस्य को छोड़ा और जिसने मेहनत को अपनाया और मेहनत को अपनाकर आज इतना सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर दिया। हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी आगामी पीढ़ी, अभी की पीढ़ी और प्रत्येक व्यक्तित्व अपने और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए सतत मेहनत करते रहेंगे। आज हम उन सभी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत की, कुछ कर गुजरे और इस दुनिया में अलग जगाई अपने और अपने देश के नाम की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना, यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। यह हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
1: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
3: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयर टेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
0: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। ये निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियोर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
5: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लीपुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जाँच के अनुसार दोनों स्थानों पर IED का इस्तेमाल किया गया था।
6: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ISI की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक FIR रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत EV बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि ये पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद

0: अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए पहला गीत सुने, मिस्टर जॉन फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार जानिसार अख्तर और संगीतकार एन दत्ता।

ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था मिस्टर जॉन। कार्यक्रम का अगला गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ, रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ, युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम है मैंने जीना सीख लिया।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मदारी, फारूक केसर की रचना थी और कल्याण जी आनंद जी की धुन थी।

ये स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की फिल्म का नाम दो गुंडे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद।

कार्यक्रम का अगला गीत दीपक का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम चंद्रसेना।

कार्यक्रम में पंडित भरत व्यास का गीत सुनिए। कल्याण जी वीर जी शाह की संगीत रचना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: आशा भोसले और महेंद्र कपूर को सुनिए, फिल्म का नाम है धूल का फूल। रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत एन दत्ता का।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भाई बहन का गीत, युगल स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, शब्दकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार एन दत्ता हैं।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामायिक चर्चा रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को CBSE पाठ्यक्रम के तहत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि तय मानकों के मुताबिक 100 शिक्षण संस्थानों में अभी भी विद्यार्थियों की संख्या न के बराबर है और ऐसे शिक्षण संस्थानों को बंद करने पर सरकार विचार करेगी। शिक्षा मंत्री ने 12वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम में सरकारी स्कूलों के बच्चों के बेहतर प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई।
1: हमारा रिजल्ट आए हैं जहाँ ओवरऑल रिजल्ट्स उसमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हुई है, और विशेषकर एक अन्य जो हमारी संतोषजनक बात है कि हमारे सरकारी स्कूल्स के जो हमारे मेधावी छात्रों की जहाँ कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में कमी रहती थी या पीछे रहा करते थे, और उसमें भी एक अच्छा प्रतिशत, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी जो हमारे मेरिट की जो लिस्ट बनी है उसमें सरकारी स्कूल के हमारे बच्चे हैं। और इसके लिए नामात्र में सरकारी स्कूलों बच्चों को इसको बधाई देता हूँ, जो अच्छा प्रतिशत ओवरऑल रहा है। सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने भी मार्केट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में अपनी परीक्षाएं दी थी, और सभी शिक्षा विभाग के अपने टीचर्स को बहुत बहुत बधाई।
0: रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल लगातार आपदा के दौर से गुजर रहा है और केंद्र सरकार प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार को बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए हिमाचल की मदद करनी चाहिए। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 7, 8 और 11 मई को नामांकन भरे जाएंगे। 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 3 चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए 26, 28 और 30 मई को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव होगा। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं, जबकि 25

0: पंचायत का ये कदम न केवल स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है बल्कि अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणादायक है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: स्पीति के ताबो पंचायत में ग्रामवासियों ने आपसी सहमति और सौहार्द का परिचय देते हुए पंचायत नेतृत्व का चयन सर्वसम्मति से किया है। कुमारी छेरिंग किंजम को पंचायत प्रधान और थिनले दोर्जे को उपप्रधान चुना गया है। इस निर्णय के बाद पूरे पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बिना किसी विवाद और चुनावी प्रतिस्पर्धा के हुआ ये चयन ग्रामीणों की एकता और समझदारी और आपसी विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। ग्रामवासियों ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में पंचायत क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए केलाड़ में दूसरी रिहर्सल आयोजित की गई। इस अवसर पर निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पांगी के आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने बताया कि कुल 19 ग्राम पंचायतों में प्रधान व उप प्रधान, 97 वार्ड सदस्य, 15 पंचायत समिति सदस्य और एक जिला परिषद सदस्य के चुनाव में 15,791 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि पांगी में 26 व 28 मई को दो चरणों में चुनाव होंगे, जिनके लिए 97 मतदाता बूथ और 52 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला शिमला द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर विकास नगर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में सह सर कार्यवाह आलोक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का प्रेरणादायक वर्णन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन। वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
3: दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत, लंबे समय तक प्रतीक्षा समय और जीवन शैली से जुड़े रोगों का बढ़ता बोझ रोगियों को विदेश में इलाज कराने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस वैश्विक बदलाव ने बहु अरब डॉलर के मेडिकल वैल्यू ट्रैवल उद्योग का उदय किया है। वर्ष 2022 में वैश्विक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल बाजार का मूल्य लगभग 115.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके वर्ष 2030 तक लगभग 286.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत इस विकसित वैश्विक परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक गंतव्य के रूप में उभरा है। उद्योग का अनुमान है कि वर्ष 2025 में चिकित्सा पर्यटन बाजार लगभग 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा, जिसमें वर्ष 2030 तक 16.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान है। सदियों से भारत को उपचार, संतुलन और रोग मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक मुख्य गंतव्य के रूप में माना जाता रहा है। आज ये प्राचीन विरासत एक गतिशील मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इकोसिस्टम के रूप में विकसित हुई है। ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को पारंपरिक प्रणालियों के कालातीत ज्ञान के साथ जोड़ता है। प्रमुख हील इन इंडिया पहल के माध्यम से सरकार देश को एकीकृत और समग्र स्वास्थ्य सेवा के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित कर रही है। इस परिदृश्य के दायरे को समझने के लिए इसके दो जीवंत स्तंभों के बीच अंतर करना आवश्यक है। पहला चिकित्सा पर्यटन, ये जटिल सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण और विशेष अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली उन्नत नैदानिक देखभाल जैसे उपचार हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। दूसरा वेलनेस टूरिज्म, ये योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य आयुष प्रथाओं जैसी पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से निवारक और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित है। ये ऐसे उपचार प्रदान करता है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। साथ ही ये दोनों स्तंभ भारत के मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इकोसिस्टम की आधारशिला बनाते हैं। ये उन्नत नैदानिक उपचार आवश्यकताओं और निवारक स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती वैश्विक मांग दोनों का समाधान प्रदान करते हैं। चिकित्सा पर्यटन सूचकांक वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर शीर्ष 46 चिकित्सा पर्यटन स्थलों में 10वें स्थान पर है, जबकि दुनिया के शीर्ष 20 वेलनेस पर्यटन बाजारों में 12वें स्थान पर है। वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र

0: में शीर्ष 10 स्वास्थ्य देखभाल स्थलों में से पांचवें स्थान पर है। भारत के पास एक अनूठा लाभ है जो इसे चिकित्सा पर्यटन सूचकांक में विश्व स्तर पर 10वें स्थान पर रखता है। सरकार इस प्रतिस्पर्धा लाभ के कई स्तंभों की पहचान करती है, जिसमें मजबूत चिकित्सा संसाधन, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों के दुनिया के सबसे बड़े पूल में से एक द्वारा समर्थित है। भारत में 69,364 अस्पताल हैं, जिनमें 1.2 मिलियन पंजीकृत चिकित्सक हैं, जो WHO द्वारा अनुशंसित चिकित्सक जनसंख्या अनुपात प्रदान करते हैं। पिछले एक दशक में भारत ने अपने चिकित्सा शिक्षा क्षमता और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का काफी विस्तार किया है। इसने विशेष विषयों में कुशल स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता को मजबूत किया है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, मजबूत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मान्यता मानकों द्वारा समर्थित है। देश भर के अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NABH से मान्यता प्राप्त करते हैं। NABH रोगी की सुरक्षा और देखभाल की गुणवत्ता के लिए कठोर बेंचमार्क स्थापित करता है। 2026 तक NABH ने 600 से अधिक सुरक्षा मापदंडों का उपयोग करके 1,299 से अधिक अस्पतालों को मान्यता दी है। भारत को अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से स्वास्थ्य पर्यटन में एक अनूठा लाभ है, जिसे सामूहिक रूप से आयुष, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के रूप में जाना जाता है। अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, विषय
1: FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: खाने से तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, और बहुत सारी संस्थाएं भी हैं और कार्यालय भी हैं जो यहाँ पर भी आप इन चीज़ों को दान कर सकते हैं।
3: जी, कई ऐसे आश्रम हैं, अनाथ आश्रम हैं, वृद्धाश्रम हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जिनकी जानकारी हर शहर में अलग अलग होती हैं, लेकिन क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो आप सर्च कर सकते हैं। आपको खुद खाना लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास सुविधा नहीं है क्योंकि शादी का काम है, दुनिया भर के काम है, आप नहीं जा सकते, तो आप सिर्फ उन्हें फ़ोन कर सकते हैं या एक दिन पहले से भी उन्हें बता सकते हैं, और उसके बाद आप उन्हें फ़ोन करके और उन्हें बता दें तो बस खाना पैक करना होता है, जो कि क्योंकि कैटरिंग के लिए अलग से व्यक्ति होते हैं, हाँ। उन्हें आप बोल दें तो वो पैक कर देंगे और अपने आप खाना आपका घर से ही चला जाएगा।
2: बिल्कुल,
3: तो वो भी आप कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है। और नेहा, जब जैसे कि भोजन में आप जैसे बनवा रहे हैं, तो जैसे बुफे में एक साथ बहुत सारा खाना लेने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा ले, पसंद आए तो दोबारा उसको ले सकते हैं। मतलब कहना चाहिए छोटे छोटे पोर्शन में आप खाना लीजिए, और प्लेट में उतना ही लें जितना खा सकते हैं। शादी में अक्सर लोग टेस्ट के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं और छोड़ देते हैं, और
3: टेस्ट करने जितना ही लीजिए। हाँ। तो पहले टेस्ट कीजिए, जो अच्छा लगा वो जी भर के खाइए,
2: वो आप खाइए, और जो हमारा जो मेन्यू सेट करते हैं तो उसको भी सीमित रखना चाहिए। हाँ। कि नहीं कि बहुत सारे खाने के आइटम रख दिए और एक जैसे कई सारी दालें रख दी, कई सारी रोटी। हाँ। रख दी, तो उनमें भी थोड़ी सी क्वांटिटी कम करें तो कुछ चीजें हमारी बच जाएंगी वेस्ट होने से।
3: तो ये मेजबानों के लिए है कि वो ऐसा ना हो कि बस हमें सबको सब चीजें खिला देनी है, कि कोई आए तो वो सोचे कि अच्छा 36 प्रकार के व्यंजन बने, ऐसा मत कीजिए। आप 16 भी रखें तो भी बहुत ज्यादा ही है वैसे तो, लेकिन आप 16 भी रखेंगे तो भी लोगों का पेट भर जाना है, और जिन्हें नुक्स निकालना है तो निकालना, उन्हें 36 में भी निकालना है, 16 में भी निकालना है।
2: जी, तो इसी तरह हम पानी की भी हमने देखी बॉटल्स। हाँ। होती है, लोग पूरी पूरी बॉटल छोटी ले लेते हैं, एक घुट पिया छोड़ दिया।
3: हाँ।
2: या तो आप उस बॉटल को साथ में अपने पकड़े रहिए, जब तक उसका पानी ना खत्म हो जाए तब तक आप उसको पीते रहिए, ये ना कीजिए कि आपने लिया और छोड़ दिया। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश लिखे हैं, तो कुछ संदेश पढ़ते हैं।
3: जी,
2: तो हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
3: और एक साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में बचे हुए खाने का सही उपयोग, शादियों के सीजन में बर्बाद होता है, बहुत खाना बच जाता है या जूठा छोड़ देते हैं, तो जूठा तो नहीं छोड़ना चाहिए। वो भी वही कह रहे हैं कि जितना खाना उतना लीजिए, क्योंकि अगर आपका खाना बन जाता है शादियां विवाह में, तो मैं बताती हूँ बचता है तो क्या करना?

0: जी कह रही हैं एनजीओ में, कम्युनिटी, ये सब में दान दे सकते हैं जैसा कि हमने भी बताया। और ये खाना आप जब किसी को देते हैं जो जूठा ना छोड़े, उसके लिए वो कह रहे हैं कि जितना खा सकते हैं उतना ही लें। तो देखिए हमारे श्रोताओं के विचार भी हमसे बिल्कुल मिलते जुलते हैं ना,
1: बिल्कुल मिलते हैं, सामंजस्य उन्होंने भी बना के रखा है। और हमारे और साथी लिखते हैं नेहा कि शादियों में हमने वो समय देखा जब मेहमानों की पंक्तियों में बैठ कर खाना खिलाया जाता था। खाना खिलाने वाला हर मेहमान के पास जाता था और पूछता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, सब अपना अपना लेकर खाते हैं। कुछ मेहमान और बच्चे जरूरत से बहुत ज्यादा अपनी प्लेटों में डाल लेते हैं और थोड़ा सा खाकर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। यानी कि पहले के जो हम लोग पतलों में बैठ के जमीन में बैठ के खाते थे, उसमें
0: जो परोसा जाता था
1: वो पूछते थे कि और लेंगे तो हाँ। इस तरह से खाना थोड़ा बच जाता था।
0: लेकिन कभी कभी तो उसमें भी दे दिया जाता, अरे नहीं खाएंगे, खाइए, दो तीन रोटियां दे दी जाती थी जो कि बच जाती थी। पर ठीक है, सबकी नहीं होती थी, सब अपनी मनमर्जी से नहीं करते थे। और हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट और भारी भोजन के बीच स्वास्थ्य को बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। सही उपयोग और उपभोग करने के लिए कुछ सुझाव उन्होंने दिए कि खान पान में संतुलन रखें, भरपेट न खाएं, पार्टी में जाने के पहले घर पर कुछ हल्का खाकर निकलें। ये तो बड़ी अलग सी बात करें, लोग तो कहते हैं कि दो तीन दिन भूखे रहना चाहिए
1: शादी होता नहीं।
0: हाँ, इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया भाई? तो
1: अपने हिसाब से कहा है, लोग बड़ा इंतजार करते हैं।
0: भूख के कारण जरूरत से ज्यादा ना खाएं, प्लेट का चयन करें, सलाद और हरी सब्जियों को प्राथमिकता दें। प्लेट में 70% हिस्सा स्वस्थ विकल्प प्रोटीन सलाद लीजिए, बोले 30% मनपसंद व्यंजन रखें। तले हुए भोजन नहीं लें, ग्रिल्ड वाले ले लें या स्टीम्ड होते हैं, रोस्ट होते हैं, उन व्यंजनों को ले लें। मिठाई ना खाएं बोल रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी हमारे ऊपर ऐसा नियंत्रण लगा रहे हैं।
1: अरे बहुत
0: सामंजस्य से नहीं बैठ रहा है मेरा इस कमेंट के साथ, क्योंकि देखिए खाने पीने के लिए मना कर रहे हैं।
1: नहीं, मना तो कर नहीं सकते क्योंकि आजकल हमने देखा ना, आइसक्रीम लेंगे और उसके ऊपर या तो रसगुल्ला पहले लेते हैं, उसके ऊपर दो तीन तरह की आइसक्रीम डाल लेते हैं और बढ़िया एक डिश बना के उसको।
0: देखिए मंजरी जी, इतनी सादा खाने की बातें हो गई, हमारे एक श्रोता ने खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें मना कर दी। उन्होंने तो फुल डाइट के हिसाब से बता दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक अच्छी चीज जो कही है कि वृद्धाश्रम में जरूरतमंदों को अनाथालय वगैरह में दे देना चाहिए बचे हुए भोजन। और बहुत सी रॉबिनहुड आर्मी टाइप के इस तरह की कुछ संस्थाएं हैं, वो सब कर सकते हैं। और उन्होंने टिप्स भी दिए कि धीरे धीरे चबाकर आराम से खाइए और शादी में डांस करें या टहलें, ये कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं आखिर।
1: क्या बात
0: तो
1: है?
0: कह रहे हैं कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी, पर हम कह रहे हैं कि तुरंत खाते साथ डांस ना करें, नहीं तो फिर आपको काफी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो पहले अच्छे से पूरी कैलोरी बर्न कर लें जो आप घर से छोटा मोटा खा के आए, और उसके बाद खाएं, बस ज्यादा ना लें। देखिए खाएं सारी चीजें, उससे हमें कोई परहेज नहीं रखना है, लेकिन बस गाना सुनते रहिए।

0: इसी तरह से तैयार होकर सब पहुंच जाते हैं शादियों में शामिल होने के लिए। और खाने पीने के बारे में हमारे श्रोता जो है बहुत सी बातें लिख लिख के भेज रहे हैं मंजरी जी।
1: बिल्कुल, मेरे एक साथी लिखते हैं कि शादी के सीजन में भोजन का सही सदुपयोग। शादी विवाह खुशी का अवसर होता है, लेकिन अक्सर उत्सव में बहुत सा भोजन व्यर्थ चला जाता है। भोजन का सही सदुपयोग करना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन ले, भोजन की बर्बादी ना करें और बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों को तक पहुंचाने का प्रयास करें। इससे अन्न का सम्मान भी होगा और समाज में सेवा का भाव भी बढ़ेगा। भोजन का सही उपयोग ही सच्ची समृद्धि की पहचान है। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर दी है।
0: और हमारे साथी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार होती है, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ने और भोजन की बर्बादी की संभावना रहती है। भोजन का सही उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य और बर्बादी रोकने दोनों पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपने प्लेट में केवल उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। खड़े होकर खाने के बजाय बैठकर धीरे धीरे खाने से पाचन बेहतर होता है। स्वास्थ्य विकल्प चुनें, सलाद, सूप और फल से शुरुआत करें। भारी मैदे वाली रोटियों के बजाय गेहूं की चपाती या मिस्सी रोटी को प्राथमिकता दें। पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सके, लेकिन भोजन के तुरंत बाद बहुत पानी पीने से बचें। नेहा बहुत सुंदर सी बात लिखी, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो लोग पहले ही उसमें बैठ गए खाने के लिए, तो खाना भी खा चुके हैं लेकिन अब टेबल घेरे हुए हैं, उठ ही नहीं रहे, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है।
0: ये एक अलग समस्या है जिस पर हमें एक अलग अलग विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। वैसे तो शादियों का सीजन शुरू है, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं कि ज्यादातर शादियों में हम देखते हैं कि इतनी वैरायटी होती है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या खाएं। ऐसा लगता है कि भोजन की बर्बादी देखना हो तो ऐसे स्थानों पर आकर देखें। बहुत कम शादियों में खाने के आइटम कम होते हैं। मैं जिस विद्यालय में पढ़ाती हूँ वहाँ ब्रेकफास्ट, लंच सभी सुविधाएं, पर दो विद्यार्थी हमेशा ट्रॉली के पास ड्यूटी पर रहते हैं ताकि विद्यार्थी या अन्य स्टाफ भोजन व्यर्थ न जाने देवें। बच्चों को हम कहते हैं कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में, काश इसे सभी समझे।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात है। और हमारे और साथी भी लिखते हैं कि शादियों के सीजन में आजकल भोजन के कई स्टाल लगे होते हैं। इन शादियों में भोजन की बर्बादी भी होती है, लेकिन इसका उपयोग नहीं होता। आजकल कई शहरों में संस्था है जो शादियों के में बचे हुए भोजन ले जाते हैं और जरूरतमंद के बीच बांट देते हैं। ऐसी व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए ताकि खाने की बर्बादी ना हो। आजकल शादियों में महिलाओं की पसंद साड़ी होती है, जितने प्रकार के
0: रस्में
1: होती है उतने प्रकार की साड़ी भी लेती हैं। यानी कि आप बहुत परेशान हो गए हैं,
0: गिनती करते हैं कि कितनी कितनी रस्में हैं उनकी सबकी साड़ियाँ।
1: बिल्कुल, और मतलब साड़ी
0: देखिए ये वाली नहीं हम ले रहे हैं क्योंकि हम खुद शिकायत, हर शिकायत थोड़ी होती है, ऐसे थोड़ी साड़ी भी तो लेने देने चाहिए ना।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग और उसकी बर्बादी को रोकना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे रुकना एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारतीय शादियों में लगभग 40% तक तैयार भोजन बर्बाद हो जाता है जबकि बड़ी संख्या में लोग भूख से जूझ रहे हैं। तो भोजन का सही प्रबंधन करके पैसों की तो बचत कर ही सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकते हैं क्योंकि फेंका हुआ भोजन लैंडफिल में मीथेन गैस पैदा करता है।
1: बहुत अच्छी सी जानकारी दी है और सबको सोचना भी चाहिए इन दिनों। और शादियों के सीजन में भोजन का सही उपयोग, हमारे साथी लिखते हैं कि इस बारे में हम तो हमेशा ही कहेंगे कि पहले ही थोड़ा ही भोजन थाली में लें, खत्म होने पर यदि भूख है तो और ले लिया जा सकता है, पर यदि बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं और नहीं खाते हैं तो भोजन डस्टबिन में जाता है, जो सही नहीं है। सखियों, हम जब भी किसी को डस्टबिन में खाना डालते हुए देखते हैं तो उसे ज़रूर समझाते हैं कि वो ऐसा ना करें, बल्कि किसी और को भी देखें तो उन्हें भी समझाएं। पर कभी कभी किसी को बुरा लगता है कि आपका क्या जा रहा है, पर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि अब हम इस बात पर ध्यान रखें। पहले कभी किसी ने इतने अच्छे से नहीं समझाया इस बात को। असल में सखियों, पहले हम भी ऐसा ही करते थे, खाना ज्यादा ले लेते थे फिर खा नहीं पाते थे, पर अब नहीं। आपने बहुत अच्छी सी बात लिखी और आपने अपनी सच्चाई को स्वीकारा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आप ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग सुन लें गीत।
0: बिल्कुल।

0: नेहा, तो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर प्यारी सी कढ़ाई के बारे में, जैसे चिकनकारी कहा जाता है। और इसकी सुंदर बहुत सारी साड़ियाँ जो होती है बहुत सुंदर लगती है और हर कलर की होती हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन मंजरी जी दो बातें देखिए ऐसी आई हैं कमेंट, जिन्हें बिल्कुल भी नकारा नहीं चाहते, मतलब कह सकते हैं कि जिन्हें जिनसे नजर नहीं हट रही हमारी,
0: तो हम समझ रहे हैं तुम्हारा इशारा, पढ़ लो।
1: हाँ हाँ, क्योंकि वो हमारे काम की बातें आई हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो अभी एक शादी में गए थे, शेक, आइसक्रीम, राजभोग, रसमलाई, पनीर कोफ्ते पर ही हाथ साफ किया, तली भुनी चीजों से दूर रहे। देखिए खाली मिठाई ही वो खा रहे थे, कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई भाई बंधु हैं। और एक और ये कहा कि
0: नेहा, हम साथियों को ये तो बता दे कि नेहा इस कमेंट को देख कह के पढ़ के देख रही थी, कह रही थी कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह का कमेंट है।
1: हाँ, ये बिल्कुल हमारे भाई बंधु है, कहते हैं हमारा कुछ बिछड़े हुए साथी जैसा लग रहे हैं। और एक कहते हैं कि आजकल शादियों में हमें पता नहीं होता कि क्या खाना है, कितना खाना है, जो मिला सब डालते जाते हैं, हमें वही लेना चाहिए जो पसंद हो। हमने देखा कि ठंडे के साथ गर्म दोनों सेवन करने से जो गलत है, इसका स्वास्थ्य पे असर बुरा पड़ सकता है। तो जिन्होंने कहा ना कि उन्होंने सारी मिठाइयों पर हाथ साफ किया, हम तो कह रहे देखिए प्लेट में जितना रखे, जब तक आप अपनी प्लेट पूरी साफ कर रहे हैं तब तक जो खाना खाइए, आपने रिस्क पर खाइए, ऐसा कह सकते हैं,
0: छोड़िए कुछ भी जी। तो चलो हम अपने चिकन के विषय पर आ जाते हैं।
1: हाँ, चिकन की साड़ियों पर।
0: चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है कढ़ाई और कशीदाकारी की। यह लखनऊ की कशीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है और लखनवी जरदोजी यहाँ लघु उद्योग है जो कुर्ते और साड़ियों जैसे कपड़ों पर अपनी कलाकारी की छाप चढ़ाते हैं। इस उद्योग का ज़्यादातर हिस्सा पुराने लखनऊ के चौक इलाके में फैला हुआ है और यहाँ के बाजार चिकन कशीदाकारी के दुकान से भरे हुए हैं। मुरी, जाली वर्क, बखिया, टेपची, टप्पा, इस प्रकार की करीब 36 प्रकार की शैलियां हैं जिनसे कढ़ाई होती है। और इसके माहिर एवं प्रसिद्ध कारीगरों में उस्ताद फयाज खां और हसन मिर्जा साहब का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है।
1: और इस हस्तशिल्प उद्योग का खास पहलू तो यह है कि इसमें 95% महिलाएँ हैं और ज़्यादातर महिलाएँ लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बसी हुई हैं। और अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग, चिकनकारी का उपयोग मुख्य रूप से कुर्ता, अंगरखा और दुपट्टों पर ही होता था, लेकिन बाद में साड़ियों में आने लगा। पहले कॉटन और मलमल की साड़ियों पर काम होता था, अब जॉर्जेट, सिल्क, सिफॉन, सभी प्रकार की साड़ियों पर चिकनकारी की जाती है। और असली चिकनकारी की अगर हम बात करें तो टांके जो हैं थोड़े

0: असमान और प्राकृतिक दिखते हैं और पीछे पर धागों की उलझन या बुनावट दिखती है क्योंकि हाथ से सब होता है और डिजाइन हमेशा अलग और यूनिक होता है क्योंकि एक जैसा नहीं बन सकता, हाथ से बनाई जा रही है।
1: बिल्कुल। और यहाँ कई बार हमने खुद भी देखा है वहाँ पर कि घर घर में कढ़ाइयाँ होती, महिलाएं बच्ची लड़कियां बैठी सब लोग काट रही होती, तो बड़ी मेहनत लगती है कि जब उनके पास घर के काम के बाद समय होता है तब वो अपने इस शौक को पूरा करती हैं। और जहाँ तक इसकी बात करें तो मुगल काल से शुरू हुआ चिकनकारी का शानदार सफर सैकड़ों देशों से होता हुआ आज भी बदस्तूर जारी है। चिकनकारी का एक खूबसूरत आर्ट पीस लंदन के रॉयल अल्बर्ट म्यूजियम में भी विश्व भर के पर्यटकों की अपनी गाथा सुना रहा है। और महीन कपड़े पर सुई धागे से विभिन्न टाकों के द्वारा की गई हाथ की कारीगरी लखनऊ की चिकन कला कहलाती है। अपनी विशिष्टता के कारण ही ये कला सैकड़ों वर्ष से अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। यदि कोई ब्रश और रंगों के सहारे चित्रकारी करे तो इसमें नई बात क्या हुई, लेकिन अगर ब्रश की जगह एक महीन सुई हो और रंगों का काम कच्चे सूत के धागे से लिया जा रहा हो और कैनवास की जगह हो महीन कपड़ा, तो ऐसी चित्रकारी को अनूठी ही कहा जाएगा।
0: बिल्कुल। और बात करें अगर चिकन शब्द की तो ये फारसी शब्द के चाकिन से बिगड़कर बना है। चाकिन का अर्थ है कशीदाकारी या बेल बूटे उभारना। जिस प्रकार मुगल काल ने भारत की कला संगीत और संस्कृति को समृद्ध किया और देश को कई अलग अलग इमारतें दी हैं, उसी प्रकार से चिकनकारी भी इस तहजीब की एक अनमोल विरासत हम कह सकते हैं। और चिकनकारी में अगर हम बात करें तो सुई धागे के अलावा यदि कुछ और भी प्रयोग होता है तो वो है आँखों की रोशनी और एक उच्च स्तरीय कलात्मकता का बोध। सुई धागों से जन्मे टाँकों और जालियों का एक विस्तृत जटिल किंतु मोहक संसार है। तरह तरह के टांकों और जालियों के अलग अलग नाम हैं और उनकी रचना का एक निश्चित विधान भी है, उनकी निजी विशिष्टताएं हैं, किस तरह से बनाना है, क्या करना है, पूरी एक शैली बनी हुई है, उस तरह से ही वो काम करते हैं।
1: और लगभग 40 प्रकार के टांके और जालियां तो होते ही हैं, जैसे मुर्री, फंदा, कांटा, तेपची, पंखड़ी, लौंग, जंजीरा, राह तथा बंगला जाली, मुंद्रा जाली, जाजी, सिदौरा जाली, बुलबुल, चश्म जाली, बखिया आदि बहुत सारी है। सबसे मुश्किल और कीमती टांका है नुकीली मुर्री। कच्चे सूत के 3 या 5 तारों से बारीक सुई से टांके लगाए जाते हैं, जिसे जिस कपड़े पर चिकनकारी की जाती है उसे पहले उस पर बूटा लिखा जाता है, यानी लकड़ी के छापे पर मनचाहे बेल बूटों के नमूने खोद कर इन नमूनों को कच्चे रंगों से कपड़े पर छापा जाता है। इन्हीं नमूनों के आधार पर चिकनकारी का करने के लिए उसको तैयार किया जाता है।
0: और ये कर लेने के बाद एक खास प्रकार के उसको धुलाया जाता है, धोने के लिए दिया जाता है और कच्चा रंग वो हटा देते हैं और साथ ही कढ़ी गई कच्चे सूत की कलियों को भी वो उजला कर देते हैं। तो चिकनकारी की असली खूबसूरती की अगर बात करें तो जो जटिल तकनीक है इसकी, किस तरह से उसमें कढ़ाई किया जाता है वही किया जाता है और अलग अलग तरह से इसे बनाया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि सभी को बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही बारीक काम होता है, अलग अलग तरह के मिलते हैं, आजकल मशीनों वाला काम भी मिल रहा है
1: लेकिन उसकी चिकनकारी की अलग पहचान होती है,
0: आप पहचान सकते हैं।
1: बहुत अच्छे कलर्स में होते हैं, सूती भी होती है, जैसे जॉर्जेट शिफॉन की साड़ियाँ भी हैं और आजकल तो आप नाइट गाउन, नाइटी, मैक्सी, इन सब में और साथ में बेडशीट, बेड कवर और सोफा कवर, इन सब पर भी ये वर्क मिलता है। तो बहुत खूबसूरत होता है जब आप खुद भी पहने और घर भी आपका इन सब से सजा हो। कर्टन भी हमने देखे हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स भी चिकन के बनते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है और अच्छी कढ़ाई है, तो हमारी सखियों में किसी ना किसी को तो ये वर्क आता भी होगा।
0: हाँ, और गर्मियों का मौसम है ना, तो उसमें तो सबकी पसंद ही ये बन जाती है।

0: थोड़ी देर पहले तुम कुछ गुस्सा हो रही थी।
1: नहीं, गुस्सा नहीं होते, हम तो कह रहे थे कि कोई कह रहा है कि खाना अच्छे ज्यादा मत खाओ, कोई कह रहा है कि साड़ियाँ क्यों लेती हर रस्मों के लिए, ये कोई बात हुई? और गुस्सा होने का एक कारण ये भी है कि किसी ने बुलाया ही नहीं है शादी में हमें, और सब बता रहे हैं कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या खा रहे हैं, कहाँ कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, ना हमने नए कपड़े लिए ना हम किसी शादी में गए, तो गुस्सा होना तो बनता है,
0: बिल्कुल बनता है। चलो ठीक है, हम तुमको कुछ फलों के जायके के बारे में कुछ रेसिपी बता देते हैं, तुम बना के खा लेना,
1: कुछ तो गुस्सा कम हो,
0: कुछ तो कम होगा तुम्हारा, ठंडक मिल जाएगी तुमको। तो हम बताने जा रहे हैं रेसिपी में फ्रूट चाट। तो इसके लिए सामग्री लेनी है साथियों कि सेब, केला, पपीता, अमरूद कटे हुए, और इन सबको आप अपने हिसाब से छील छाल के साफ कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, और एक चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, और शहद आप अपने मन के हिसाब से लीजिए। और इसको बनाना कैसा है कि सब फलों को आप मिला लीजिए, उसमें नींबू का रस डालें, ऊपर से चाट मसाला, नमक छिड़के, हल्का शहद डालकर मिलाएं, और इसको आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए तब आप इसको खाएं, खिलाएं, और नेहा हमारी खाएगी क्योंकि थोड़ा सा इसको शांति मिल जाएगी।
1: हमको शांति मिलेगी जब हम कुछ मीठा खाएंगे, इसलिए हम खाएंगे आम की स्मूदी,
0: बनाओ
1: जिसकी रेसिपी हमारे पास ही है, तो हम वही खाएंगे क्योंकि आम का मौसम भी चल रहा है और शादी में किसी ने बुलाया नहीं, तो अपना हम खुद ही आम खरीदेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही खाएंगे खुद ही तैयार होंगे, खुद ही खाएंगे। तो एक आम पका हुआ लेना है, इसके लिए काटकर एक कप ठंडा दूध, दो चम्मच चीनी या शहद आप ले सकते हैं, बर्फ के टुकड़े इसके लिए ले सकते हैं। मिक्सर में पहले तो आम डालना है, दूध डालना है, चीनी और बर्फ डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है, थोड़ी गाढ़ी स्मूदी तैयार करना है, और इसके ऊपर से आप डाल सकते हैं पिस्ता या बादाम, और इस तरह से सजा लीजिए, ठंडा ठंडा हो जाएगा, और इसके बाद आराम से बैठिए, ऐसे टाइम पे बैठिए जब आसपास कोई ना हो, और पूरा आराम से अकेले खा लीजिए।
0: अच्छा, तुम आज अकेले खाने वाली, तो ये तो मुझे देगी नहीं, कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगी तो हम अपने लिए बना लेंगे स्ट्रॉबेरी दही। इसकी सामग्री हमारे साथ ही नोट करिए, एक कप दही, आधा कप स्ट्रॉबेरी कटी हुई, आधा चम्मच शहद, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और इसकी विधि है कि दही को अच्छे से फेंटें, उसमें स्ट्रॉबेरी और शहद मिलाएं, ऊपर से ड्राई फ्रूट डालें, और बस ठंडा करके आप खाएं, बच्चों को खिलाएं, और नेहा को देख देख दिखा दिखा के खाएं।
1: हम तो देखने ही नहीं जा रहे हैं। और फ्रूट कस्टर्ड भी बना सकते हैं कोई चाहे तो। दो कप दूध, दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसके लिए लगेगा, तीन चार चम्मच चीनी, और इसके लिए फल ले सकते हैं सेब, अंगूर, केला और अनार। और इसकी विधि है कि दूध को उबालिए और थोड़े दूध में कस्टर्ड पाउडर घोलकर मिला लीजिए, जब गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा होने तक पकाना है आपको, और ठंडा होने पे फल डालें। तो मतलब दूध उबलने के बाद कस्टर्ड पाउडर थोड़े से दूध में घोल के आपको मिलाने, क्योंकि नहीं तो डलियां पड़ जाती हैं, तो अलग से आप इसको घोल के इसमें डाल दीजिए, और ठंडा होने पे इसमें आप फल डालिए और फ्रिज में रख के सर्व कीजिए, स्वाद दुगना हो जाएगा। हमें दिखा के खाइए या खुद खाइए, हम तो खाने वाले हैं आम की स्मूदी,
0: और फिलहाल सुनने वाले हैं गाना।

0: और कैसे बन रहा है ये अफसाना?
1: ये सामंजस्य बना के बन रहा है। और देखो, सामंजस्य का मतलब होता है लोगों, परिस्थितियों और खुद के साथ संतुलन बनाकर चलना। ये सिर्फ दूसरों को खुश करने का नाम नहीं, बल्कि समझदारी से रिश्तों और हालात को संभालना है। और किन किन के साथ सामंजस्य रखा जा सकता है नेहा, कि पहले तो खुद के साथ, सबसे पहले अपने विचारों, भावनाओं और जरूरत को समझना जरूरी है। अपनी सीमाएं पहचानें, खुद को समय दें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, और परिवार के साथ भी आप सामंजस्य, आप परिवार के साथ बात आती है तो परिवार में सामंजस्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि बहुत सारे रिश्ते होते हैं छोटे बड़े, तो हमें बड़ों का सम्मान करना है और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें जो हो जाती है, और छोटों को भी प्यार सम्मान देना है, खुलकर बातचीत करनी है रिश्तों में, तभी सामंजस्य अच्छा बन रहता है।
0: जी, और हमारे साथी लिखते हैं कि सामंजस्य का अर्थ है तालमेल, अनुकूलता या समन्वय, जहाँ विभिन्न तत्व मिलजुल कर एक सुसंगत रूप बनाते हैं। ये मानसिक या व्यवहारिक स्तर पर संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसमें पर्यायवाची शब्दों में मेल, तालमेल, संतुलन, अनुकूलता, समन्वय, समझौता, सद्भाव और सामंजस्यता शामिल हैं। इन्होंने सारे शब्दों का भी एक सामंजस्य बना दिया हमारे लिए।
1: बहुत अच्छी सी बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, एक शब्द हमारे विचार आपके इस बात का प्रतीक है कि भाषा केवल एक माध्यम है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब वो हमारे सच्चे विचारों और इरादों के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठा सके। सामंजस्य प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और शब्दों में ईमानदार, साफ सुथरा और प्रामाणिक होना आवश्यक है। जब हम अपने मूल्यों को जीते हैं और उनके अनुरूप ही बात करते हैं, तब हमारे जीवन में स्पष्टता और समृद्धि आती है।
0: और एक और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य शब्द के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा, तो सामंजस्य से अगर जीवन में नहीं हो तो आप कोई काम बिना तनाव के, अगर सामंजस्य हो तो आप कोई भी काम बिना तनाव के कर सकते हैं, बिना ज़्यादा दिक्कत के, वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जीवन में जो बुरी परिस्थितियां भी आएंगी, अगर वहाँ भी अगर आपके पास समान रहते हैं सामंजस्य बनाकर रहते हैं, तो वो परिस्थितियां भी टल जाएंगी और अच्छे दिन आपके जीवन में वापस आ जाएंगे।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि जब हम जोश भरी आवाज़ में सुनते हैं वैभव, सूर्यवंशी और यशस्वी वाली बातें, तो ये आपसी सामंजस्य दिखाते हैं। कुल 23 रन जोड़ लिए हैं तो कितना अच्छा लगता है, इन्होंने लिखा है। दो मन उनके विचार और कृतियों की साधने वाला समान दुआ यानी सामंजस्य, जिसमें आपसी तालमेल, अनुकूलता, समन्वय, संतुलन और एक रूपता होती है। हमारा दैनिक जीवन खेल, संगीत और कला क्षेत्र के साथ राजकीय और सामाजिक व्यवहार में भी सामंजस्य होता है, जिससे रिश्ते मधुर हो जाते हैं, संघ भावना बढ़ जाती है और लक्ष्य प्राप्ति आसान बन जाती है।
0: और हमारी एक और साथी लिखते हैं कि सामंजस्य जीवन को सुंदर और सरल बनाने की कला है। जहाँ विचारों, व्यवहार और संबंधों में तालमेल होता है, वहाँ शांति और प्रेम बना रहता है। परिवार, समाज और मित्र, हर रिश्ते की मजबूती का आधार सामंजस्य ही है। सामंजस्य से मतभेद भी सहजता से सुलझ जाते हैं और जीवन में खुशियों का संचार होता है। और असली खुशियां आती हैं जब सामंजस्य बना रहे बातों और गीतों के बीच।
1: तो गीत सुन लेते हैं।

0: तो देखो हमारे साथी लिखते हैं नेहा कि सामंजस्य का अर्थ है एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, विचारों में संतुलन रखना और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना। जहाँ सामंजस्य होता है वहाँ रिश्तों में मजबूती और कार्यों में सफलता निश्चित होती है। जैसे संगीत में अलग अलग सुर मिलकर मधुर धुन बनाते हैं, वैसे ही जीवन में अलग अलग स्वभाव और विचार जब एक साथ जुड़ते हैं तब सुंदर संबंध बनते हैं। परिवार, मित्रता और समाज, हर जगह सामंजस्य का विशेष महत्व है। ये न केवल मतभेद कम करता है बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास को भी बढ़ाता है। आइए हम सभी अपने व्यवहार में सामंजस्य अपनाकर जीवन को और सुंदर, सरल और आनंदमय बनाएं।
1: और हमारे एक साथी ने तो अपनी दुविधा लिख दी है और अच्छा। कैसे उनके जीवन में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है वो बता रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से गर्दन की जकड़न के कारण विविध भारती और मोबाइल के साथ अपना तालमेल यानी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। आज थोड़ा सुधार है तो चला कि आज वो जुड़ गए। जैसे अच्छी रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथकर एक ठोस पिंड बनाना पड़ता है, उसी तरह अच्छे संबंध को कायम रखने के लिए व्यक्तियों के समूह के बीच सहयोग रूपी आटे को भी अच्छी तरह से गूंथ देना पड़ता है, तभी जिंदगी का सफर सुहाना बना रहेगा। हम कह रहे हैं कि अगर उनको गर्दन में दर्द है तो वो विविध भारती सिर्फ सुन सकते हैं ना,
0: बिल्कुल
1: सुनते हुए आपके कमेंट हम बाद में मतलब शामिल तो हो ही जाएंगे, तो उतना सामंजस्य हम बिठा सकते हैं।
0: आप अपना ख्याल रखिए और हाँ। फिर हम सुनिए अगला कमेंट संदेश। हमारे साथी ने लिखा है कि परिवार मुझे जो पसंद है वो है ज्वाइंट फैमिली, जो हमारी भारतीय संस्कृति भी है। ज्वाइंट फैमिली में घर के मुखिया के सामने घर के हर सदस्यों के बीच सामंजस्य बैठाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती, क्योंकि हर सदस्य की अपनी अपनी पसंद होती है, जनरेशन गैप की समस्या। परंतु घर का मुखिया अगर उसमें ये काबिलियत है तो अपने परिवार की नैया पार लगा लेता है, तभी सभी में सामंजस्य बैठाकर। बिल्कुल सही बात है, जो घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं हर एक का, लेकिन सबको भी समझना चाहिए कि हमारे वो क्या कह रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को भी समझना चाहिए। सामंजस्य तभी बैठता है जब हम एक दूसरे की बात को थोड़ा सुनना पसंद करते हैं।
1: तो कुल मिलाकर हमारे सभी साथी यही कह रहे हैं कि सबसे मिलजुल कर अगर हम बातें करें और सबकी बातों को ध्यान रखें, शरीर के बीच में भी सामंजस्य बिठाएं, विचारों में सामंजस्य बिठाएं, तो जीवन अच्छा हो सकता है। तो क्यों ना एक गीत सुनवा दिया जाए।
2: मत बेकरार कर

0: अब तो हम भी कुछ नहीं जानते क्योंकि समय वमय रह नहीं गया है।
1: तो अब हमें चलना होगा, तो सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारी एक खास मेहमान आई हुई हैं। आप हैं जानी मानी रंगनेत्री और अभिनेत्री प्रभा शर्मा, और हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, उनके रंग यात्रा पर, उनकी टीवी यात्रा पर और उनकी फिल्मी यात्रा पर। तो प्रभा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मंदाकिनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। और ये बताइए कि विविध भारती आने पर आपको क्या लग रहा है?
2: ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने घर में आई हूँ विजिट करने। हाँ, क्योंकि मैं रेडियो आर्टिस्ट भी रही हूँ, अनाउंसर एंड कंपेयरर, ये मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: तो आपने आकाशवाणी में जाकर काम किया है?
2: जी, मैंने किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही मैं भारत भवन में सिलेक्ट हो गई थी एज एन एक्ट्रेस। तो बहुत ज्यादा काम रेडियो में नहीं कर पाई, क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी। 10 से 12 घंटे तक हम लोगों को वहाँ रहना होता था, और उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। तो यहाँ इतनी व्यस्त हो गई कि उसके बाद फिर रेडियो करने का मतलब मौका भी नहीं था। हालांकि मैंने सीखा रेडियो से ही, वॉइसिंग रेडियो से सीखी, माइक का सेंस मुझे रेडियो से आया, जिसने मेरी बहुत बहुत सहायता की बाद में यहाँ डबिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। तो रेडियो प्ले आर्टिस्ट होने के कारण ही मैं वो आवाज़ के उतार चढ़ाव, कैरेक्टर में जाना, कैरेक्टर से निकलना, वो सारी चीज़ें मैं रेडियो की वजह से सीख पाई, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिसने मुझे एक्टिंग में भी और बाद में डबिंग फील्ड में, जिसकी मैं मास्टर रही हूँ, मानी जाती हूँ। मुझे भी कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि हाँ, मैंने बहुत काम किया।
1: बिल्कुल, आपने बहुत काम किया। और मैं आपसे जानना

0: चूंकि ये लंबे लंबे थे, 20 एपिसोड्स 13 एपिसोड्स की, तो वो काम काफ़ी महत्वपूर्ण था और वो
1: जी
0: सिर्फ रेडियो के लिए था। वैसे मैंने रेडियो वाणी के लिए भी काम किया है।
1: प्रभा जी, थिएटर आने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, कैसे नाटकों की दुनिया में आए, कैसे लगा आपको कि मुझे नाटक करने चाहिए थिएटर की दुनिया में?
0: जी वो तो बस यूं समझ लीजिए कि जैसे ईश्वर की इच्छा थी कि मैं आऊं एक्टिंग की दुनिया में, क्योंकि मैं छोटी ही थी, करीब होंगी 16 17। तो मेरे पापा के कोई फ्रेंड थे, वो एक प्ले कर रहे थे, एमेच्योर थिएटर की बात कर रही हूँ मैं, उनकी करीब हफ्ते भर पहले उसकी हीरोइन चली गई छोड़
1: अच्छा
0: के,
1: जी
0: तो वो परेशान थे, हीरोइन ढूंढ रहे थे। तो वो पापा से बोले कि आपकी लड़की तो अच्छी है, अच्छी दिखती है, तो ये करेगी क्या? तो पापा बोले अगर उसकी इच्छा है तो कर ले। उन्होंने मुझसे कहा करेगी क्या, मैंने कहा मैंने तो कभी किया नहीं है पर कर लूँगी अगर करवाना है तो। तो बोले ठीक है आ जाओ देखो। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़वाई, मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ दी पहली बार में ही। उन्होंने कहा आ जाओ, उनको हीरोइन मिल गई और मुझे एक एक
1: गई
0: नया जीवन।
1: जीवन मिल गया।
0: तो वो मेरी शुरुआत थी, पहला प्ले था मुल्ला नसरुद्दीन,
1: अच्छा
0: हाँ,
1: जी
0: रईस हसन उसके डायरेक्टर थे, जो कि बाद में मेरे रेडियो में भी हीरो थे, वो जो उसमें डायरेक्टर थे, और मैं उनको मामा जी कहती थी। आप सोचिए आवाज की दुनिया का विरोधाभास देखिए,
1: जी जी जी
0: कि वो मेरे मामा हैं, मतलब मुझसे कितने बड़े होंगे, पर वो मेरे हीरो थे।
1: हीरो थे।
0: जी
1: तो अब
0: जी
1: तक
0: जी
1: आपने कितने नाटक कर लिए होंगे?
0: स्टेज पे तो मैंने मेरे ख्याल से 25 30 नाटक किए होंगे, क्योंकि नाटकों की दुनिया में मैं रही करीब 8 10 साल, उसके बाद वो नाटक मुझसे छूट गए।
1: तो आपने गिरीश कर्नाड का लिखा नाटक था हैवदन, उसमें आपने काम किया और जाने माने नाटककार
0: जी
1: बीवी कारंत साहब के निर्देशन में,
0: जी
1: एक
0: जी
1: बहुत बड़ी बात है।
0: जी
1: तो कैसे मिला आपको ये नाटक और क्या अनुभव रहा होगा इतने महान डायरेक्टर के साथ काम करने का आपका?
0: जी इसके लिए तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि मेरे अभिनय की नींव, मेरे करियर की नींव, मेरे व्यक्तित्व की नींव, ये नाटक था हरवदन। क्योंकि मैं भारत भवन में गई, रंगमंडल में, तो वहाँ पे ये नया नाटक ओपन हुआ था, कास्टिंग की जा रही थी। उस कैरेक्टर में कारण जी को मैं ही सबसे ज़्यादा फिक्स, मतलब लगा कि उनको ये इसमें फिट होती है लड़की, नई लड़की थी मैं, लेकिन वो बहुत बड़ा नाटक था और बहुत प्रेस्टिजियस था कारण जी के लिए भी।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे बोला गया, स्क्रिप्ट पढ़ने को दी गई, मैंने उसे अच्छे से पढ़ा, उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की मुझ पे, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी के लिए भी एक चुनौती था, इससे पहले उन्होंने NSD में ये किया था और कारण जी को जाना जाता था इस नाटक से ही, और वो कैरेक्टर उसमें जो है बदन में जो मेन कैरेक्टर है वो सेंट्रल कैरेक्टर है पद्मिनी का, तो वो पद्मिनी मैंने प्ले किया था। और उसके लिए जो उनको चाहिए था, उसके लिए उन्होंने मेरी चाल पे, मेरी आवाज़ पे, मेरी आंखों के एक्सप्रेशन पे, वहाँ से लेके एक एक चीज़ पे काम किया, और वो जो उन्होंने काम किया वो मेरे जीवन भर की कमाई है समझ लीजिए, क्योंकि वो एंड तक, अब तक मेरे काम आ रही है
1: जी
0: जो जो बताया उससे, जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुए। और वो प्ले भी हमने कालिदास समारोह उज्जैन वहाँ भी किया, इलाहाबाद में भी किया, कलकत्ता रविंद्र नाट्य में, उसमें बॉम्बे में भी किया था, मतलब लगभग सारे भारत में उसका हम लोगों ने टूर किया था, तो सभी
1: तो
0: जगह था। दिल्ली में श्रीराम सेंटर में भी एक फेस्टिवल हुआ था, उसमें हयवदन से ओपन किया गया था। 3 दिन तक पहले हयवदन था, उसके बाद में दूसरे नाटक थे।
1: तो
0: तो
1: इस नाटक से जुड़ा कोई डायलॉग आपको याद है या कोई घटना जिसे आज भी आप याद करती हो?
0: बिल्कुल, मेरे पास घटना भी और डायलॉग भी दोनों ही कहूंगी मैं आपको। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों के दोनों, दोनों चले गए, दोनों चले गए, मरने से पहले मुझे तो याद

0: कपिल चला गया, देवदत्त भी चला गया। तो ठीक है, इनके पीछे पीछे मैं भी चली जाती हूं। इस पूरे कैरेक्टर को जीना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है।
1: बिल्कुल
0: अभी जो मैंने दिखाया वो कितनी सच्ची लग रही है, कितनी
1: बिल्कुल
0: भोली लग रही है, लेकिन उसकी चालाकी
1: उसके
0: देखिए,
1: अंदर क्या
0: यहाँ
1: चल रहा है। हाँ
0: वो यहाँ देखिए। अब ये दूसरे डायलॉग में आपको
1: जी
0: दिखाई
1: जी
0: देगा।
1: बिल्कुल
0: चलो चलो देवदत्त, कपिल ये क्या है? ओफो, हमें क्यों सता रहे हो? जाओ यहां से। देवदत्त मेरे राजा, मेरे कारण मेरा राजा नया आभूषण पहन के आया है। चलो अब देवदत्त, चलो घर लौटते हैं। हाँ सुनो देवदत्त, थोड़ा सा ठहरो। हाँ कपिल, उदास मत हो कपिल, फिर मिलेंगे, है ना? सुनो, देवदत्त के साथ जाना मेरा धर्म है। याद रखो, चाहे मैं देवदत्त के साथ चली भले ही जाऊं, पर जा रही हूं तुम्हारी ही काया के संग। फिर मिलेंगे कपिल।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आपको सामने देखकर भी वो भाव नजर आ रहा है जो उस वक्त आपने किया होगा। और चलिए अब हम आपसे आगे सवाल करें, उससे पहले आपकी पसंद का कोई एक गीत सुन ले।
0: जी जरूर, आपने गानों की बात कही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं मोहम्मद रफी की ग्रेट ग्रेट ग्रेटेस्ट फैन हूँ।
1: अच्छा जी
0: मैं अपनी जिंदगी में मोहम्मद रफी के अलावा शायद ही कोई किसी दूसरे सिंगर को सुनती हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ, या तो डुएट भी होते हैं तो उनके साथ ही होते हैं, तो मेरी पसंद के ज्यादातर गाने मोहम्मद रफी के ही हैं, और डुएट हैं तो उनके ही साथ हैं। फीमेल में मैं आशा जी को ज्यादा पसंद करती हूँ। उनकी आवाज की जो एक शार्पनेस है ना, एक खनक है उनकी आवाज में, वो मुझे बहुत पसंद है।
1: जी जी
0: और जिस तरह से वो वेस्टर्न, इंडियन, सारे म्यूजिक में, क्लासिकल और उस सब में ढल जाती हैं, वेस्टर्न को जिस तरह से वो पकड़ती
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल,
0: वो मुझे बहुत पसंद है। उनका रुत है मिलन की साथी मेरे आ रे।
1: क्या बात है।

0: प्रभा जी, आपने निर्देशक जो थे NSDN आलोपी वर्मा, उनके साथ भी कई नाटक किए हैं
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: उनके साथ कौन कौन से नाटक आपने किए, कोई खास अनुभव?
1: जी, आलोपी जी हमारे भारत भवन में सह निर्देशक थे, तो उनसे हमने बहुत सीखा. एक तो उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज हमको सिखाई थी, मेकअप का भी उन्होंने सिखाया था हमको.
0: बिल्कुल.
1: और उन्होंने प्ले किया था एक मॉक डॉक्टर, उसमें मेन रोल मैंने किया था. जब मैं भी बॉम्बे आ गई थी और आलोपी जी भी बॉम्बे आ गए थे, तो हमने यहाँ पृथ्वी थिएटर में एक प्ले किया था. हमारा एक ग्रुप था कुटुंब.
0: अच्छा.
1: जिसमें अन्नू कपूर, आलोपी जी तो थे ही, आलोक नाथ, नीना गुप्ता और अरुण वर्मा, रवि के मुंह वो भी थे, पंकज बेरी वो भी थे, मैं थी, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उस समय.
0: बिल्कुल.
1: उनके साथ में हमने रोशमन प्ले किया था, आलोपी जी ने डायरेक्ट किया था वो. तो रोशमन में भी ये पद्मिनी जैसा ही है वो भी कैरेक्टर, तो वो भी मैंने मेन रोल किया था उनका, और ये पृथ्वी में उसका शो हुआ था.
0: तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थिएटर में काम करने के दौरान एक कलाकार को शारीरिक कहें या मानसिक कहें और तकनीकी रूप से गहन तैयारी करनी पड़ती
1: जी,
0: है.
1: जी, बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: और जैसे हम कह सकते हैं कि अनुशासन, आवाज
1: जी,
0: या शारीरिक भाषा पर नियंत्रण कैसे रखे एक कलाकार
1: जी,
0: और डायरेक्टर के जो डायरेक्शन है, निर्देश है, उनका पालन करना बाकायदा
1: जी, जी.
0: और संवाद याद करना, जो सबसे मुश्किल काम हो जाता है,
1: मुश्किल
0: संवाद याद रखना. हाँ. बहुत सारी बातें जिन्हें कलाकार को ध्यान रखना पड़ता है. खुद को इन सब के लिए कैसे तैयार करता है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं.
1: ये तो साधना है. मतलब अभिनय को लोग बहुत आसान समझते हैं, सहज समझते हैं कि अभिनय करना मतलब डायलॉग बोल दिए या मेकअप कर लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बस हो गई एक्टिंग. ऐसा नहीं है, ये पूरी एक साधना है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत की साधना. लोगों को लगता है गाने गाना बहुत आसान है, लेकिन पूछिए उनसे,
0: बहुत मुश्किल,
1: कि शास्त्रीय संगीत कैसे साधा जाता है. ठीक वैसे ही आर्टिस्टों को भी साधना पड़ता है, शरीर को बलिष्ठ बनाना पड़ता है, साथ में लचीला, तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है. आवाज को उतार चढ़ाव, साथ में दमदार, लंबे समय तक आवाज की, मतलब उसकी लेंथ भी दूर तक जाए, लय भी ना टूटे, साफ भी हो, तो ये सारी ध्यान रखनी पड़ती हैं चीजें. उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है.
0: बिल्कुल.
1: और इस सबको कंट्रोल करने के लिए तो नियंत्रण तो आपने कहा वो है ही. और निर्देशक के हिसाब से नहीं चलेगा आर्टिस्ट, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा.
0: बहुत मुश्किल होता है. कई बार निर्देशक की लताड़ भी खानी पड़ती है कलाकार को.
1: कई बार नहीं, बल्कि मैं कहूंगी वो तो रोज खानी पड़ती है. अगर कोई प्रोफेशनल होना चाहता है और अगर कोई वाकई अच्छा कलाकार बनना चाहता है, तो उसको तो लगातार डांट खानी पड़ती है, खानी पड़ेगी ही.
0: बिल्कुल.
1: तो मुझे ये डांट खानी पड़ी थी, वो जो मैं आपको बता रहे थे, कारण जी की डांट खाई थी मैंने, सबसे ज्यादा उन्हीं की डांट खाई है. दो तीन चीजों पे खाई. एक तो ये कि मैं बेसिकली, जो मेरा कैरेक्टर है ना, वो चालाक नहीं है, सहज और स्वाभाविक हूं मैं, और ये जो कैरेक्टर था ये एकदम अलग था, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, इस कैरेक्टर को, पद्मिनी के कैरेक्टर को. मैं अंदर से इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण बहुत था, इसलिए मैं कर रही थी. कारण जी ने कहा है, भारत भवन में हूँ, आर्टिस्ट हूँ, वहाँ की तो मेरी नौकरी थी, तो मुझे करना ही था. तो मैं पता नहीं क्यों, चूंकि मैंने अंदर से उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो कारण जी जो चाह रहे थे कि मैं चालाक दिखूं, मैं दिखूं कि एक के साथ रहते हुए दूसरे को रिझा रही हूं, ये दिखना चाहिए मेरी हरकतों से, मेरी आंखों से, मेरी एक्सप्रेशन से, जो कि नहीं दिखता था. तो मुझे रोज डांट पड़ती थी इस बात पे. शो के बाद हम लोग मीटिंग होती थी, मीटिंग में किसने क्या अच्छा किया, बुरा किया, वो सब बताया जाता था. तो कारण जी ने मुझे, प्रभा मुझे एक बात बताओ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम एक बात बताओ, मैंने तुमको पद्मिनी क्यों लिया? तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, क्यों लिया, आपकी पसंद, आपकी, आपको लगा होगा कि मैं पद्मिनी के लायक हूं. तो वो मुझे बोले, क्या तुम इतनी खूबसूरत हो जैसे पद्मिनी को दिखाया गया है? सच बताऊं, मुझे नहीं लगता था कि मैं खूबसूरत हूं. तो मैंने कहा नहीं. तो उन्होंने बोला, फिर क्यों लिया? तो मैंने कहा, मैं नहीं जानती, आप जानते होंगे. बोलते, तुम्हारी आंखों की वजह से, तुम्हारी आंखें वो हैं जो किसी के पास नहीं है, वो बोलती हैं, लेकिन तुम इनका यूज नहीं कर रही हो. मैं थक गया हूँ तुमसे, आज आठवां नौवां शो है, तुम कर क्यों नहीं दिखता तुम्हारी आंखों से वो चालाकी, क्यों नहीं दिखता कि तुम छल कर रही हो उसके साथ, यहाँ प्यार में डूबी हो, वहाँ नहीं डूबी हो, वहाँ चालाकी कर रही हो, क्यों नहीं। जो इतना डांटा गया, उसके बाद मैंने तकरीबन 20 से 25 शो के बाद इस चीज़ को पिकअप किया और तब मैंने ये आंखें घुमाना, जो कि मेरा बुनियाद में काम आया।
0: बुनियाद धारावाहिक में काम आया। हाँ, जी जी जी,
1: उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था और मैं नेगेटिव कैरेक्टर पसंद नहीं करती थी। उसमें मैंने जब कैरेक्टर किया ना अपना, जो कैरेक्टर पिकअप किया, तो उसमें ये था कि मैं आंखें घुमा के, चुटीला घुमा के, और मैं वो चुगलियां करती हूँ, इसको देखती हूँ, उस पे वार करती हूँ, ये सब करती हूँ। ये रमेश सिप्पी ने मुझसे कहा था, मतलब वो मुझे देख के, जब मैंने ये किया था पहली बार, ये चोटी घुमाई थी, तो उन लगे वेरी गुड प्रभा, कीप इट अप।
0: सही बात है, यानी कि वो चीज आपको वहां काम आई, और एक कलाकार के लिए हर एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं काम आता
1: है, जो वो सीखता है।
0: महान
1: डायरेक्टरों से उनके साथ काम करना इसीलिए बड़ी अचीवमेंट है।
0: मुझे बताइए प्रभा जी, कि मंच के लिए किसी किरदार की तैयारी का मतलब होता है कि उसके वास्तविक स्वरूप को और नाटक की कहानी के साथ हम जुड़ जाएं, है ना?
1: जी, जी,
0: वैसे के वैसे हो जाए, समाहित हो जाएं। तो आप किसी किरदार में कैसे घुसती हैं और फिर कैसे निकल जाती हैं? आपको कभी दिक्कत आई कि किरदार में घुस गई तो घुस ही रह गई और निकल नहीं पाई?
1: मुझे ये दिक्कत नहीं हुई, ये मेरे अंदर से स्वाभाविक ही हमेशा से ही रहा। जो भी कैरेक्टर मेरे सामने होता है, मैं ऐसे फील करती हूँ कि मैं यही हूँ, उसको फील करती हूँ, उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसके पर्यावरण को, सब कुछ, तो मैं वही बन जाती हूँ। लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, जैसे ही वो खत्म हुआ मैं तुरंत प्रभा हो जाती हूँ।
0: जी, जी, जी।
1: तो इसीलिए यही है कि मैं एकदम, मेरा सामने अपीयरेंस बिल्कुल अलग है और मेरा स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल अलग है। उसका कारण यही है, क्योंकि मैंने प्रभा पे कभी भी कोई कैरेक्टर हावी होने नहीं होने दिया। मैं प्रभा हमेशा बनी रही।
0: बिल्कुल,
1: कैरेक्टर आते हैं जाते हैं, मतलब मुझे कहते थे ये ऐसी एक्ट्रेस है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। हाँ, एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, कैंपस सीरियल जिन्होंने डायरेक्ट किया था, संजीव भट्टाचार्य नाम था उनका। तो एक बार उनके यहाँ ऑडिशन चल रहे थे, तो उस ऑडिशन में मुझे भी कॉल किया गया था। मैं वहाँ गई, मैंने वो ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में एक सोलोलॉकी थी और उसमें वो जो लेडी होती है उसके अंतर्द्वंद को दिखाना था उसमें, जिसमें वो टूट जाती है, मतलब जैसे किसी एक अंधेरी सुरंग में वो बहुत दिनों से फंसी हुई है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, एक रास्ते की किरण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है, और वो प्रार्थना करते हुए वो अपनी पुरानी बातें, अपने अंदर का संघर्ष, ये सब बताते हुए वो टूट जाती है। तो ये था, हे भगवान, कहीं कोई रोशनी की एक किरण तक नहीं, कब कब निकालोगे, क्या मुझे एक किरण भी नहीं दिखाओगे तुम? इस तरह से जैसे मैं उसमें फट पड़ती हूँ, तो मैं इस तरह से रोई हूं टूट के कि उनको लगा मैं कैरेक्टर में चली गई, अब इसको डिस्टर्ब मत करो। तो वो दो लोग थे, संजीव जी थे और एक उनको असिस्ट कर रहे थे, एसोसिएट थे, वो दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे कि उन्हें डिस्टर्ब मत करो, बेचारी टूट गई है। तो बहुत देर तक जब उन्होंने मुझे रोका नहीं, तो मैंने देखा पलट के, मैंने कहा क्या हुआ, आप कट क्यों नहीं कर रहे, आर यू ओके? ऑफ कोर्स। तो बोलते हमें लगा कि आप मतलब ट्रांस में चली गई हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो कैरेक्टर था, मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो मैं यू करती, जैसे आपने अभी देखा, मैंने अभी आपके सामने किया।
0: यही एक कलाकार की पहचान है कि वो कब कैरेक्टर में घुसता और कब निकल आता है। तो चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
1: एक आशा जी का गीत सुन ले। आशा जी के गीत भी मुझे बहुत पसंद है, उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। उनका एक रेयर सॉन्ग है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया।

0: कि पृथ्वी थिएटर में भी आपने बहुत काम किया है और हर रंगकर्मी का सपना होता है कि पृथ्वी थिएटर में काम किया जाए। तो नाटक बगुला भगत में आपने राधा का किरदार किया था, विजय वर्मा शायद डायरेक्टर थे इसके। तो ये सभी एनएसडी पास आउट डायरेक्टर हैं, इनके काम करने का तरीका क्या एक आम डायरेक्टर के काम करने के तरीके से कुछ अलग होता है? आपने क्या महसूस किया?
1: हाँ, एनएसडी के लोग बहुत बारीकी में चीजों को समझते हैं, पकड़ते हैं, चूंकि उनको तो वो तो पूरा एक ग्रेजुएशन है ना एनएसडी में, वहाँ पढ़ना तो पूरा एक लेते हैं, तो वो कारंजी वाली चीजें एनएसडी के सभी लोगों में है। तो मैंने सौभाग्य से उनके साथ काम किया है, ये सारी चीजें मैंने इन्हीं लोगों से सीखी। बगला भगत वो कॉमेडी नाटक था, मैंने जो कुछ भी सीखा जहां जहां से थोड़ा थोड़ा सब जगह से सीखा, मेन तो करण जी से ही सीखा सब कुछ, लेकिन फिर भी हर एक डायरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेरा लास्ट प्ले जयरूप जीवन जी के साथ ही था, ढाई आखर प्रेम का। इसमें क्या हुआ था, तब तक मैं आवाज की दुनिया की काफी बड़ी शख्सियत बन चुकी थी, तो मैं हीरोइंस करती थी ज्यादातर, उस समय सिर्फ फिल्में चला करती थी, उस समय सीरियल तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। इंट्रोड्यूस तो हुए थे लेकिन बहुत कम, डीडी पे ही होते थे और वो हफ्ते में एक दिन आता था और वो भी डबिंग नहीं होती थी उनकी, तो मैं फिल्मों में ही कर रही थी। इनका प्ले था ढाई आखर प्रेम का, उसमें मेन रोल में कर रही थी। अब होता ये था कि हमारी जो रिहर्सल्स थी वो होती थी 6 to 8, क्योंकि वो एक स्कूल में हुआ करती थी और 8 बजे स्कूल की तरफ से ये था कि आप ये कंप्लीट कर दीजिए, इसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी, उसके बाद अलाउड नहीं था। और मैं जो डबिंग कर रही होती थी उन दिनों, या शूटिंग भी होती थी, तो उनकी शिफ्ट होती थी 9 to 6, जो कि काम ख़त्म होते होते तक 6:30 हो जाता था वहाँ से निकलते निकलते तक, और पेमेंट वगैरह लेते थे, ये सब बातें होती थी, तो तब तक वो 7 बज जाते थे उन्हीं जगहों पर, और वहाँ से आते आते 7:30 to 8:15। तो अब वो रिहर्सल लगातार हो रही है और मैं लगातार 7:30 to 8:15 यही मेरा टाइम चल रहा है, तो रिहर्सल नहीं मिल पा रही है। तो वो जयरूप जी मुझे बोले, अब एक बात और बताऊं आपको, जयरूप जी के साथ मैंने यश चोपड़ा की सीरियल डॉक्टर साहब में एक्टिंग भी की है
0: जी, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे।
1: हाँ हाँ हाँ, वो मेरे अपोजिट थे उसमें, हम लोग थे
0: जी।
1: तो जयरूप जी मुझसे बोले कि प्रभा जी कैसे क्या करें कि पूरा रिहर्सल का टाइम मिल जाए। मैंने कहा देखिए जयरूप जी, मैं कर सकूंगी तो ज़रूर करती हूँ, करूँगी, अगर नहीं कर सकती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इतना गिल्ट फील करती थी डेली यही होना, मैं आऊँ और बस आधा पौन घंटा हो, एक आध सीन हो पाए, उसके बाद बाकी आर्टिस्टों का होता रहे और जयरूप अपने सर पर हाथ रख के बैठ जाएँ कि आप अब आई हैं। अब डेली ये होते होते 1.5 महीने मैं इस प्रोसेस से गुजरी कि मैं गहरे गिल्ट में चली गई कि ये क्या हो रहा है मेरी वजह से। वो बोले कि ऐसे कैसे होगा, मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं 4 दिन में कर लेती हूँ। बोले आप तो कर लेंगी लेकिन आपके को एक्टर कर लेंगे। इस बीच में इतना मेरे अंदर गिल्ट डेवलप हुआ 1.5 महीने में, मुझे लगे मैं कर क्या रही हूँ। अब क्या हुआ, 4-5 दिन पहले वो जयरूप जीवन बोले कि प्रभा जी अगर आप पूरा 1 दिन दे दें तो हम रिहर्सल रख लें, हॉल ले लें, कॉस्ट्यूम रिहर्सल रख लेते हैं, पूरा रन थ्रू करेंगे। मैंने कहा जी जी जी, शो के 1 दिन पहले। और क्या होता था उसमें, जो मेरा हीरो था मेरे अपोजिट, वो था सुशील पाराशर, काफ़ी एड वगैरह में आते रहते हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे और कॉमेडी में तो उनका कमाल था। तो होता ये था कि वो, अब चूंकि रिहर्सल्स हुई नहीं थी तो एक दूसरे से मतलब वो नहीं हुए थे हम लोग मूवमेंट में इसमें उसमें, वो तो अच्छे एक्टर थे तो अपने आप कर ले जाते थे। तो वो कॉमेडी में ऐसे ऐसे मुंह बनाते, ऐसे ऐसे काम करते कि मेरी हंसी छूट जाती थी। जब मैं हंसती तो जयरूप जी ने बोला एक दिन मुझे कि प्रभा जी आप हंसिए मत, अगर शो में निकल गया तो। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल जाएगा, इतने सालों किया है। बोले देख लीजिए हंसिए मत, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने बोला ठीक है मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन रिहर्सल नहीं मिली थी तो मुझे उस एक्टर के बारे में, मैं मतलब हम दोनों कंफर्टेबल नहीं हुए थे एक दूसरे से, जैसे रिस्पॉन्ड करता है एक्टर एक दूसरे को, वो नहीं हुआ था। तो उस दिन भी जिस दिन फाइनल रिहर्सल थी, कॉस्ट्यूम रिहर्सल थी, उस दिन मैं मीनाक्षी शेषाद्री का एक फिल्म कर रही थी, इसमें मीनाक्षी शेषाद्री की डबिंग कर रही थी, फिल्म थी जुर्म, महेश भट्ट उसके डायरेक्टर थे, वो मैं डब कर रही थी। और एक दिन पहले जब मैंने काम किया तो कुछ किसी कारण से रील नहीं आ पाई, कुछ हो गया, शायद 4-5 रील रह गई उसकी। उन्होंने कहा अब ये हम कल करेंगे, और रिलीज सर पे था, रुक नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कल, कल तो पूरे दिन मेरे लिए हॉल लिया गया है। मैंने कहा मैं कल नहीं आ सकूंगी। वो बोले सोच लीजिए, 9 रील हो चुकी हैं आपकी आवाज़ में। तो मैंने कहा लेकिन मैं कल कैसे आ सकूंगी, क्यों मैं कर नहीं पा रही हूँ। बोले एक काम करते हैं, 2 बजे से रख लेते हैं, सुबह आप रिहर्सल कर लीजिएगा, 2 बजे से रख लेते हैं, लेकिन हम फिर इसे टाल नहीं सकते। और मैं उस ज़माने में उस फिल्म में 25,000 रुपये ले रही थी
0: उस समय।
1: तो 25,000 रुपये उस वक्त जब मतलब लोगों की सैलरी 2,000 होती थी महीने में। और वो उन्होंने कहा, महेश भट्ट के एसोसिएट डायरेक्टर थे शायद, उन्होंने मुझे कहा, वो उस दिन समझा रहे थे वो मुझे बैठ के, बोले आप एक्टिंग क्यों करती हैं, आप थिएटर क्यों कर रही हैं, आप तो टॉप डायरेक्टर के साथ कर चुकी, आपको सारे एक्सपीरियंस मिल गए, आप क्यों कर रही हैं थिएटर। मैंने बोला मुझे खुशी होती है। बोले और ये डबिंग इसमें क्या होता है। मैंने कहा ये भी खुशी होती है। तो बोले कौन सी बड़ी खुशी है, ये या वो। मैंने कहा खुशी तो एक बराबर है, लेकिन बोले क्या नहीं करके आप कंफर्टेबल होंगी। मैंने कहा थिएटर, क्योंकि इससे मेरा खर्चा चलता है। तो बोले तो आप सोच लीजिए आप किस चीज़ के लिए किसको छोड़ रही हैं। मैंने कहा ठीक है। बोले कल आप 2 बजे आ सकती हैं तो आ जाइए, वरना टाटा बाय बाय। मैंने कहा ओके। अब हुआ ये कि मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी कि मैं जयरूप जीवन को बोलूँ कि मैं कल भी नहीं आऊँगी। मैंने उनको बोला कि कल हम 9 बजे से रखते हैं और हम कम से कम 4 रन थ्रू हम कर लेंगे कल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करते हैं। उन्होंने मेरे लिए थिएटर लिया। अब हुआ ये कि किसी को नहीं पता था कि मैं 2 बजे चली जाऊंगी, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये कह दूं कि मैं 2 बजे जाऊंगी। मैंने बोला सुबह 9 बजे सब लोग आ जाएं और 9 बजे से रिहर्सल करते होंगे। ठीक है, मैं 9 बजे पहुँच गई, लेकिन बाकी कोई नहीं पहुँचा। जयरूप जीवन भी 10 बजे पहुँचे, 10:30। उनको लगा 9 बोल रही हैं, कहाँ 9 बजे तक आ पाएंगी। और मैं इस वजह से ज़्यादा वो थी कॉन्शियस कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा था। हम वहाँ पहुँचे, देखा कोई नहीं आया आर्टिस्ट। अब जयरूप जीवन बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी, आर्टिस्ट आने शुरू हुए, 10 बजे से शुरू हुए, क्योंकि ये इमेच्योर थिएटर था, पेमेंट तो मिलता नहीं था किसी को। करते करते वो शुरू हुआ 11:30 बजे, 1 रन थ्रू हुआ, दूसरा शुरू हुआ, 2 बज गए। अब 2 बज गए वहाँ, थिएटर ले चुके हैं वो लोग पे कर रहे हैं एक एक मिनट का, और वहाँ मेरा वेट हो रहा है। 2:45 से मैं कॉन्शियस होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैं इधर उधर देख रही, डायलॉग भूल रही। 2 बज गए, अब मैं सोचूं बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूंगी। अरे 1 रन थ्रू हुआ बार, बस जब तक मैं कुछ बोलूं कुछ करूं, जयरूप जीवन मेरे पास आए, बोलने लगे प्रभा जी प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ। 2:15 बोलते क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा मेरी डबिंग है। बोले आज भी। मैंने बताया, मैंने कहा हाँ कल काम रह गया था उनका, तो मुझे आज भी बुलाना है। मैंने कहा आप बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगी। 25,000 रुपये हैं, महेश भट्ट का काम है,
0: सही बात,
1: इतने बड़े उस पर मेरा नाम हो जाएगा खराब, आप कहें तो मैं छोड़ दूंगी और आप कहें तो करूँ। सर पकड़ के बैठ गए, बोले मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम ये काम मत करो, कर लो। मैंने कहा और मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब मैं बहुत गिल्ट में जी रही हूँ 2 महीने से, अब मैं थिएटर नहीं करूँगी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन जब शो हुआ तो शो में वही हुआ कि मेरी हंसी छूट गई,
0: जो नहीं होनी थी,
1: जो नहीं
0: जिसका
1: होना
0: उन्हें डर था,
1: जिसका उन्हें डर था। और वो इतना स्पॉन्टेनियस था एक्टर सुशील। अब वो लोग मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे करेक्शन करने की कोशिश कर, वो जितना संभालते मैं उतना हंसती, क्योंकि वो कुछ ऐसा था कि मैं नाराज हो जाती हूँ, झगड़ा करती हूँ और मायके जा रही हूँ, तो बोलते हैं झगड़ा जा रही मायके जा रही हूँ, बड़ी तुम्हारी तमीज़ है मायके जाने की, ऐसा कुछ वो उनका था। मेरी हंसी छूट गई, हंसी छूटी तो वो बोलते हैं अरे हंस रही है, देखो वो ऑडियंस को बोल रहे देखो कैसी पागल लड़की है, मैं इस पर नाराज़ हो रहा हूँ।

0: प्रभा जी, सीरियल की दुनिया अब चलते हैं हम, जहां आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है और एक मुकाम बनाया है अपना। तो थिएटर की दुनिया से निकलकर जब आप टीवी की दुनिया में आई तो वो शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि वो जमाना था दूरदर्शन का।
1: जी हाँ जी।
0: तो बुनियाद सीरियल में आपने जाने माने निर्देशक रमेश सिप्पी के साथ काम किया है, उनके निर्देशन में, और बहुत ही क्लासिक विभाजन गाथा थी ये बुनियाद जो है।
1: जी, जी।
0: आपको मतलब किस तरह से चयनित किया गया, क्या ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के जरिए चुना गया, या
1: मैं आपको बताऊं, ये जो ऑडिशन वाला चक्कर है ना, ये बाद में शुरू हुआ है।
0: अच्छा, पहले नहीं होता था?
1: तब नहीं होता था, तब तो डायरेक्टर सीधे देख के और वो अपना जजमेंट होता था उनका। इसके लिए हुआ ये था कि मैं यहाँ आई थी तो मैंने एक टेलीफिल्म की थी, उसका नाम था ढहती बुनियादें। तो ढहती बुनियादें मैंने आशा शर्मा, जो बुनियाद में चायजी का रोल कर रही थी, उनसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मैंने उनसे कहा कि आज मेरी फिल्म आएगी, आप देखिएगा। उन्होंने देखा, उनको लगा लड़की तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। तो वहाँ एक कैरेक्टर निकला बुनियाद में, तो उन्होंने रमेश जी को बोला कि एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस आई है, थिएटर की है, नई लड़की है, आप देख लीजिए। तो आशा जी ने मुझे वहाँ रिकमेंड किया, रमेश जी ने मुझे बुला लिया जहाँ शूटिंग हो रही थी फिल्म सिटी में। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे बात की, मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह देखे, बैकग्राउंड पूछा, थिएटर बैकग्राउंड था मेरा पूरा, फिर वो फिल्म थी टेलीफिल्म, तो उन्होंने बस देखा और मुझे वो स्क्रिप्ट वहीं थी ही, उन्होंने कहा ये ज़रा पढ़ दो, मैंने पढ़ दिया, बस उन्होंने मुझे ले लिया।
0: जी, तो आपका इसमें रोल क्या था, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: हाँ जी, मेरा रोल था फूलमती, एक नेगेटिव कैरेक्टर था।
0: बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं यश चोपड़ा साहब, उनका एक धारावाहिक आया था डॉक्टर साहब, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रही थी, तो इसके निर्देशक परीक्षित साहनी थे।
1: जी
0: हाँ। तो प्रभा जी, दूरदर्शन के लिए एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक आया था अधिकार।
1: हाँ जी।
0: तो जानू बरुआ साहब इसमें
1: डायरेक्टर
0: थे। तो इतने

0: महान डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका कैसे मिला आपको?
1: ये तो बस ऐसी सौभाग्य समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो गई थी वो उनसे प्रोड्यूसर से मिलने, वो मंजू सिंह थी ना,
0: मंजू सिंह थी,
1: तो मंजू सिंह जी से मिली। मुझे नहीं पता था कि इस एपिसोड को वो डायरेक्ट करने वाले हैं बरुआ जी, ये तो मुझे वहाँ जाके पता चला सेट पे कि वो जानू बरुआ जी। मैं तो जानू बरुआ जी को जानती भी नहीं थी तब तक, उतना वो नहीं था। तो उनके साथ मैंने एक चीज देखी, ये मैंने उनसे सीखा कि हम लोगों का उसमें जो रोल था वो था एक मजदूरों की लीडर का। तो उसमें क्या है, फिश का कोल्ड स्टोरेज का, कि वहाँ पे वो फिश में वहाँ काम करती हैं कोल्ड स्टोरेज में लेडीज, तो उनका जो शोषण होता है तो उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाती हूँ, वो होता है। तो मैं भी वही थी, और मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। अब उसमें तो मछलियाँ ही मछलियाँ क्योंकि वही था, मेरी हालत खराब, तो वो थी उसको साफ करने वाली, वो मजदूर हैं। तो वो टोकरे भर भर के चारों तरफ सफेद सफेद मछलियां ही मछलियां। अब मुझे आ रही थी घिन बहुत भयंकर, क्योंकि मैं तो कभी छुआ ही नहीं मैंने। अब मुझे उन्होंने कहा चलो करना है तो करना है। अब जब मैंने किया तो मैं ऐसे घिना घिना के छील रही उसको। ये तो मतलब मैं इस तरह से करके दिखाऊं, कैसे दिखाऊं कि जैसे कोई बहुत पढ़ी लिखी मतलब एजुकेटेड लेडी बहुत धीरे धीरे नाखून से उठाए, उंगलियों से उठाए, धीमे से रखे, लेकिन आप मजदूर हैं, आपका डेली का काम है वो है। तो आपका तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप इतनी नजाकत से उठाएंगी, इतनी नजाकत से रखेंगी।
0: सही है।
1: वो जब मैंने ऐसे किया तो जानू बरुआ मुझसे बोले कि आपने कभी मछली नहीं छुई है क्या? मैंने कहा नहीं छुई। बोले क्या बात कर रही है? मैंने कहा हाँ मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बोले यहाँ मछली साफ करने वाली मजदूर है ये, उसका जीवन मछलियों में है, वो दिखना चाहिए आपसे। मैं कहा आप क्या करूँ, मैं कहा वो कैसा होता है मुझे नहीं पता। तो बोले इतनी टोकरी रखी थी, इतनी मछलियाँ आपको साफ करनी है, और उन्होंने रियल मजदूर लेके आए, वहाँ थे रियल मजदूर जो शूटिंग पे नहीं थे, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठिए इनसे सीखिए। मैंने उनसे सीखा, जब तक उस परफेक्शन से मैंने मछली छीली नहीं तब तक शूटिंग रुकी रही।
0: बहुत बड़ी बात।
1: और मैं नाक मतलब मुझे ऐसे लगे मैं मर जाऊंगी उस बदबू से, तो मैंने कहा मैं नाक चढ़ रही, बोलने लगे आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आपका जीवन है वो, आप उन्हीं में रहती हैं, आपके चेहरे से नहीं लग रहा, क्या आप फैमिलियर हैं इनसे?
0: बिल्कुल।
1: ये थे जानू बरुआ। उन्होंने कहा आप ऐसा लगना चाहिए आपके जीवन है। क्या करती फिर मैं टोकरी ले, मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, जितना तुम ये करोगे उतना होगा। तो मैं टोकरी लेके खूब अच्छे से, वो खुद छिल छिल के दिखा रहे कि इसको ऐसे छिलो, इसकी मुंडी ऐसे तोड़ो, इसमें से ऐसे धागा निकालो,
0: क्या
1: इतने फास्ट चलना चाहिए हाथ,
0: क्या बात।
1: तो ये मैंने
0: वो प्रैक्टिस दिखनी चाहिए,
1: प्रैक्टिस दिखनी चाहिए, मतलब आप रियल लगना चाहिए। यही बात है मंदाकिनी जी, जो मैं कह रही थी ना आपसे कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और मैं चूंकि एपिसोडिक ज्यादा किए मैंने, इसलिए मुझे ये सौभाग्य मिल पाया। आप सोचिए कि एक तरफ रमेश सिप्पी, दूसरी तरफ गुलजार, तीसरी तरफ श्याम बेनेगल, जानू बरुआ,
0: बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर,
1: थिएटर में भी और फिल्म में
0: टॉप ग्रेड के कलाकार,
1: टॉप ग्रेड के, और आवाज में भी, डबिंग में भी, फिर यही लोग थे।
0: तो चलिए आपकी पसंद का कोई गीत सुन लेते हैं।
1: हाँ जरूर, दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आए।

0: डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि 1988 में धारावाहिक आया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक पर था, भारत एक खोज। तो इसके निर्देशक भी महान थे, श्याम बेनेगल साहब।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और इस धारावाहिक में आपका जो किरदार था वो प्रेमवदा का था।
1: प्रेमवदा,
0: किस तरह से आपने प्रेमवदा का ये कैरेक्टर जिया?
1: बस वही जैसे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर को जीना होता है उसको समझ के, उसके जीवन को फील करके। तो उनके साथ वो भी अगेन उतनी ही बारीकी से काम करने वाले थे कि वो मेन कैरेक्टर्स पे ही नहीं बैकग्राउंड पे भी वो उतना ही काम करते हैं। श्याम जी,
0: जी जी,
1: पर्दे को रियलिटी में कैसे आप जिए ये वो श्याम बाबू
0: सिखाते थे। आपने बहुत सारे धारावाहिक में प्रभा जी काम किया है, अगर हम यहाँ जिक्र करने बैठे तो शायद जो समय है वो पूरा हो जाएगा। हाँ। ब्योमकेश बख्शी थे उसमें आपने काम किया है, कई टेलीफिल्म्स में भी आपने काम किया है। इसके अलावा आपने शिव महापुराण की बात करें या आप बीती, कमांडर, सांच को आज, ऐसे बहुत सारे धारावाहिकों में आपने काम किया है, तारा है या एयर होस्टेस है, तो उस समय जो कहानी में गहराई होती थी, एक सामाजिक संदेश था, आज थोड़ा सा कम होता है, एपिसोड बहुत लंबे हो गए हैं।
1: हाँ, वो तो पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि आजकल कमर्शियल ही रह गया है प्रोग्राम बनाना। आजकल मतलब वो गहराई को छूना उनका उद्देश्य भी नहीं रह गया है। तो पहले जो होता था वो लोगों के दिलों में उतरना होता था।
0: जी,
1: अभी क्या है कि खींचना है उनको ज्यादा से ज्यादा।
0: आपने फिल्म अकेला में
1: और अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिला, उसमें वो रोल था नर्स का जिसको वो फ्लर्ट करते हैं, तो फिल्म की लंबाई बढ़ गई थी तो उसकी वजह से वो रोल पूरा काट दिया गया मेरा।
0: तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और क्या आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं? बहुत सारे सीरियल्स में बहुत सारे कैरेक्टर को आपने अपनी आवाज भी दी है, जैसे कि स्मिता पाटिल हैं, मीनाक्षी शेषाद्री हैं, किमी काटकर हैं, रमैया, मुनमुन सेन और बहुत सारी अभिनेत्रियों के अलावा आपने जैसे जेम्स बॉन्ड जो फिल्म थी उसमें भी आपकी अपनी आवाज है।
1: 007 जेम्स बॉन्ड गोल्डन आई नाम था उस फिल्म का,
0: उसमें आपने अपनी आवाज दी। और धारावाहिक जो है ओम नमः शिवाय, मैं दिल्ली हूँ, रामायण और महाभारत में भी आपकी आवाज
1: सुनी है। जी जी जी, मेरी आवाज है
0: जी।
1: और उस समय तो लगभग हर सीरियल की हीरोइन मैं ही कर रही थी और फिल्म्स भी मैंने करीब 1000 के ऊपर फिल्म्स में अपनी आवाज दी है।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: जी,
1: और उनमें से मैक्सिमम हीरोइंस के लिए मेरी आवाज मैंने दी है। तो जैसे आपने अभी बताया मीनाक्षी शेषाद्री, स्मिता पाटिल इनकी, और मतलब वो वाकई बहुत बड़ी विधा है, इसको डबिंग कहते हैं। अब तो लोग जानने लगे हैं डबिंग के बारे में, उस वक्त लोग नहीं जानते थे। डबिंग क्या है? एक्टिंग है विद लिमिटेशन।
0: तो स्मिता पाटिल

0: नहीं, आपको आवाज क्यों देनी पड़ी?
1: स्मिता जी की डेथ हो गई थी, तो कुछ फिल्में थीं जो तैयार थीं और स्मिता जी नहीं रहीं, तो उनकी आवाज़ को मैच करती हुई कोई आवाज़ चाहिए थी। तो ये मेरी थी पेट पाप और प्यार। इसमें अगर आप देखेंगी ना, मैं गारंटी देती हूँ आपने, मैं खुद नहीं पहचान पाती उस फिल्म को। मैं देखती हूँ, सोचती हूँ ये वाकई मेरी आवाज़ है या स्मिता पाटिल की है।
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं?
1: देखिए, मैंने जब तक एक्टिंग की उसके बाद में मैंने अपना पूरा फोकस वॉइसिंग पे शिफ्ट कर दिया। वॉइसिंग का मतलब है आवाज़ की हर विधा।
0: अच्छा,
1: उसमें कार्टून भी आते हैं, कार्टून नेटवर्क है, उसमें फिल्में भी आती हैं, डबिंग आती हैं, डिस्कवरी है, PBC है, इसकी वॉइस ओवर है, विज्ञापन है, फिल्म्स हैं, ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, करती आ रही हूँ पिछले 20 साल से कम से
0: जी
1: कम।
0: जी
1: तो सिर्फ आवाज़ कर रही हूँ और यही सारा काम मैं कर रही हूँ।
0: कार्टून फिल्म का कोई एक डायलॉग याद है अगर आपको?
1: ऐसे एकदम पर्टिकुलर तो नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कार्टून में कैसे तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं,
0: जी
1: बनाते हैं,
0: जी
1: सब आर्टिफिशियल आवाज़ें बनानी होती,
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: कि क्या, कहाँ से आ रहा है तो, और कैसे छोड़ दूंगा
0: हाँ बात
1: ऐसे
0: को
1: आवाज
0: जी।
1: बना
0: चलिए गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: तुझे जीवन की डोर से बांध
0: बांध दिया है।

0: प्रभा जी, आज आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया और इतना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के विविध भारती के स्टूडियो में आप आई, आपने अपनी अभिनय यात्रा हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रभा शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तकनीकी सहायक समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: आज के मेहमान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। तमिलगा वित्री कजगम टीवी के प्रमुख श्री विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया है। विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को बहुमत के 118 आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 सीट की आवश्यकता है। अब श्री विजय को सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना होगा। वहीं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम AIADMK के निर्वाचित विधायकों के एक वर्ग ने पार्टी नेतृत्व से टीवीके को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया है। संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी श्री विजय की टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक समर्थन देगी। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा करने की बात कही है। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने आज गुवाहाटी में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
4: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। उन्होंने कहा कि औषधि प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापन के बाद वियतनाम में भारत की दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की UPI और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। जापान की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओनोडा किमी ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू LPG वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी LPG वितरक के यहाँ

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में और आपके साथ आज मैं हूं नर्मदा शर्मा। तो युवा मंच कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं एक गीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: इंस्पिरेशन बिल्ट इनटू एवरी अराइवल। दिस मे ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार एंड अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज।
3: मीट द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, द एसयूवी दैट्स बिग ऑन स्टाइल एंड स्मार्ट ऑन वैल्यू। विद इट्स बोल्ड डिजाइन एंड स्पेशियस कंफर्ट, इट्स बिल्ट टू इंप्रेस एवरी सिंगल डे।
2: एंड नाउ इट्स योर्स एट एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ जस्ट ₹6.70 lakh।
3: यस, ₹6.70 lakh, वैलिड टिल 31st May। डोंट मिस आउट, विजिट योर नियरेस्ट नेक्सा शोरूम एंड ब्रिंग होम योर फ्रॉन्क्स टुडे।
2: हरी ऑफर्स फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली। टीएनसी अप्लाई।
4: नेक्सा,
3: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakh.
3: Yes, ₹9.72 lakh. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
3: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: तो युवा साथियों, स्वागत है आपका युवा मंच कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। आज हम बात करेंगे युवा मंच कार्यक्रम में युवाओं के लिए लक्ष्य निर्धारण का महत्व। युवाओं के लिए लक्ष्य निर्धारण व्यक्तिगत विकास, करियर में सफलता, आत्मविश्वास बढ़ाने और दिशा खोजने के लिए अत्यंत आवश्यक है। विशिष्ट मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य या प्रासंगिक समयबद्ध ढांचे का उपयोग करके और उन्हें लिखकर युवा अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ये कार्य नैतिकता, अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करता है, जिससे शैक्षिक और पेशेवर सफलता मिलती है। तो ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं गीत।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। अभी एक सूचना। पशुधन फार्म परिसर से मिली जानकारी के अनुसार जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 मई 2026 वीरवार यानी कल सुबह 11 बजे पशुधन फार्म परिसर डॉक्टर जी सी नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की पशुधन फार्म परिसर में गाभिन बछड़ियों को खुली बोली के माध्यम से बेचा जाएगा। सभी इच्छुक किसानों और पशुपालकों से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया में भाग लेकर मौके का लाभ उठाएं। नीलाम किए जाने वाली गायों में है जर्सी और साहिवाल किस्म के पशु। सूचना समाप्त हुई और अब कुछ और संदेश।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
2: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
2: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
2: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
3: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
4: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
3: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
4: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
0: तो युवा साथियों, युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं युवाओं के लिए लक्ष्य निर्धारण का महत्व। तो महत्व में हमने बात की कि स्मार्ट यानी एस फॉर स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो, एम मेजरेबल मापने योग्य यानी प्रगति को मापा जा सके, ए फॉर अचीवेबल प्रासंगिक प्राप्त करने योग्य, लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए, रेलेवेंट प्रासंगिक जीवन के दीर्घकालिक उद्देश्यों से जुड़ा होना चाहिए, और स्मार्ट में टी फॉर टाइम बाउंड समयबद्धता, समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। अपने लक्ष्यों को लिखकर ऐसी जगह रखें जहां वे रोज दिखें। छोटे छोटे लक्ष्य यानी शॉर्ट टर्म गोल्स निर्धारित करें जो बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएं। मेंटर या मार्गदर्शन से युवाओं को बेहतर लक्ष्य निर्धारित करने और उन पर टिके रहने में मदद मिलती है। लक्ष्य निर्धारण न केवल करियर बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी आकार देता है, जिससे युवा अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके। तो एक बार फिर से लेते हैं ब्रेक, सुनते हैं गीत।

0: where Storm Hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
1: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
4: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
5: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
3: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
4: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
5: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।
6: तो युवा साथियों, इसके साथ ही आज का युवा मंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित बरेली किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओ, अब से कुछ ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। मौजा कराइदिया कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर और किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहता है शाम 7:10।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुना करते हैं रात्रि 8 बजे। रात्रि 10:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। चर्चा का विषय है कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को ज्ञान, कौशल और नवाचार के साथ आगे बढ़ाने पर बल दिया है। राज्यपाल ने आज हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि दंत स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी है। कविंद्र गुप्ता ने विद्यार्थियों से अपने पेशे में उत्कृष्टता के साथ साथ सेवा, संवेदनशीलता और नैतिकता को भी जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस दौरान राज्यपाल ने महाविद्यालय की आधुनिक नई डेंटल वैन सेवा का शुभारंभ भी किया। प्रदेश के चार नगर निगमों धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन सहित 47 शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन था। सोलन नगर निगम सहित जिले की दो नगर परिषदों परवाणु व नालागढ़ और नगर पंचायतों अर्की व कंडाघाट में आज 34 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन वापस लिए। सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि अब इन चुनावों में कुल 121 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। उधर मंडी नगर निगम के बहना वार्ड में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय सहित सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। इसके साथ ही इस वार्ड में चुनाव प्रक्रिया फिलहाल टल गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: मंडी नगर निगम चुनावों के बीच एक चौंकाने वाला और अभूतपूर्व घटनाक्रम सामने आया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 14 बहना में चुनावी गतिविधियां उस समय पूरी तरह रुक गई जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय सहित सभी प्रत्याशियों ने दोपहर 3 बजे की अंतिम समय सीमा तक अपने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। इसके साथ ही इस वार्ड में चुनाव प्रक्रिया फिलहाल टल गई है। यह निर्णय पिछले 2 दिनों से बन रहे जनदबाव का परिणाम है। बहना क्षेत्र के ग्रामीण लगातार बैठकें कर रहे थे और सभी प्रत्याशियों से चुनाव मैदान से हटने की अपील कर रहे थे। अंततः जनता की एकजुटता के आगे सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पीछे हटना पड़ा। इस सामूहिक निर्णय के पीछे मुख्य कारण बहना के लोगों की पुरानी मांग है, जिसमें वे अपने क्षेत्र को नगर निगम की सीमा से बाहर निकालने का दबाव बना रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम में शामिल किए जाने के बाद उन पर करों का बोझ तो बढ़ा है, लेकिन उसके अनुरूप उन्हें शहरी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में हो रही बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि बारिश व ओलावृष्टि से सेब की फसल को ही शुरुआती आकलन के मुताबिक 40% नुकसान हो चुका है। रोहित ठाकुर ने कहा कि मौसम में आए इस बदलाव से सेब ही नहीं बल्कि अन्य फलों व फसलों को भी नुकसान हुआ है।
2: वर्षा हो रही है, काफी अनसीजनल रेनफॉल हुई है और निश्चित रूप का इसका नुकसान हमारी कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफी हुई है। चाहे हम ओलावृष्टि की बात करें, इस वर्ष ओवरऑल रिपोर्ट आ रही है वो मात्र कुछ हाई क्षेत्र में संतोषजनक क्रॉप है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ये ओलावृष्टि के जर आ रही है, इसका काफी नुकसान कृषि और बागवानी क्षेत्र का हो रहा है। अन्य जो हमारी फसलें होती है उसकी भी क्षति हो रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनाव को लेकर आज शिमला में एक बैठक आयोजित की। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर चुनावी हार के बाद ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की राजनीति

0: और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति की कमी की कोई खबर नहीं मिली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में बताया कि पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार खाना पकाने के लिए घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को 100% और व्यावसायिक सिलेंडर उपभोक्ताओं को 70% तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कन्यादान से। अगला गीत सुनने से पहले कुछ संदेश सुनते हैं।
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
5: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
6: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 62,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई। अप्रैल धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.76 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
5: तो इंतजार कैसा? 10 अप्रैल ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। TNC अप्लाई।
0: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

लव इन टोक्यो। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां सुना करते सारे ही किसान बागबान भाई भैन जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथी अज टैले पर मैं दसो कि पंच तो पंच जी राम राम
1: राम राम बड़का चाचू जी कने कार्यक्रम सुना करते सारे ही स्रोतिया जो भी पंच की तरफा ते राम राम।
0: बिल्कुल कने किसान साथी अहां दोनों टैले पर आई पुजे और ढेरों सारी जी जानकारी कहने भी अहां अपने किसान भाई कने साझा करनी न
1: जी
0: और जानकारी कने कने प्यारे प्यारे कने मिठे मिठे लोग गीत भी उन्हें तक अहां पहुंचाने न।
1: हाँ जी
0: तो दिखा पान साहब की असा तो जो किसान साथी के भी तरह तरह की खेतीबाड़ी के भी करता है
1: जी जी
0: इस जियाँ कि अनाज वाली फसलां लगांदा सब्जियां भी लगांदा और उसके कने कने कई तरह के जड़े व्यवसाय जो के भी करता है चाहे से व्यवसाय छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर होना।
1: हाँ जी
0: तो देखा कि आज अहां गलबात करनी है चेरी और पलम की खेतीबाड़ी के संबंध में। ये भी असा दे किसान भाई दे फायदे की गल है। चेरी एक नाजुक और आकर्षक जड़ा फल है कने इसकी खेती ताई ठंडी सर्दी और हल्की गर्मी उपयुक्त के भी रहती है
1: जी।
0: चेरी दे पेड़ा जो अच्छा जड़ा धूप और जल निकासी वाला भूमि की जड़ी जरूरत के भी होंगी है कने हिमाचल प्रदेश च शिमला कुल्लू और किन्नौर इन क्षेत्रों च चेरी की खेती विशेष रूप दे के भी लोकप्रिय है
1: जी।
0: चेरी की खेती ताई दो प्रमुख किस्म होंदिया हन जिवें कि मिठी चेरी और खट्टी चेरी। तो मिठी चेरी का जड़ा उपयोग सीधे खाने च किता जांदा कने खट्टी चेरी का जड़ा उपयोग के भी जैम जूस और जड़े होर उत्पाद होंगे न उस च के भी किते जांदा है।
1: जी जी बिल्कुल और ये साड़ा जानकारी जड़ी है चेरी और पलम दी सीधे साड़े बागवानी जेड़े बागवान उन्हें कन्नै जुड़ी और चेरी दे पौधे जेड़े से आम तौर पर कलम ग्राफ्टिंग विधि कन्नै जेड़े से तैयार किए जाते हैं और पौधे दे विच जेड़े उचित दूरी जेड़ी से रखना बड़ी जरूरी होंगी ताकि अच्छी तरह दे विकसित जेड़े से पौधे बढ़वार ले सकन है ना।
0: जी जी जी
1: कन्नै कन्नै ही सिंचाई का भी विशेष ध्यान जेड़ा से रखना होंदा जियां कि
0: बिल्कुल जियां कि खास करे फुला आने पर और फल बनने के समय
1: जी
0: इसके अलावा कीट और रोग के बचाव ताई समय समय पर उचित दवाइयां का छिड़काव करना के भी जरूरी है कने चेरी की फसल आमतौर पर मई दे जून दे विच के भी तैयार होंदी है। इस समय बाजारा च इसकी अच्छी मांग है और किसानों जो उचित जड़ा मुल्य के भी मिलता है
1: जी।
0: कने पलम की गल की जाए तो पलम इस जो असा
1: आलू
0: बुखारा भी
1: बोलते
0: हैं
1: जी जी जी
0: ये एक रसदार और मिठा के भी फल है। पलम के पेड़ चेरी की तुलना च ज़्यादा जड़े सहनशील होंगे और विभिन्न प्रकार की मिट्टी च उगी सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इस ताई सारे दे उपयुक्त के भी मनी जाती है।
1: हाँ जी
0: पलम की कई किस्म होंदियां जियाँ कि सांता रोजा काला आलू बुखारा और रेड ब्यूटी ये किस्म स्वाद रंग और आकार के भी अलग होंदियां हैं। पलम का उपयोग ताज़ा फल के रूप च के भी सूखे फल जैम और जेली बनाने च के भी किया जाता है
1: जी। इस दे कन्नै पलम की खेती ताई जेड़े से पौधे दे पौधे की दूरी जेड़ी से उचित रखना पौंदी है और समय समय पर इसकी कंडाई छंटाई जेड़ी से की जाती है जिसते पौधा जेड़ा सा पलम दा स्वस्थ और इसका जेड़ा सा उत्पादन अच्छा मिलता है सांजो।
0: बिल्कुल
1: और कन्ने सिंचाई खाद उर्वरक दा सही प्रबंधन करना भी इस विच जरूरी होंदा है ना।
0: बिल्कुल
1: पलम दी फसल जून ते जुलाई दे विच जेड़ी से तैयार की जाती और ये फल बाजारां च अच्छी कीमत जेड़ा सा कीमतों विच जेड़े से बिकता है ना।
0: बिल्कुल
1: इसकी मांग भी ज़्यादा रहती और इसकी खेती जेड़ी से लागत घट होंगी और लाभ जेड़ा से इस विच साड़े बागवान भाई जो ज़्यादा मिलता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल तो किसान साथी ये देखा कि असा दे किसान साथी कहन भी हाँ पहले बोला करते कि अपनी खेती बाड़ी के कम करना है और भी जड़ी मतलब छोटे छोटे उत्पाद होने या फिर बड़े उत्पाद होने उन्होंने जो भी करते हैं ताकि उन्होंने एक अतिरिक्त आमदनी का जरा जरिया के भी मिल सके।
1: बिल्कुल
0: तो गल बात असा दी अगे भी जा रहे हैं पर गुणा शामिल करना एक प्यारा दिया लोक गीत तो सुनते ने लोक गीत
1: जी।

0: जी तो किसान साथी हाँ ये प्यारा दिया लोक गीत सुने कने आशा करनी कि संझा दी बेला तुझे पसंद भी आया होना और इसके बाद हाँ जी गल करनी एक सूचना के बारे है ना जी।
1: बिल्कुल ता किसान साथियों डॉक्टर जीसी नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर दे मिली सूचना के अनुसार जन सधारण जो सूचित किया जाता है कि 7 मई यानी कि कल 2026 प्यागा 11 बजे पशुधन फार्म परिसर च डॉक्टर जीसी नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की पशुधन फार्म परिसर च जिहड़ी गाभिन बछड़िया नूं उन्हां दी बोली दे माध्यम के भी उन्हां जो बेचा जाना है
0: जी।
1: करे जिहड़े इच्छुक किसान या पशु पालक हन अगर से इन्हां बछड़ी जो लेना चाहते हैं तां से इस प्रक्रिया च किन भी भाग ले सकते हैं और ये सिर्फ कल यानी कि 7 मई जो प्यागा 11 बजे है ना
0: जी। जी बिल्कुल और इस विच जिहड़े गाय दी जिहड़ी नस्लां जिवें कि जर्सी होई क्रॉस और साहीवाल किस्म जी दो किस्म जी उतू मिलनी है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो जरूर हाँ आशा करनी कि तुम इस विच हिस्सा जिहड़ा से लेना है और इस दे कन्ने कन्ने दिखा हुण साड़ी जिहड़ी गेहूं दी फसल है सह भी अहां आस्ते आस्ते बटोली ली और कई जगह जिहड़े से साड़े खेत जिहड़े से खाली होई गए है ना
1: जी जी जी जी
0: और कई किसान साथी जिहड़े से आने वाली फसल दी तैयारियां भी करा करदे जिस विच धान है मक्का है और मक्के दे संबंधित होर चारा है जियां कि हुण आने वाले समय च संज जिहड़ा से दूजी फसल दे लगाने दे पहले पहले अहां जिहड़े से कुछ एक चारा दी फसलां भी जिहड़ी से एक दो महीने जिहड़े से तैयार करके अपने पशुओं वास्ते हरा चारा उपलब्ध करवाई दिंदे ने ना
1: जी जी।
0: तो इस विच मक्का चारा भी अहां दे किसान भाई जिहड़े से इन्हां दिनां च अपने खेतरां च लगाई सकदे और इस वास्ते अहां जो मक्के चारे दा उगाने वास्ते जिहड़ा से इस विच अधिक उपज लेने वास्ते अहां जो अच्छी किस्म दा जिहड़ा से चुनाव करना है और मक्का साइलेज बनाने वास्ते बड़ा ही उत्तम फसल है और इस विच सिंचाई वाले क्षेत्र च मानसून दे पहले जिहड़े से मई और जून च इसकी बिजाई जिहड़ी से अहां करी सकदे यानी कि 15 मई के बाद जिहड़ी से इसकी बिजाई अहां लगभग लगभग करी सकदे ने
1: जी जी।
0: और इसते क्या होना कि एक तो अहां जो समय रहिंदे गर्मियों च हरा चारा उपलब्ध हो जाना और कन्ने कन्ने अहां दी जिहड़ी मक्का चारा दी अफ्रीकन टॉल किस्म दी बिजाई जिहड़ी है इसकी बीज की मात्रा जी से 50 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर के हिसाब ने अह रखी करी इसकी बिजाई जी से करी सकते है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इसके दो फायदे होने एक तो समझो जोड़े से साड़ी जेड़े खेत ने तिना का पूरा पूरा उपयोग हो जाना साढ़े जेड़े खेतर खाली होने तिना का पूरा उपयोग करना और कन्ने कन्ने अह जो गर्मियों के मौसम च हरे चारे की जी कमी होनी सह भी पूरी हो जानी है साढ़े पशुओं वास्ते है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल ता किसान साथियों फिर यहाँ चलना एक प्यारे दे लोकगीत की तरफ ता सुनते ने लोकगीत।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: जी तो हाँ कुछ एक संदेश सुने और इसते पहले लोक गीत सुने है ना जी
4: बिल्कुल
3: तो हूँ हाँ फिर तो जरा सा जानकारी की तरफ चलते बड़का चाचू जी और साढ़े जेडे किसान भाई ने अजकल खेत्र जेडे से लगभग खाली हुआ करते और अगली जी फसल है इसकी तैयारी जी से करा करते और सब तो पहले गल करिए धान की तो धान में जी चावल की खेती वास्ते जोड़े से दोमट मिट्टी जी से उपयुक्त मनी गई है साढ़े जेडे चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के जोड़े वैज्ञानिक न साहब बोला करते कि साढ़े धान की फसल लगाने वास्ते जोड़े से 20 मई तो लेके जोड़ा सा इसका 7 जून तक और जोड़ा 15 मई तो 30 मई तक जोड़ा सा हाँ लंबी और बोनी और बासमती किस्मा दी जड़ी से नर्सरी क्रमशः लगाई सकते हैं यानी कि बोलने का मतलब है कि लंबी और बोनी जड़ी किस्म से हाँ 20 मई तो इसकी नर्सरी जड़ी से तैयार कर सकते और जड़ी बासमती किस्म दी है इसकी नर्सरी जड़ी से हाँ 15 मई तो 30 मई तक जड़े से लगाई सकते यानी कि जलू हाँ पौधा रोपण करना तो इसते 4 हफ्ते पहले जड़ी से नर्सरी की तैयारी जड़ी से हाँ जो करी लेना चाहिए है ना
4: जी जी
3: और बोने ते पहले जड़े से बीज जो हाँ बेविस्टिन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज कन्ने जड़े से उपचारित करना जरूरी है क्योंकि आने वाली फसल अगर स्वस्थ होंगी ता ही सांझो जड़े से अच्छा उत्पादन दिखने में मिलता है ना
4: जी जी
3: रुपाई विधि वास्ते जड़े से 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता जड़ी से होंगी और धान की उन्नत किस्म जी कि RP 2421 सुकरा धान 1 HPR 1068 कस्तूरी बासमती HPR 2612 पालम बासमती है और HPR 2143 ये कुछ एक सुधरी है किस्म जिन्हें जो जेड़ा से साड़ा किसान भाई अपने खेतर च लगाई करी एक अच्छा उत्पादन जेड़ा से ले सकता है ना जी
4: बिल्कुल कने कुछ एक गलबात हाँ मक्का दे भी करनी है तो देखा कि मक्का दी जेड़ी बिजाई है 15 मई दे जून दे जेड़ा पहला सप्ताह है 20 मई दे 15 जून तक जेडे ऊंची कने मध्य पहाड़ी दे बिच हाँ मतलब करनी है तो बीज का जेड़ा दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर 800 ग्राम कनाल के भी रखें कने बिजाई छिड़कावा की जी बिजाई लाइन च करना चाहिए कने मक्का की फसल च कतार दे कतार 60 सेंटीमीटर कने पौधे दे पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर के भी रखनी है
3: यानी कि साड़ी बिजाई दे जड़ी है केरा विधि कने हाँ बिजाई जड़ी से करनी जिससे कि साड़ा बीज जड़े से घट लगता और अच्छा उत्पादन होता है ना
4: बिल्कुल बिल्कुल कने बीज की जी गहराई है 3.5 सेंटीमीटर के भी रखनी है
3: जी
4: कने मक्का चारा ता मक्का जो चारा ताही भी उगाई जा सकता है क्योंकि इस दे ज्यादा उपज और अच्छी किस्म का चारा के भी यहाँ जो मिलता है
3: जी
4: मक्का साइलेज बनाने ताही भी बड़ा बांका का बांकी फसल है कने सिंचाई वाले क्षेत्र च मानसून दे पहले मई जून च बिजाई के भी करना चाहिए कने फसल के भी यहाँ ले सकते हैं ताकि गर्मी च हरा चारा के भी उपलब्ध हो सके मक्का चारा दी जड़ी अफ्रीकन टॉल किस्म दी बिजाई ताई बीज दी मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के भी रखनी है।
3: जी तो यह तो थी जानकारी साढ़े अगले आने वाली फसलों की तैयारियों के बारे चुनो। हाँ फ्री तो चलना लोक जनकार की तरफ और सुननी एक और प्यारे दे लोक गीत
4: जी।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशकम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं। श्री विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसीलिए उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवीके प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमा वलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है इस पार्टी के 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हाउंग ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। नई दिल्ली में आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
3: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक समर्पित कार्यबल का गठन किया है। सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम किसान बाणी सुनने वाले सारे ही श्रोतें जो पंच दी तरफा ते राम राम कन्ने अज टैले पर मेरा साथ दे करदे ने बड़का चाचू जी तुहानू भी राम राम
1: राम राम पंच जी राम राम और जितने भी किसान बागबान भाई बहन कार्यक्रम जो सुना करदे ने उन्हां सारे जो ही बड़का चाचू तरफा ते राम राम
0: जी
1: कन्ने किसान साथी अहां फिर एक बारी दोनों टैले पर आई पुजन ता तुहां कन्ने जिहड़ी अहां जानकारी सांझा करनी से है मधुमक्खी पालन दे बारे च
0: जी।
1: ता मधुमक्खी पालन के भी एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित व्यवसाय है। ये ना सिर्फ शहद उत्पादन ताई प्रसिद्ध है बल्कि कृषि पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास च भी इसकी महत्वपूर्ण जी भूमिका के भी रहती है
0: जी।
1: कने भारत के भी एक कृषि प्रधान देश है कने मधुमक्खी पालन किसानों की आय बढ़ाने का एक सशक्त साधन के भी बनता जा रहा है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट होंदिया हैं जिहड़ी कि समूह च रहिंदियां हैं और अपने छत्ते का निर्माण करदियां हैं। मधुमक्खियां तीन प्रकार की होंदिया हैं रानी मधुमक्खी नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का जिहड़ा मुख्य आकार है अंडे देना हुंदा है। नर मधुमक्खियां का प्रजनन च सहायक होंदिया हैं जबकि श्रमिक मधुमक्खियां भोजन एकत्रित करदियां हैं कने छत्ते की रक्षा और जो काम काज कर भी कर दियां ने।
0: जी तो मधुमक्खियों का पालन का मुख्य उद्देश्य जिहड़ा सै साढ़े वाले शहद और मोम का उत्पादन करना हुंदा और शहद एक प्राकृतिक और पौष्टिक खाद्य पदार्थ है जिस च हाँ अनेक औषधीय गुण जिहड़े सै हाँ जो मिलते हैं और ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो जिहड़ा सै बढ़ाता है ना जी।
1: जी जी
0: कन्ने ही पाचन क्रिया जो सुधारता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दे अलावा मधुमक्खियों के प्राप्त मोम का उपयोग भी जिहड़ा सै मोमबत्तियां सौंदर्य प्रसाधन और औषधि बनाने वास्ते जिहड़ा सै मोम का उपयोग किते जांदा है ना जी।
1: जी जी कने मधुमक्खियां पालन सारे दे बड़ा लाभ ये है कि ये घट लागत च शुरू कर सकते हैं और इस दे अच्छा मुनाफा कन भी यहाँ कमाई सकते हैं।
0: जी
1: किसानों ताई ये एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनी सकता है। इस ताई ज्यादा जमीन की जरूरत के भी नहीं पौंदी है और इस जो खेतर च बगीचे च या घर के अखे बखे कर सकते हैं।
0: हाँ जी
1: इस दे कन्ने ही मधुमक्खियां परागण की प्रक्रिया च महत्वपूर्ण भूमिका कैन भी निभांदियां हन जिस दे फसलों की उपज च वृद्धि हुंदी है कने इस तरह मधुमक्खी पालन अप्रत्यक्ष रूप दे कृषि उत्पादन जो के भी बढ़ाता है।
0: जी
1: मधुमक्खी पालन शुरू करने ताई कुछ जरूरी चीज़ों की जरूरत हुंदी है जियां मधुमक्खी बक्से सुरक्षा उपकरण मधुमक्खियां और प्रशिक्षण। सारे दे पहले उपयुक्त स्थानों का चयन के भी करना जरूरी है जित्थों मते सारे फुल उपलब्ध हो। इस दे बाद मधुमक्खियां जो बक्से च स्थापित किया जाता है और उन्हां दी नियमित देखभाल की जाती है। मधुमक्खियां जो ज़्यादा गर्मी ठंड और बारिश से बचाना के भी जरूरी है।
0: जी
1: तो किसान साथी हुई थी मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी कने इस दिखा कि सारे दे जड़ी बड़ी विशेष गल है कि हाँ अगर प्रशिक्षण ले कर अगर इस काम जो कर दें तो साढ़े ताई ये काम के भी आसान रहता है ना।
0: जी जी और साढ़े जिहड़े बागवान भाई ने और साढ़े जिहड़े कृषि कृषक ने जिहड़े कि खेतीबाड़ी करते उन्हां वास्ते जिहड़ा सै इक वरदान सिद्ध हुंदा अगर असें अपने खेतरां च अपने बगीचियां च मधुमक्खी दे छत्ते जिहड़े सै मधुमक्खियां पालदे न। इसते क्या हुंदा कि परागण दे माध्यम कन्नै साढ़े जिहड़े जियां कि तुहां बड़का चाचू पहले बोलिया कि परागण दे माध्यम कन्नै साढ़े जिहड़े मधुमक्खियां सै परागण साढ़े फुल्लां च करदियां ते इसते कि उत्पादन जिहड़ा सै कई गुणा बधी जांदा है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अगर ये मधुमक्खियां और मक्खियां नहीं होन तो इसते क्या होंगे कि साढ़े जिहड़े परागण नहीं होने और साढ़ा उत्पादन फलों का सब्जियों का साढ़े जिहड़े फसलों ने तिन्हां दा नहीं हो ही पाना है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल मतलब पौधे की जिहड़ी कई प्रजातियां कहन भी समाप्त हो सकती हैं।
0: जी जी जी
1: कने ये खाद्य श्रृंखला पर भी इसका जो गंभीर प्रभाव के भी पे सकता कने इस वास्ते मधुमक्खी का संरक्षण के भी बड़ा
0: जरूरी बनी जाता। बिल्कुल और ये तो थी जानकारी मधुमक्खी पालन के बारे च और हाँ जो जिहड़ा सै मधुमक्खी पालन जिहड़ा सै जरूर अपने खेतरां च अपने बगीचियां च जिहड़े सै करना चाहिए जिससे कि साड़ा दोहरा जिहड़ा सै लाभ सांझो मिलना है ना।
1: बिल्कुल तो गल्लां बातां अगे भी जा रहे हैं तो हुण हां शामिल करना एक प्यारा दे लोक गीत तो सुनते ने लोक गीत
0: जी।

0: किसान साथी आशा करने कि यह प्यारा दे लोकगीत पसंद आया होना
1: जी।
0: और इस लोकगीत के बाद उन्हें चलना अगली जानकारी की तरफ, तो सुनते ने जानकारी।
1: पशुओं से कियाँ हाँ जरा उत्पादन हाँ ज़्यादा लैना कने तिना की क्षमता जी अहाँ कि बढ़ाई सकते हैं। डॉक्टर साहब मधु सुमन संभियाल जे अज के अहाँ टियाले पर खास प्रौहने हैं, तो डॉक्टर साहब जी तो टियाले पर स्वागत है जी।
2: धन्यवाद जी।
1: तो डॉक्टर जी सबसे पहला जा ये दसा कि संतुलित पशु आहार जरा स क्या चीज़ है कने इसते पशु जो उत्पादन बढ़ाने जे कई जरूरी है।
2: संतुलित पशु आहार पशु के उत्पादन बढ़ोतरी और प्रजनन क्षमता के लिए काफ़ी आवश्यक है। संतुलित आहार का मतलब है कि उसमें ऊर्जा के स्रोत जैसे कि चारा और अनाज और प्रोटीन के स्रोत जैसे खलें, विटामिन और खनिज तत्व अगर सही मात्रा में मिले तभी पशु का उत्पादन सही रहता है। अगर आहार असंतुलित है तो पशु की बढ़ोतरी भी कम होगी और दूध की मात्रा भी उसकी कम होगी।
1: तो जियां कि अहां गल करिए जी तो दसिया कि संतुलित आहार अरे अहां दे दुधारू पशु हैं प्रति किलो क्या दूध दे हिसाब से हिसाब करना जरूरी होंगे या हर कुसी पशु एक बराबर ही देना पौंदा?
2: नहीं, सभी पशुओं का दूध के हिसाब से उम्र के हिसाब से ये विभिन्न विभिन्न होता है।
1: हाँ जी।
2: तो जैसे कि अगर 2.5 किलो दूध के करीब अगर कोई पशु दे रहा है तो उसको 1 किलो दाना मिश्रण देना आवश्यक है और 10 से 15 किलो के करीब हरा चारा दें उसको।
1: हाँ
2: और साथ में खनिज तत्व देना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा।
2: पशु को तभी उसकी उत्पादन क्षमता को हम बना सकते हैं, नहीं तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी।
1: जी गल करते हैं जी कि अक्सर हाँ दे पशु पालक भाइया पशु पाले हुए कने गल करते हैं दूध दुधारू पशु जड़े हैं जिया कि कई जो दूध पतला हों कई गाय में दूध जो गाढ़ा हों जिया कि गल करिए फैट जिसकी बसा बोलते हैं एक कितनी दी मात्रा जड़ी से होना चाहिए है अगर दूध पतला तो इसको गाढ़ा हाँ जड़ा से किया बनाई सकते हैं क्या खिलाना पिलाना चाहिए पशु वे?
2: दूध में जो फैट होता है वो हर नस्ल का विभिन्न विभिन्न होता है।
1: हाँ
2: अगर हम जैसे बात करें होस्टेन फ्रीजियन जो गाय का दूध होगा उसमें फैट जर्सी के अगर तुलना में कम होता है, पर हम आहार संबंधी भी हम कुछ उसमें बदलाव ला सकते हैं जिससे कि उसमें फैट बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो दाना मिश्रण की मात्रा अगर पशु के आहार में बढ़ाएं और साथ में हम लोग बाईपास फैट किसान भाई बहन उसको बाईपास फैट खिला सकते हैं 100 से 150 ग्राम की मात्रा में।
1: हाँ
2: उससे भी दूध में फैट बढ़ाया जा सकता है। अगर बाईपास फैट नहीं लेना है तो वनस्पति तेल जो घर में उपलब्ध होता है
1: हाँ जी
2: वो भी पशु के जो दाना मिश्रण में 100 से 150 ml के करीब आप अगर उसको मिश्रित करें 100 से 150 ml के करीब ही उसको मिलाना है। अगर ज्यादा मिलाएंगे तो जो उसके र्यूमन बड़ा जो उसका पेट होता है उसके जीवाणुओं के लिए वो ठीक नहीं रहता है। तो 100 से 150 ml के करीब आप वनस्पति तेल लें उसको दाना मिश्रण में मिला के पशु को दे तो उससे भी फैट को बढ़ावा दे सकते हैं। और साथ में हरा चारे की मात्रा जो पशुओं को एटलीस्ट 20 से 25 किलो के करीब हरा चारा अवश्य दें।
1: हाँ
2: और एक है कि पशुओं का जो दूध दुहने का अंतराल होता है वो 12 घंटे के करीब होता है, पर अगर जैसे कोई किसान भाई बहन है जो 6 बजे गाय को दूहते हैं और अगले दिन 7 बजे दुहें और फिर उससे अगले दिन 8 बजे दुहें तो उससे क्या होता है कि दूध की उत्पादन क्षमता भी उससे प्रभावित होती है, साथ में फैट भी प्रतिशत उससे प्रभावित होता है और साथ में स्थनीला रोग होने की भी जो है ज्यादा चांसेस हैं।
1: डॉक्टर साहब
2: कई बार जो गाय के या भैंस के दूध में क्या होता है रंग उसका लाल रंग हो जाता है, मतलब उसमें है कि उसका जो खून है वो मिल रहा है दूध में।

0: तो इसके बहुत सारे कारण हैं, पर एक कारण ये भी है कि खनिज तत्व आप उसको नहीं दे रहे हैं, जिसको कि हम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं बोलते हैं, जो कैल्शियम होता है। क्योंकि कैल्शियम जो होता है कि वो दूध की नली को बंद करने के लिए और जितने भी हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नलियाँ, उनके लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसको खनिज मिश्रण देना शुरू कर दें। आप 50 ग्राम की मात्रा में खनिज मिश्रण दें तो देखना आप उस परिवर्तन हो जाएगा। पर फिर भी अगर आपको लग रहा है तो नज़दीकी जो पशु चिकित्सक से आप संपर्क करें, पर आप अभी उसको खनिज मिश्रण देना शुरू कर दें, उससे उसका जो रंग है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पशुओं को जो शरीर निर्वाह के लिए आपको 1.5 से 2 किलो दाना तो देना होता है, पर उसके ऊपर आप क्या करते हैं कि पशु उत्पादन, जो पशु उत्पादन कर रहा है दूध, उसके हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया कि 2.5 किलो दूध पे आपने 1 किलो दाना देना है। जैसे आप 2 किलो दाना दे रहे, तो एटलीस्ट आपके 4 से 5 किलो के करीब आपको दाना मिश्रण देना है। अब दाना मिश्रण भी आप इस तरह से दें कि उसमें अनाज भी हो, खलें भी हों और खनिज तत्व भी हों। ऐसा ना करें कि सिर्फ अनाज आप दे रहे हो, तो आपको संतुलित आहार देंगे तभी उसमें फैट जो प्रतिशत है बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, जैसे आप बाईपास फैट जो है वो दे सकते हो गाय को, तो उससे भी फैट की प्रतिशत जो है उसमें दूध में बढ़ जाएगा।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, थनैला रोग है, तो जी थनैला रोग क्या ये जानलेवा बीमारी भी है पशु ताइए, या अक्सर जी इसका इलाज संभव है?
0: थनेला रोग का अगर हम समय पे उपचार करें तो जानलेवा तो है नहीं है,
1: हाँ
0: पर
1: जी
0: अगर इसका इलाज सही से ना करें तो पशु के जो दूध देने वाली ग्रंथियां वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और पशु दूध देना बंद कर देता है। तो इसका एक तो है कि आप पशु को जो पोषण है उसमें कमी है,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: दूसरा साफ़ सफाई में कमी है। ये दो मेन कारण है थनेला रोग होने के। तो पशुओं के आहार में अगर कैल्शियम और खनिज तत्वों की कमी हो तो भी थनेला रोग हो जाता है। तो जितने भी दुधारू पशु हैं उनको जो खनिज मिश्रण है, खनिज तत्व हैं, वो जरूर दें। और साथ में दूध दुहने के बाद जो है, पशुओं का दूध दुहने से पहले और दूध दुहने के बाद पशुओं के जो थनों को अच्छी तरह से साफ करें, और
1: जी
0: साथ में जो बिछावन होता है पशुओं का वो भी
1: हाँ
0: साफ
1: जी
0: होना चाहिए। अगर पशु दूध दुहने के बाद एटलीस्ट 45 मिनट तक वो खड़े रहने चाहिए, बैठने नहीं चाहिए, क्योंकि जो
1: अच्छा
0: दूध की नली जो होती है खुली रहती है,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: दूध की नली से ही वो जीवाणु विषाणु अंदर चले जाएंगे और उससे वो संक्रमित कर देते हैं। वैसे तो जो गर्भवती पशु को 6 महीने से ही उसकी जो है डाइट जो है बढ़ाना जरूरी है उसको, पर अब ऐसा है कि अब इस समय आप 2 से 3 किलो के करीब उसको दाना मिश्रण दें और हरा चारा दें उसको, अच्छा सा हरा चारा दें। और साथ में जैसे कि पशु का प्रसव होने वाला होगा 2 से 3 दिन में पता चल जाता है उसमें, उस समय हल्का आहार दें। हल्का आहार बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप चोकर लें, जैसे 1-1.5 किलो आपने चोकर ले लिया, 1.5 किलो आपने दाना मिश्रण दे लिया, और उसमें कुछ खनिज तत्व और 500 ग्राम के करीब आप गुड़ डालें और थोड़े से गुनगुने पानी में डाल के उसको दें। 3 कर दिन पहले, प्रसव होने से पहले देना है आपने, और तब देना है जैसे प्रसव होने के 2-3 दिन पहले देना है, और वो ही फीड आपने करीब 4 से 5 दिनों तक आपने उस तरह से देनी है गुनगुने पानी में मिला के। फिर जब 4-5 दिन हो जाएंगे उसके बाद आप जो नियमित दाना मिश्रण देते हैं, जैसे पैलेट फॉर्म में देते हैं, मैश फॉर्म में देते हैं, वो आप दे सकते हैं, जो नियमित दाना मिश्रण दें। तो जैसे ही प्रसव हो जाएगा, बच्चा निकल जाएगा, तो आपने उसको खनिज मिश्रण अवश्य दें, क्योंकि जैसे दूध देने पशु शुरू करता है तो उसके दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर आप कैल्शियम बाहर से नहीं देंगे तो पशु बैठ जाता है या उसकी जेर अटक जाती है, थनीला रोग हो जाता है। तो खनिज तत्व 30 से 50 ग्राम के करीब आप उसके आहार में जरूर डालें, खनिज तत्व उसके आहार में।
1: जी तो डॉक्टर साहब जी, जियां कि तुहां संतुलित आहार दे उपर भी जिहड़ी दसा करदे आंदा कम लागत जड़ अगर हाँ अपने पशुओं जो जड़ा सह संतुलित आहार अगर अहां दे पशु पालक भाइयां करे अगर बनाना है तो कियां बना सह कर, जियां तुहां दस्या भी है थोड़ा और दसा भी कम लागत बिच जड़ा सह कियां बना सकदे हां?
0: अक्सर हमारे किसान भाई बहन बोलते हैं कि दाने की कीमत बहुत ज़्यादा होगी, तो पशु आहार में जो दाना मिश्रण होता है उसी की लागत में सबसे ज़्यादा होती है।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: अब अगर हम दाना मिश्रण कम कर दें या कुछ इस तरह से हम पशु को खिलाएं कि दाना मिश्रण की कमी ना हो, तभी हम लागत को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए करें कि हरा चारा, जैसे बहुवर्षीय घासें होती है,
1: हाँ
0: जैसे
1: जी
0: संकर, नेपियर, बाजरा, गीनी घास होती है, अंजन घास है,
1: हाँ जी
0: वो पशुपालक उगा सकते हैं। तो उससे सारे साल हरे चारे की उपलब्धता हो सकती है। और जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, वो भी उगा सकते हैं।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: और हरे चारे को साइलेज के रूप में संरक्षित कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि हरा चारा सारा साल मिलेगा।
1: हाँ जी
0: और अगर पशु, अगर बरसीम होगी, जई होगी, तो ऐसा है कि 5 किलो अगर बरसीम और जई अगर किसान भाई बहन खिला सकते हैं तो 1 किलो दाना मिश्रण कम कर सकते हैं,
1: हाँ
0: तो उससे
1: जी
0: क्या है कि पशु आहार की लागत जो है कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा हरा चारा उगा पाएंगे किसान भाई बहन उतना ही लागत कम हो जाएगी। और साथ में जो हरा चारा होता है उसमें विटामिन ए होती है कि जो कि पशु के प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है।
1: हाँ जी
0: दूसरा ऐसा कर सकते हैं जैसे हरा चारा को कटाई करके जैसे चैप कटर में छोटे छोटे हिस्सों में काट के और उसको सूखे चारे के साथ जैसे बीट स्ट्रॉ हो गई उसके साथ भूसे के साथ मिक्स करके पशु को खिलाएं तो वो भी उससे भी लागत कम कर सकते हैं।
2: किसान साथियों, ये असा पशु दे संबंध जानकारी अहां सुनी है। कहने जेड़े भी असा दे पशु पालक हन, चाहे से छोटे स्तर पर काम करते हैं चाहे बड़े स्तर पर करते हैं, तो सानू अपने पशुओं का ध्यान के भी रखना बड़ा बड़ी जरूरी है। और जेड़े पशु विशेषज्ञ होंगे उन्हां सोगी भी अहां संपर्क में रहना चाहिए, ताकि कोई भी पशु च ऐसी वैसी कोई गल होंगी तो अहां सीधे अपने जेड़े नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं उन्हां सोगी संपर्क साधी सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अजकल गर्मियों का मौसम और गर्मियों के मौसम च अहां जो अपने पशु धन का खास ध्यान रखने की जरूरत होंगी है ना।
2: जी जी जी
1: अजकल गर्मी के मौसम समय समय पर तेना जो पानी का पौष्टिक आहार देना जरूरी होता, खनिज लभण जी कि साढ़े डॉक्टर साहब दसा करते है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और कन्ने ही उन्होंने जोड़ा स्थान है रहने का घराला न चाहे बाहर बनने की जगह न तिथु साफ सफाई जी से अजकल बड़ा जरूरी बनी जाता है ना।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि उस बीच जोड़े से मक्खी मच्छर अजकल गर्मी के मौसम च बड़े ज़्यादा तैयार होआ करते, तो सह साढ़े पशु धन जो ज़्यादा तंग करते और उससे क्या होंगे कि साढ़ा पशुधन जोड़ा से उन्होंने तंग हो के उन्होंने उत्पादन भी जोड़ा से दूध उत्पादन भी घटी जाता है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इस बीच जोड़ा से सू साफ सफाई रख के समय समय पर अहाँ दवाई वगैरह का अपने घराला च अपने बैक वगैरह जितू होंगी पशुओं के बैठने उतु छिड़काव करके तो मक्खी मच्छर का जोड़ा प्रकोप है सह घटता, तो इससे साढ़ा पशु भी जोड़ा से आनंदित रहना, उस जो भी जोड़ा से अच्छा खाने जो मिलगा पानी समय पर मिलगा तो से अच्छा उत्पादन जोड़ा से दुध दे सकते है ना।
2: बिल्कुल,
1: इसके कन्ने ही हूँ हाँ चलना कांगड़ा सब्जी मंडी की तरफ और अज के जोड़े थोक भाव न सह कुछ इस तरह न। सब तो पहले गल करिए आलू 8 से 10 रुपये प्रति किलो, प्याज 18 से 22, टमाटर 14 से 18, लहसुन 100 से 110, अदरक 80 से 90, शिमला मिर्च 14 से 16 रुपये प्रति किलो, अरबी 40 से 50, खीरा 10 से 15, मटर 55 से 60, फुल गोभी 22 से 25, बंद गोभी 8 से 10 रुपये, बैंगन 15 से 20 रुपये, कद्दू 10 से 35 रुपये, मूली 10 से 20 रुपये, टिंडा 35 से 40, पालक 25 से 30, हरी मिर्च 35 से 40 रुपये प्रति किलो, हरा धनिया 30 से 35 रुपये प्रति किलो, तोरी 30 से 35, भिंडी 30 से 35, घिया 10 से 12 रुपये प्रति किलो, करेला 15 से 20, फ्रांस बीन 35 से 40, गाजर 20 से 25, मशरूम 160 से 170 रुपये प्रति किलो रही है। इस दे कन्ने कन्ने अहां गल करिए मेथी की, तो मेथी दे अज थोक भाव कांगड़ा सब्जी मंडी च उपलब्ध नहीं। कन्ने ही गल करिए फलां दी, तो फलां च सेब 120 से 150 रुपये प्रति किलो, केला 40 से 50 रुपये प्रति दर्जन, अनार 120 से 150 रुपये प्रति किलो, अनानास 40 से 50, अमरूद 80 से 90, मौसमी 60 से 70, पपीता 40 से 50, संतरा 100 से 110 रुपये प्रति किलो, खरबूजा 25 से 40, तरबूज 14 से 18, अंगूर 120 से 130 रुपये,
2: जी
1: आम 70 से 80 रुपये, और तोता किस्म का जोड़ा आम वैसे 60 से 70 रुपये प्रति किलो रहा, नींबू 130 से 140, कने कीवी जोड़ा से पर पीस 30 से 35, और माल्टा 130 से 140 रुपये आज कांगड़ा सब्जी मंडी च रहे।
2: जी तो किसान साथी फिर यहाँ सारे रली मिल सुनना एक प्यारा दे लोकगीत, तो सुनते ने लोकगीत
1: जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने

0: और विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का किया आह्वान। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए कल 7 मई से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया होगी शुरू। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 3 दिन 26, 28 और 30 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित, अधिसूचना जारी। मंडी नगर निगम के बहना वार्ड में सभी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिए वापस, फिलहाल चुनाव प्रक्रिया टली। लाहौल स्पीति की मालंग पंचायत में सभी सदस्य निर्विरोध चयनित। और प्रदेश भाजपा का आरोप, ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की हताशा व निराशा का प्रमाण। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का उनका आदर्श आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता के समय था। कविंद्र गुप्ता ने छात्रों से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करने, नशा मुक्त जीवन अपनाने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने का आग्रह भी किया। इस बीच राज्यपाल ने हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के वार्षिक समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस दौरान राज्यपाल ने महाविद्यालय की आधुनिक नई डेंटल वैन सेवा का शुभारंभ भी किया। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए कल 7 मई से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन 8 और 11 मई को भी भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 12 मई को होगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव होगा। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं, जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 52,349 युवा पहली बार वोट डालेंगे। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 3 दिन 26, 28 और 30 मई को राज्य में सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन तिथियों को सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान व पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित क्षेत्रों में स्थित दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दैनिक व वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी ये अवकाश सवैतनिक होगा। इसके अलावा उन कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है जो राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं और उनके पास पंचायती राज संस्थाओं में मतदान का अधिकार प्राप्त है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि तय मानकों के मुताबिक 100 शिक्षण संस्थानों में अभी भी विद्यार्थियों की संख्या न के बराबर है और ऐसे शिक्षण संस्थानों को बंद करने पर सरकार विचार करेगी। शिक्षा मंत्री ने 12वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम में सरकारी स्कूलों के बच्चों के बेहतर प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई।
1: तो हमने कोई 30-35 स्कूल जहाँ पर जीरो इनरोलमेंट थी वो प्राइमरी मिडिल स्कूल बंद किए हैं। बाकी अभी जो हमने मानक शुरू में बनाए थे 2023 के आसपास जो मानक बने थे लेस देन 5 वाले, उसके बारे में विभाग ने जो फाइल है वो मुख्यमंत्री जी के पास भेजी है, तो शीघ्र उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। और उसमें भी लगभग कोई 100 के आसपास स्कूल ऐसे स्कूल और आते हैं जिनको एक तरह से डाउनग्रेड या मर्ज किया जाएगा विद इन डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर्स।
0: रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हो रही बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बारिश व ओलावृष्टि से सेब की फसल को ही शुरुआती आंकलन के मुताबिक 40% नुकसान हो चुका है। रोहित ठाकुर ने कहा कि मौसम में आए इस बदलाव से

0: सेब ही नहीं बल्कि अन्य फलों व फसलों को भी नुकसान हुआ है।
1: मौसमी वर्षा हो रही है, काफी अनसीजनल रेनफॉल हुई है और निश्चित रूप का इसका नुकसान हमारी कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफी हुई है। चाहे हम ओलावृष्टि की बात करें, इस वर्ष ओवरऑल रिपोर्ट्स आ रही है वो मात्र कुछ हाई क्षेत्र में संतोषजनक क्रॉप है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ये ओलावृष्टि की जद में आ रही है, तो इसका काफी नुकसान कृषि और बागवानी क्षेत्र का हो रहा है। अन्य जो हमारी फसलें होती है उसकी भी क्षति हो रही है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 4 नगर निगमों धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन सहित 47 शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन था। मंडी नगर निगम के बहना वार्ड में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय सहित सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं। इसके साथ ही इस वार्ड में चुनाव प्रक्रिया फिलहाल टल गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: मंडी नगर निगम चुनावों के बीच एक चौंकाने वाला और अभूतपूर्व घटनाक्रम सामने आया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 14 बहना में चुनावी गतिविधियां उस समय पूरी तरह रुक गई जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय सहित सभी प्रत्याशियों ने दोपहर 3 बजे की अंतिम समय सीमा तक अपने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। इसके साथ ही इस वार्ड में चुनाव प्रक्रिया फिलहाल टल गई है। यह निर्णय पिछले 2 दिनों से बन रहे जनदबाव का परिणाम है। बहना क्षेत्र के ग्रामीण लगातार बैठकें कर रहे थे और सभी प्रत्याशियों से चुनाव मैदान से हटने की अपील कर रहे थे। अंततः जनता की एकजुटता के आगे सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पीछे हटना पड़ा। इस सामूहिक निर्णय के पीछे मुख्य कारण बहना के लोगों की पुरानी मांग है, जिसमें वे अपने क्षेत्र को नगर निगम की सीमा से बाहर निकालने का दबाव बना रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम में शामिल किए जाने के बाद उन पर करों का बोझ तो बढ़ा है, लेकिन उसके अनुरूप उन्हें शहरी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: वहीं लाहौल स्पीति जिले की नवगठित ग्राम पंचायत मालंग में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से पंचायत का गठन करते हुए सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव किया। पंचायत के 5 वार्डों में भी बिना चुनाव के ही सभी सदस्य चुने गए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: लाहौल स्पीति के नवगठित ग्राम पंचायत मालंग में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से पंचायत का गठन करते हुए सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव किया। पंचायत के 5 वार्डों में भी बिना चुनाव के ही सदस्य चुने गए। उपप्रधान अनिल सहगल ने बताया कि पंचायत को निर्विरोध चुनने का निर्णय गांव के विकास और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का लाभ पंचायत को मिलेगा, जिससे विकास कार्यों को गति दी जाएगी। ग्रामीणों ने भी इस निर्णय पर खुशी जताई और कहा कि भविष्य में भी पंचायत के प्रतिनिधियों का चयन आपसी सहमति से किया जाएगा, ताकि गांव में एकता बनी रहे और सभी क्षेत्रों का समान विकास हो सके। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनाव को लेकर आज शिमला में एक बैठक आयोजित की। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर चुनावी हार के बाद ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की राजनीतिक आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में भाजपा की विजय जनता का स्पष्ट और लोकतांत्रिक जनादेश है। बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार से जनता पूरी तरह निराश हो चुकी है और विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों में भाजपा की जीत होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला शिमला द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर विकास नगर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में सहसर कार्यवाह आलोक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का प्रेरणादायक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन का संकल्प है। आलोक ने कहा कि इस संकल्प का मूल उद्देश्य समाज के विभिन्न आयामों को सुदृढ़ करते हुए एक समरस, जागरूक और उत्तरदायी राष्ट्र का निर्माण करना है। इस अवसर पर प्रांत संघ चालक प्रोफेसर वीर सिंह रांगड़ा, विभाग संघ चालक राजकुमार वर्मा और जिला संघ चालक अजय सूद मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का किया आह्वान। प्रदेश के 3,754 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए कल 7 मई से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया होगी शुरू। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 3 दिन 26, 28 और 30 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित, अधिसूचना जारी। मंडी नगर निगम के बहना वार्ड में सभी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिए वापस, फिलहाल चुनाव प्रक्रिया टली। लाहौल स्पीति की मालंग पंचायत में सभी सदस्य निर्विरोध चयनित। और प्रदेश भाजपा का आरोप, ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की हताशा व निराशा का प्रमाण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। आइए सुनते हैं देशगान।
5: भारत माँ पर जब जब भी संकट आया, ऋषियों, मुनियों, विद्वानों और वीरों ने एक ही सपना देखा और उसे साकार किया।

0: देशगान अभी आपने सुना।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की आवाज में गाए इस गजल के साथ।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
3: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
5: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।
6: मेरे

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब लीजिए सुनिए पंकज उदास को।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ये कलाम। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फ़तेह अली खान।

नुसरत फ़तेह अली खान को अभी आप सुन रहे थे और इसके साथ ही आज का विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 होने को हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन तथा उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
4: President Tholan conveyed Vietnam's support on the issue of
5: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
4: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
2: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
3: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नाडियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
1: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
4: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नव गठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
5: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई, जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
6: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पारागमन के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. India and Vietnam agree to enhance trade, investment and technological partnership. Prime Minister Narendra Modi and visiting Vietnamese President Tho Lam announce several measures to keep shared heritage of the two countries alive. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. Swearing-in ceremony of BJP government in West Bengal to be held on Saturday at Brigade Parade Ground in Kolkata. US and Iran reported to be close to an agreement to end conflict and relax movement through Strait of Hormuz. And Indian boxers ensure 27 out of 30 medals at Asia.

किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में अभी हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म सत्ते पे सत्ता का ये गीत। श्रोताओ आपको बता दें कि एक ही गीतकार में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार गुलशन बाबरा के लिखे कुछ चुनिंदा गीत। अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में।

श्रोताओ, एक ही कलाकार में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार गुलशन वावरा के लिखे कुछ चुनिंदा गीत। हिंदी सिनेमा के प्रख्यात गीतकार थे जिन्होंने लगभग 50 वर्षों के करियर में 250 से अधिक सदाबहार गीत लिखे। उपकार, जंजीर, सत्ते पे सत्ता जैसी फिल्मों के लिए मशहूर उन्होंने देश प्रेमी गीतों से भी अपार लोकप्रियता हासिल की थी। उनका असली नाम गुलशन कुमार मेहता था और उनका जन्म अविभाजित भारत के शेखपुरा, जो कि पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। उन्होंने विभाजन की त्रासदी झेली, जिसमें माता पिता को खो दिया। शुरुआत में वे भारतीय रेलवे में क्लर्क के रूप में काम करते थे और गीत लिखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो आइए सुनते हैं गुलशन बाबरा की आवाज़ की लिखा हुआ एक और गीत मन्ना डे की आवाज़ में।

श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं गीतकार गुलशन बाबरा के लिखे कुछ चुनिंदा गीत। गुलशन बाबरा ने 1959 में फिल्म सट्टा बाजार से उन्हें पहचान मिली थी। उन्हें उपकार फिल्म के लिए, जो कि 1967 में बनी थी, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला था। 7 अगस्त 2009 को मुंबई में उनका निधन हो गया था। वे न केवल एक गीतकार थे, बल्कि उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया था, जैसे उपकार और बीबी हो तो ऐसी। इन फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया था।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से चर्चा का विषय है कार्यक्रम रिले किया जाएगा।
1: समय की धारा में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भूगोल की सीमाओं से नहीं बल्कि विश्वास, संघर्ष और साझा सपनों से तय होते हैं। भारत और वियतनाम, दो देश, दो संस्कृतियां, लेकिन एक समान धड़कन, स्वतंत्रता, संप्रभुता और शांति की। इतिहास गवाह है कि जब दो सभ्यताएं बुद्ध के शांति संदेश और साझी विरासत से जुड़ी हों तो उनकी दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर खरी उतरती है। आज भारत और वियतनाम के संबंध कुछ इसी मोड़ पर हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं और ये यात्रा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि जज्बाती और रणनीतिक भी है। 1972 में स्थापित कूटनीतिक संबंध और 2016 में बनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी आज 2026 में ये एक नए पड़ाव पर खड़ी है। राष्ट्रपति तो लम की बोध गया कि पवित्र धरती से शुरू हुई ये यात्रा अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई इबारत लिख रही है। रक्षा सौदों से लेकर सेमीकंडक्टर तक और चंपा सभ्यता के मंदिरों के संरक्षण से लेकर डिजिटल पेमेंट की जुगलबंदी तक, आज हम वियतनाम के साथ एक ऐसा भविष्य बुन रहे हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि

0: का आधार बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आज का हमारा विषय है भारत और वियतनाम के मजबूत संबंध। हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत आसियान के गुरजीत सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: गुरजीत जी। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो भारत और वियतनाम के रिश्ते हैं, इनका बहुत समृद्ध इतिहास है, लेकिन राष्ट्रपति तो लम ने अपनी यात्रा की शुरुआत जो बोध गया से की, कूटनीतिक नजरिए से इस सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक जुड़ाव के क्या मायने हैं?
1: जैसे आप जानते हैं कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है और प्रेसिडेंट तो लम उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है। इसलिए जब एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अपना विजिट एक सांस्कृतिक जगह से शुरू करते हैं
0: जी,
1: तो थोड़ा अचंबा होता है, लेकिन यही दिखाता है कि वियतनाम भी कितना बदल गया है। पिछले दो साल में जब भारत से गौतम बुद्ध की कुछ रिलिक्स वहां भेजे गए थे तो जो पॉपुलैरिटी उनको वहां मिली वो देखने लायक थी। तो मेरे ख्याल अब वियतनाम के लीडर्स को भी ये पता चल गया है कि उनके देश में अभी तक बुद्धिज्म का प्रभाव काफी है, इसलिए जब बुद्धिज्म के जन्म स्थान भारत में आओ तो वहां पर ये बात जरूर करनी चाहिए। तो उन्होंने वहां से शुरू किया और अगर आप जो अग्रीमेंट्स हुई हैं वो देखें, उसमें भी बुद्धिज्म के ऊपर नालंदा से और अक्सर कई और जगह से संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है।
0: जी बिल्कुल, भारत ने वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया और अब लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC पर बात हो रही है। वियतनाम के लिए भारत एक भरोसेमंद रक्षा भागीदार के रूप में कैसे उभर रहा है? थोड़े हमारे श्रोताओं के लिए आसान शब्दों में इसे आप बता पाए।
1: जो आसियान के देश है वो अक्सर भारत को चीन के मुकाबले में एक बैलेंसिंग देश की तरह देखते हैं। वियतनाम उन देशों में से है जिसकी चीन के साथ एक रंजिश रहती है, खासकर क्योंकि जब से चीन ने जो कई टापू होते हैं उनको अपने घेरे में ले लिया और वहां जहां पर वियतनाम की लोग थे या कोई ऑयल ड्रिलिंग थी या कोई सेना की टुकड़ी थी उनको भगा भेजा, जैसे वो अब फिलीपींस के साथ कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये वियतनाम के साथ भी किया। तो वियतनाम की जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना है उसमें भारत एक अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि भारत वियतनाम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके बाद 10 साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और तब से ये जो सुरक्षा के संबंध हैं वो आगे बढ़े। 2023 में शायद एक इंडिया वियतनाम डिफेंस विजन डॉक्यूमेंट भी साइन किया गया। तो ये एक स्तंभ है भारत और वियतनाम के रिश्तों का जो बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जिससे उन्होंने भारत से छोटे पेट्रोल क्राफ्ट लिए, भारत ने INS कृपाण उनको भेंट में दिया और भारत अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कई सालों से चली हुई बातचीत जो ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर है वो कब निर्णय दौर तक पहुंचेगी।
0: प्रोफेसर मिश्रा, वियतनाम ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का विकल्प बन रहा है। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं?
2: देखिए, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वियतनाम ये चाहता है कि 2045 तक, और इस साल उनके दो इमोय रिफॉर्म्स के 40 साल पूरे हो रहे हैं, जो एक व्यापक पैमाने पे आर्थिक रिफॉर्मेशन जो वियतनाम में हुआ 1986 से उसका नतीजा है। तो अब वियतनाम चाहता है कि वो आर्थिक विकास के सेकंड स्टेज में पहुंचे और एक विकसित देश बने 2045 तक। इसको मद्देनजर रखते हुए वियतनाम की अपनी सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम की जो नीतियां हैं, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भारत से मेल खाती हैं। भारत और वियतनाम की आकांक्षाएं इन तमाम क्षेत्रों में मेल खाती हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में भारत और वियतनाम दोनों साझा प्रयास कर सकते हैं कि भारत और वियतनाम दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करें और दोनों ही देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में रीजनल हब्स बने, अपनी अपनी आवश्यकताओं और अपनी अपनी आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। साथ ही साथ सोलर और बैटरीज का प्रोडक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें

0: लिथियम बैटरीज का बड़ा योगदान है, निकल की उसमें बहुत जरूरत है। इन तमाम क्षेत्रों में वियतनाम एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार हो सकता है। आसियान के बाकी देश भी हैं जिनके साथ भारत सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, इसमें सिंगापुर भी है और मलेशिया भी है। पूर्वी एशिया के देशों को हम देखें तो उसमें ताइवान भी आता है, जापान और साउथ कोरिया हैं जो बड़े महत्वपूर्ण देश हैं। तो वियतनाम सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें भारत के साथ काम कर सकता है, चिप्स के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में भारत के साथ काम कर सकता है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, हमारे पास वो चिप्स बनाने की क्षमताएं तो हैं, लेकिन हमें वो रिसोर्सेज के लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी है उनके लिए जो रिसोर्स चाहिए, उनके लिए जो माल और मिनरल्स चाहिए, उसके लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर भारत और वियतनाम मिलकर काम करते हैं तो शायद इन क्षेत्रों में ये कमी पूरी की जा सकती है, जहां भारत की तकनीकी क्षमता और वियतनाम एक बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं लेकिन उनका मिनरल जो रिसोर्सेज हैं और मिनरल जो कैपेसिटीज हैं उनका हम फायदा उठा सकते हैं और दोनों देशों का इसमें लाभ होगा।
1: आज प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले समय में भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट यानी आईटीका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर सहमति भी बनाई जा रही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: हमने भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट आईटीका को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई। इससे भारत और आसियान के सभी देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और एनर्जी सहयोग में नई पहलों से हम दोनों देशों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस सुनिश्चित करेंगे।
1: गुरजीत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि भारत आसियान ट्रेड अग्रीमेंट जो आईटीका है इसको अपडेट करने की बात चल रही है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि इससे दोनों देशों के बीच जो पहल है वो किस स्तर पर जाएगी, क्योंकि इसमें क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, रेयर अर्थ भी है और एनर्जी सहयोग पर भी चर्चा हो रही है।
3: आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट ये 2009 में शुरू हुई थी और 2019 से इसका रिव्यू होना था, लेकिन आसियान के देशों ने उसका रिव्यू काफी डिले किया और ये रिव्यू जाके 2023 में फाइनली शुरू हुआ और उम्मीद ये थी कि एक या दो साल में हो जाएगा, हम तो चाहते थे कुछ महीने में हो जाए, लेकिन आसियान ने बोला 2025। आप देखिए 2025 तो निकल गया और हम 2026 के बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी वो रिव्यू कंप्लीट नहीं है। अब इस रिव्यू में अगर आप देखें तो वियतनाम जैसे देश जो भारत के इकोनॉमिक पार्टनर हैं उनको एक पॉजिटिव रोल करना चाहिए कि ये अग्रीमेंट जल्दी हो, लेकिन मेरे को लगता है कि सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस ऐसे देशों के अलावा जो बाकी भारत के पार्टनर्स हैं, खासकर इंडोनेशिया और वियतनाम जो बड़े पार्टनर हैं, उनमें कोई दिलचस्पी कमजोर नजर आती है, तो वो डॉक्यूमेंट में तो डाल देते हैं कि हाँ इसे जल्दी होना चाहिए, लेकिन जब बातचीत होती है उस समय पीछे हट जाते हैं। सब जगह स्टेटमेंट में यही आता है कि वियतनाम भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है आसियान, लेकिन अगर आप देखें जो 16 बिलियन डॉलर की ट्रेड है वो वियतनाम को पांचवें स्थान में रखती है आसियान के अंदर। भारत का आसियान का जो ट्रेड है 120 बिलियन डॉलर है, उसका 10% से थोड़ा ऊपर वियतनाम का है, सबसे बड़ा इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर, फिर थाईलैंड और मलेशिया, तो वियतनाम तो बीच में आता है और वियतनाम अब कह रहा है कि हम अगले 4 साल में इसको शायद 30 बिलियन डॉलर तक ले जाए, हो सकता है। लेकिन जो ये ट्रेड बढ़ रही है इसमें वियतनाम की एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रही हैं, भारत की एक्सपोर्ट्स कम बढ़ रही हैं, तो इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। अब वियतनाम की दिलचस्पी आईटीका में तब बढ़ेगी जब वो समझता है कि उसके एक्सपोर्ट भारत की मार्केट में ज्यादा आ सके, लेकिन वो जो अपनी मार्केट एक्सेस देना चाहिए, इंडोनेशिया और वियतनाम उन देशों में से है जो अपनी मार्केट एक्सेस भारत के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अब देखिए जो वियतनाम है ना उसका जीडीपी पर कैपिटा भारत से दुगना है, तो वो कोई ऐसा डेवलपिंग कंट्री नहीं है कि जैसे कि म्यांमार हो या कैम्बोडिया हो, तो उसका भी दर्जा आगे बढ़ चुका है और उसके देखिए क्या एफटीएज है यूरोप के साथ और जापान के साथ और अब वो सीपीटीपीपी में भी शामिल है, तो वियतनाम एफटीए से डरता नहीं, वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसको हमेशा दिलचस्पी वही होती है कि बड़ी मार्केट्स में मेरे को मार्केट एक्सेस। और जापानीज और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल एरिया में काफी मजबूत है और उससे वो और देशों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहता है। भारत से वो क्या चाहता है? भारत से वो चाहता है, पहले बफलो मीट जाता था, दवाइयां जाती हैं, अब उसको चावल की जरूरत पड़ गई। पहले तो चावल वो अपने आप काफी मंगा, चावल की जरूरत पड़ गई है, कुछ और खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ गई है। जो डिजिटल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए आसियान देशों के लिए भारत महत्वपूर्ण है और वियतनाम के लिए भी।
1: जी बिल्कुल। प्रोफेसर मिश्रा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापार अब $16 बिलियन को पार कर गया है और 2030 तक का जो लक्ष्य है वो $25 बिलियन का है। ऐसे में आईटीका की समीक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है?
0: देखिए, भारत और वियतनाम के जो व्यापार संबंध है उनमें द्विपक्षीय जो आयाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और वियतनाम के व्यापार संबंध पहले से ही, जब ये इंडिया आसियान FTA नहीं साइन हुआ था उसके पहले से ही काफ़ी मजबूत थे। उसकी अपनी सीमाएं जरूर थी, उसकी अपनी लिमिटेशन जरूर थी, लेकिन ये इवन कील पे चल रहा था, एक अलग पायदान पे चल रहा था। भारत आसियान FTA का जहां तक सवाल है, ये भारत और आसियान के 10 देशों के साथ व्यापार संबंधों का एक प्लेटफॉर्म है, तो उस लिहाज से तमाम जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस आईटीगा से या भारत आसियान FTA से बहुत फायदा उठा रहे हैं और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। वियतनाम उन देशों में नहीं है जिसके साथ भारत को इस व्यापार समझौते में दिक्कत है। समीक्षा होनी चाहिए उन क्षेत्रों में जहां भारत इन आसियान के देशों से इम्पोर्ट तो कर रहा है लेकिन उसे एक्सपोर्ट करने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही, पर्याप्त अवसर नहीं मिल। वियतनाम के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, आज ही जो 13 MOU साइन हुए हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि क्रिटिकल मिनरल्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोलर टेक्नोलॉजी हो या EV व्हीकल्स हो, वियतनाम EV व्हीकल्स में बहुत एडवांस लेवल पे है। और अगर भारत चाहता है कि चीन के साथ हमारे EV व्हीकल्स को लेकर के एग्रीमेंट्स में जो समस्याएं आ रही हैं उसको कोई देश रिप्लेस करे तो वियतनाम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो मुझे लगता है आईटीगा के संदर्भ में भारत की चिंताएं दूसरे देशों से ज़्यादा हैं बनस्पत वियतनाम के, और उन देशों में वो देश जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भारत को ऐसे मौके नहीं दे रहे हैं जिससे भारत का व्यापार बढ़े। सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें तमाम देश, सिंगापुर को और मलेशिया को छोड़ दीजिए, तो तमाम देश सर्विसेज सेक्टर में भारत को ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं। और ये वो जिसमें फिलीपींस आता है, एक बड़े पैमाने पर एक देश आता है। एग्रीकल्चर फिशरीज एक्सपोर्ट्स में भारत आसियान क्षेत्र में जगह बनाना चाहता है। सर्विसेज सेक्टर जैसा कि मैंने कहा उस क्षेत्र में भी समस्याएं हैं। तो आईटीगा का जो री एवेल्युएशन होता है उसमें इन चिंताओं को दूर किया जाएगा, और भारत सरकार ने भी कहा है कि आईटीगा का जो फिर से मूल्यांकन होगा उसमें हम उन समस्याओं को रेखांकित करेंगे। आसियान एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म के तौर पर उस समस्याओं को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। वियतनाम के साथ संबंध आगे बढ़ाते हुए हम इस काम को कर सकते हैं, आसियान के साथ इन चिंताओं को आपस में डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश के साथ।
1: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस विषय पर, और प्रधानमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि आज किन किन समझौते पर भारत और वियतनाम के बीच हस्ताक्षर हुए।
2: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुँच चुका है। 2030 तक इसे $25 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच MOU से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। भारत के एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी वियतनाम तक एक्सपोर्ट और सुगम होने जा रहा है। बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद लेगा और हम वियतनाम के ड्रियन और पोमेलो का।
1: आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि UPI और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की भी बात उन्होंने कही कि बहुत जल्द ये जोड़ने की चर्चा चल रही है। आप कैसे देखते हैं कि इससे दोनों देशों के पर्यटन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे लाभ होगा?
0: पिछले 5 सालों में भारत से जो आउटबाउंड टूरिस्ट है, भारतीय सैलानी जो वियतनाम जाते हैं, उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जब एक भारतीय सैलानी वियतनाम जैसे देश में जाता है जहां उसे चीज़ों को समझने में और अपनी खरीदारी करने में, होटल्स में जाने में, जब उसे अपना UPI सिस्टम और अपना जो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है वो दिखता है, तो उसके लिए बड़ी आसानी होती है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही एक हिस्सा है एक छोटे पैमाने पे जहां कंज्यूमर कस्टमर को की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है, तो इससे मुझे लगता है दोनों देशों

0: के पर्यटन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, वियतनाम की तरफ से भी, क्योंकि वियतनाम की करेंसी को अगर हम देखें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तो बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन भारतीय रुपए के मुकाबले भी काफ़ी वो कमज़ोर है। तो जब वियतनामी एक टूरिस्ट भारत आता है और ख़ास तौर पर बोधगया जैसे जो हमारे बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं वहाँ जाता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना बहुत आसान होगा, और इससे इन सैलानियों को भी ये समझ आएगा कि भारत में यात्रा करना काफ़ी आसान हो गया है, और उनके लिए इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है काफ़ी सुगम होगा और काफ़ी आसान होगा उनके लिए भारत में यात्रा करना या भारतीयों के लिए वियतनाम यात्रा करना।
1: और आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सौन और नान टवर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे।
1: गुरजीत जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी अभी जिक्र कर रहे थे कि चंपा सभ्यता की पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और मंदिरों के संरक्षण के प्रयासों में भारत सहयोग देगा, आप भारत की विरासत और विकास की नीति को कैसे देखते हैं?
3: ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप वियतनाम की जो चंपा सिविलाइजेशन है उसके पुराने प्राचीन मंदिरों में जाएं, खासकर माइसॉन के ऊपर एक अग्रीमेंट भी इस बार साइन किया गया डिजिटाइजेशन। अब माइसॉन में शिव की जो मूर्तियां हैं और शिव के मंदिर हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वहां देखा जाता है कि भारत का प्राचीन जो एक इन्फ्लुएंस था वो कहां चंपा तक पहुंच गया। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए भारत का सहयोग बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारे लिए वो केवल सहयोग नहीं, हमारी तो विरासत है
1: जी।
3: और हम वियतनाम के साथ उसको साझा करना चाहते। यही अगर आप सांस्कृतिक प्रक्रियाएं अभी नए इस दौर में देखें तो आप देखेंगे जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो बहुत बढ़ गया। सबसे ज्यादा तो देखिए कि जो वियतनाम की एयरलाइंस हैं, वियतजेट फॉर वियतनाम एयरलाइंस, वो भारत बहुत आ रही है, और उसके बाद भारत की एयरलाइन ने वहां जाना शुरू कर दिया डायरेक्ट। अब यहां से हर हफ्ते 90 फ्लाइट्स भारत के शहरों से वियतनाम के शहरों में जाती है, और ये सब बड़े शहरों में से ना शुरू होती है ना खत्म होती है, वियतनाम के छोटे शहरों में, भारत के टियर टू शहरों में जाती है। आजकल आम हिंदुस्तानी वियतनाम की छोटी छोटी जगहों का नाम जानता है क्योंकि बहुत सारे लोग वहां हो आए। तो पिछले साल तकरीबन 1 मिलियन टूरिस्ट भारत से वियतनाम गए। वियतनाम से यहाँ इतने को ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, इसलिए बुद्धिस्ट सर्किट को उचित रूप से आगे बढ़ाना अभी हमारा काम है। लेकिन ये वहां से भारत की ओर आने वाले जो लोग हैं वो केवल टूरिज्म के लिए नहीं आए। तो आज की जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें एजुकेशन की बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण रोल है, वो बढ़ाएगा पीपल टू पीपल करें और बिजनेस बढ़ाएगा। तो ये दो चीजें अगर आगे बढ़े तो मेरे को लगता है कि हमारी जो विरासत है उसका नया रूप भी आगे आएगा, और वो वहां से आकर हमारी विरासत देख पाएंगे और हमारे लोग जाकर वहां पर चंपा की विरासत देख पाएंगे और देखेंगे उसमें भारत का कितना इन्फ्लुएंस।
1: प्रोफेसर मिश्रा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं या फिर विजन सागर की बात करते हैं तो वियतनाम भारत के लिए कितना अनिवार्य है?
0: बहुत सालों पहले जब भारत की लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति नहीं आई थी तब भी भारत वियतनाम के साथ ऐसे ही मजबूती से खड़ा था जैसे आज है। जब उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में संघर्ष हो रहा था तब भारत ने होचिमिन का साथ दिया, होचिमिन 1959 में भारत आए, और तब से लेके 1972 में जब वियतनाम का एकीकरण हुआ तब से भारत वियतनाम के साथ है। 1979 में भूतपूर्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी चीन की यात्रा बीच में रद्द करके इसलिए चले आए क्योंकि चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था। ये सब एक्ट ईस्ट नीति से पहले ही हुआ था। तो भारत और वियतनाम की जो दोस्ती है वो मुझे लगता है कि आसियान के कॉन्टेक्स्ट में या एक्ट ईस्ट नीति के कॉन्टेक्स्ट में एक सेंट्रल पिलर है, जिसमें भरोसा सिर्फ इस बात का नहीं है कि दोनों देशों का फायदा हो रहा है, भरोसा इन दोनों देशों के बीच में, जनता के बीच में है, नेताओं के बीच में है, पॉलिसी मेकर्स के बीच में है, और ये जो डीप ट्रस्ट है दोनों देशों के लोगों के बीच में, इनके पॉलिसी मेकर्स के बीच में, ये मुझे लगता है कि वियतनाम को एक्ट ईस्ट का सेंटर बनाता है। और भारत की जो सागर नीति थी, अभी महासागर में परिवर्तित हो चुकी है, उसको हम देखें या इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव देखें या एक्ट ईस्ट को ही देखें, जिसमें सामरिक तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे हुए, 2026 में पूरे हो रहे हैं, और अब हमने इसे एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया, जिसमें रक्षा का मामला हो या सामुद्रिक सुरक्षा का मामला हो, आर्थिक विकास हो या पर्यटन शिक्षा क्षेत्र हो या न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में वियतनाम के साथ भारत साथ काम करना चाहता है, मिलकर काम करना चाहता है, और इस न सिर्फ इन द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है, बल्कि साथ ही वो चाहता है कि वियतनाम की भी आसियान क्षेत्र में वियतनाम भारत के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद देश के तौर पे स्थापित रहे, और इससे दूसरे देश भी सबक लें। जैसे भारत की रक्षा क्षेत्र में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इस बार भी हमने 500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की, जिससे भारत के जो रक्षा उपकरण है, मेक इन इंडिया नीति के तहत जो भारत का रक्षा एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे वियतनाम फायदा उठा सके, क्योंकि वियतनाम की चिंताएं बहुत गहन है दक्षिण पूर्व चीन सागर में, चीन को लेकर के जो भी चीन की 9-line है या दक्षिण पूर्व सागर में उसकी जो आक्रामक नीतियां हैं, उससे निपटने के लिए भी वियतनाम को एक भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है, जो रक्षा के एक्सपोर्ट में उससे फायदा ना उठाए। सो प्रॉफिट मेकिंग भारत की विदेश नीति में या भारत के रक्षा एक्सपोर्ट में नहीं, वियतनाम इसको समझता है, इसको अप्रिशिएट करता है, और इसलिए भारत और वियतनाम के संबंधों में इतना ज्यादा ट्रस्ट लेवल है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप रक्षा क्षेत्र की बात करें, दोनों देश सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जिसे विनबैक्स के नाम से जाना जाता है, इसके थोड़े प्रभाव के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: दोनों ही देशों के बीच में तमाम मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, नेवी के बीच में हो रही है, एयरफोर्स के बीच में हो रही है। बीते दिनों में जंगल वॉरफेयर के क्षेत्र में दोनों देशों ने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की। ये जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं उसके कई उद्देश्य होते हैं, जिसमें चार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला तो है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, कि आप जिस सागर में, जो हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट आपको वियतनाम से जोड़ता है, उस क्षेत्र को समझना, जिसको हम कहते हैं कि सिचुएशनल अवेयरनेस करना, पहला उसका एस्पेक्ट है। दूसरा है थ्रेट अवेयरनेस, कि हम दोनों देशों के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में, दूसरे देशों से कोई हमें सामरिक चिंताएं हैं या मैरिटाइम पायरेसी है या गन रनिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नार्कोटिक्स है, इन तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों की साझा चिंताएं क्या है, उनको हम दूर करें। और तीसरी चीज है, इन तमाम चिंताओं से निपटने के लिए हम इंटर ऑपरेबिलिटी की ओर आगे बढ़ें। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम दोनों ही देश ये जो कॉमन चैलेंजेस, ये जो साझा खतरे और चिंताएं हैं, उनको साथ मिलकर के कैसे, कंधे से कंधा मिला के हम कैसे इन चिंताओं को दूर करें, तो ये प्रमुख तौर पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन साथ में ये भी होता है कि दोनों ही देशों की आर्म फोर्सेस, नेवी हो या एयरफोर्स हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी हो, ये तमाम जो भारत और वियतनाम की जो सेनाएं हैं, वो एक दूसरे को समझें, कि इस तरह के आगे आने वाले समय में कभी ऐसी जरूरत पड़े कि भारत और वियतनाम को साथ मिलकर कोई युद्ध लड़ना हो या इस तरह की टेरेन में जाना हो, तो उनके लिए ये एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस ना हो। तो डोमेन अवेयरनेस जरूरी है, टेरेन अवेयरनेस जरूरी है, और साथ में इंटर ऑपरेबिलिटी जरूरी है, कि दोनों देश मिल करके कैसे एक साझा चिंता या चैलेंज या खतरे को कैसे निपट सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि आने वाले समय में कई क्षेत्रों में भारत और वियतनाम आगे बढ़ने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के रूप में उभर रहे हैं। अब हमारी एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम एक दूसरे की रैपिड ग्रोथ के सहायक बनेंगे।
1: प्रोफेसर मिश्रा, युवा, तकनीक और स्किल डेवलपमेंट, क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये तीन मजबूत स्तंभ हो सकते हैं भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों के बीच? चूंकि आज जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें शिक्षा भी एक है।
0: जी बिल्कुल, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को हर जगह कहते हैं, दूसरे हमारे तमाम मित्र देशों के साथ जो भी हाल के दिनों में समझौते हुए हैं, उसमें युवाओं को लेकर के हमेशा एक स्पेसिफिक फोकस रहा है, क्योंकि भारत की आधी जनता ये युवा वर्ग है और जिसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की। तो युवाओं को कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको कैसे रीस्किल किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे वो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज के और शिक्षा संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख सकें और उन्हें वापस आकर भारत के विकास में कैसे अपना योगदान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम देखते हैं कि हर मित्र देश के साथ MOU में ये शिक्षा

0: क्षेत्र या स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र दिखता है। नई जो तकनीक आ रही है ये युवाओं पर ही निर्भर है कि नई तकनीक को सीखा जाए, उसको विकास में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकलकेट किया जाए, उसको विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में कैसे जो नई स्किल्स को सीखा गया है उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और उसको कैसे भारत के आर्थिक विकास में और आर्थिक प्रगति में कैसे उसको जोड़ा जाए, तो ये हमेशा से ही मुझे लगता है कि एक प्रमुख फोकस का मुद्दा रहा है और इसीलिए ये MOUs में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है।
1: गुरजीत जी, आपसे बहुत संक्षेप में ये समझना चाहेंगे कि भारत वियतनाम संबंधों को अगले एक दशक में आप कहां देखते हैं?
2: मैं समझता हूं भारत वियतनाम के जो संबंध है उनको चीन का प्रिज्म से हटा देना चाहिए। ना हमको समझना चाहिए कि वो चीन से कभी लड़ने को तैयार होंगे, वो नहीं होंगे, और ना उनको समझना चाहिए हम चीन के अगेंस्ट बैलेंसर हैं। इसको अगर हमने हटा दिया तो फिर बराबरी के हिसाब से अगर देखें तो हमें न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना है। भारत की तकरीबन $1 बिलियन का निवेश है वियतनाम में और वियतनाम का निवेश आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, अभी तो तकरीबन 60 मिलियन तक पहुंचा है, लेकिन उनके पास नई आधुनिक टेक्नोलॉजीज है और उससे वो समझ लीजिए आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आजकल वियतनाम से भी इंडिया में बन रही है और बिक रही है। तो हमें ऐसी चीजों, हाई इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ, इन चीजों से मिलकर एक सप्लाई चेन बनानी चाहिए। हमारा फायदा है अगर हम ITGA के अंडर एक सप्लाई चेन बना ले वियतनाम के साथ, तो जो वियतनाम के इतने सारे FTAs हैं उनका साझा करके भारत की कंपनियों को भी बहुत फायदा हो सकता है। मैं ये समझता हूँ हमारे आगे का दौर होना चाहिए।
1: गुरजीत जी, प्रोफेसर राहुल मिश्रा आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: भारत और वियतनाम, ये रिश्ता सिर्फ समझौतों और आंकड़ों का नहीं है, ये भरोसे, सम्मान और साझा मूल्यों का रिश्ता है। बोधगया की शांति से लेकर इंडो पैसिफिक की रणनीतिक गहराइयों तक दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आज जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है तब भारत और वियतनाम एक स्थिर, संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी का उदाहरण बनकर उभर रहे हैं। राष्ट्रपति तो लम की ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसे भविष्य की जहां सहयोग, विकास और सुरक्षा तीनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा कहती है, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और दोनों मिलकर अंधकार को दूर करते हैं। भारत और वियतनाम के बारे में यही कहा जा सकता है, दो राष्ट्र एक साझा रोशनी। ये कार्यक्रम आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
3: चर्चा का विषय है। FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं रूपक।

0: भारत माँ के बहादुर सपूत, आजादी के मतवाले सैनिकों में एक नाम है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर। अभिनय और जादुई संगीत की गूंज से जिन्होंने खिलाफत की अपने देश में अंग्रेजी साम्राज्य की। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने न जाने कितने ही जवानों को प्रेरित किया और विस्तार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित आजाद हिंद फौज का
1: अमर क्रांतिवीर तथा प्रख्यात संगीतकार कैप्टन राम सिंह का जन्म धर्मशाला के निकट गांव खन्यारा में 15 अगस्त 1914 को एक फौजी परिवार में हुआ। इनके पिता श्री दिलीप सिंह ठाकुर एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक थे। एक कर्मठ सैनिक होने के कारण इनके पिता श्री अपने घर की ओर पूर्ण रूप से ध्यान दे पाने में असमर्थ थे। बालक राम सिंह ठाकुर का पालन पोषण इनके नाना श्री नत्थूचंद ठाकुर जी के घर पर हुआ। इनके नाना शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। इन्हीं की छत्रछाया में बालक राम सिंह ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बालक राम सिंह बांसुरी और हारमोनियम में लीन रहते।

0: संगीत में अपार रुचि होने के कारण केवल माध्यमिक स्तर तक ही पढ़ सके।
1: जनवरी 1928 ईस्वी में धर्मशाला छावनी में स्थित सेकेंड फर्स्ट गोरखा राइफल्स के प्रमुख सेना अधिकारी कर्नल फेरल ने बालक राम सिंह की संगीत के प्रति अथाह रुचि को देखा और उन्हें रिक्रूट बॉय बैंड में भर्ती कर लिया। सैनिक जीवन के आरंभ में ही इन्होंने सेना बैंड के अधिकारियों लेफ्टिनेंट हॉडसन तथा लेफ्टिनेंट डेनिस से ब्रास बैंड, स्ट्रिंग बैंड तथा डांस बैंड में दक्षता प्राप्त की। कैप्टन रोज ने बालक राम सिंह ठाकुर की संगीत के प्रति अपार रुचि को भांपते हुए इन्हें वायलिन बजाना सिखाया। भारतवर्ष की शाही सेना में कार्य करते हुए राम सिंह ठाकुर अपनी चतुरता, फुर्ती और जोश के कारण लोकप्रिय हो गए और वर्ष 1941 में अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण कंपनी हवलदार मेजर का पद प्राप्त करने में सफल रहे।
2: दिसंबर 1941 में ही जापानियों ने मलाया थाईलैंड सीमा पर जोरदार हमला किया।
1: फलस्वरूप अंग्रेजी सेना सिंगापुर से पीछे की ओर हटने लगी।
2: इसीलिए उसी वर्ष राम सिंह ठाकुर को मुंबई से अपनी यूनिट के साथ सिंगापुर मलाया की ओर जाने के आदेश मिले।
1: उधर जापान ने मित्र राष्ट्रों को युद्ध में लपेटने की धमकी दी हुई थी।
2: अमेरिका और ब्रिटेन की मित्र सेनाएं जापान से बदला लेने को आतुर थीं।
1: देखते ही देखते इस युद्ध ने वर्ष 1942 में भयंकर रूप धारण कर लिया।
2: इस युद्ध में जापान मित्र सेनाओं पर हावी रहा।
1: जापान ने मित्र सेनाओं को बर्मा, मलाया, थाईलैंड, सिंगापुर तथा अंडमान निकोबार की धरती से खदेड़ना शुरू किया
2: और हजारों सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया।
1: उनमें से एक नाम था राम सिंह ठाकुर।
2: इस युद्ध की सफलता के बाद जापान ने युद्धबंदियों को भारत की आजादी के पक्ष में करना शुरू कर दिया।
1: सबसे पहले केवल 200 ही युद्धबंदियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्ष में किया।
2: इनमें मोहन सिंह, पूर्ण सिंह तथा अल्लादिता सहित एक नाम था राम सिंह ठाकुर।
0: उधर जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन हो ही रहा था कि यहाँ इन युद्धबंदियों को वॉलंटियर बनाकर पूज्य रास बिहारी बोस भी एक फौज का गठन करना चाहते थे। जापान सरकार समस्त युद्धबंदियों के साथ थी। जून 1942 में बैंकॉक में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन जापानी सरकार ने करवाया। यहाँ इंडिया इंडियंस लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस चुने गए। फिर काउंसिल ऑफ एक्शन बनी और गठन हुआ आजाद हिंद फौज का।
2: इस फौज में प्रथम 14 पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन मोहन सिंह को सेनाध्यक्ष का पद और राम सिंह को कैप्टन के पद से विभूषित किया गया। 3 जुलाई सन 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पधारे।

0: सुभाष जी वे जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पर हिंद को वे शाने हिंद आ गए।
1: देश प्रेम के गीतों के लिए राम सिंह ठाकुर द्वारा तैयार की गई मधुर धुनों से नेताजी का मन प्रसन्न हो उठा।
2: आजादीन फौज की आर्जी हुकूमत जब बनने की तैयारी हुई तो नेताजी ने कहा कि जब हमारी आर्जी हुकूमत बनेगी तो हम अपना कौमी तराना गाएंगे। उस कौमी तराने को, उसकी धुन को राम सिंह आपको बनाना है। नींद आने वाली धुन की जरूरत नहीं, जगा देने वाली धुन होनी चाहिए। मैंने कहा नेताजी आपके आशीर्वाद से जैसे आप चाहते वैसा ही धुन होगा। तो जन गण मन अधिनायक जय हो के गीत को नेताजी ने, आबिद हसन साहब ने और उच्च अधिकारी ने उसकी तर्जुमा ट्रांसलेशन हिंदी में की और वो गीत हमारा कौमी तराना बना जो आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ।
3: शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भागे जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा।

0: इस गीत को सुनकर नेताजी ने कैप्टन राम सिंह की पीठ थपथपाई और कहा,
1: मैं एक ऐसा गीत सुनना चाहता हूँ जिसे समस्त आजाद हिंद फौज के सेनानी और भारतवासी मिलजुल कर गाएं और उमंग में आकर आगे और आगे बढ़ते जाएं।
0: राम सिंह ठाकुर ने अपने एक साथी कवि क्रांतिवीर सेनानी मुमताज हुसैन के साथ मिलकर ये गीत लिखा और धुन बनाई

नेताजी 21 अक्टूबर सन 1943 को फिर से सिंगापुर पधारे। इस अवसर पर राम सिंह ठाकुर ने उन्हें ये गीत सहगान के रूप में सुनाया। इस गीत को सुनकर नेताजी राम सिंह ठाकुर से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इन्हें अपनी ओर से एक जर्मन वायलिन भेंट किया।

0: इस वायलिन से वो गीत बजाया जाए जिसे बजाते हुए महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारी आजाद हिंद फौज दिल्ली में लाल किले पर अपना प्यारा तिरंगा झंडा फहराए।
1: हर रोज की तरह युवा कैप्टन राम सिंह ठाकुर अपने संगीत के संसार में लीन रहते। गीत संगीत और अभिनय के माध्यम से हजारों सैनिकों के मध्य मिलजुल कर लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते। स्वतंत्रता सेनानी श्री चरण सिंह जी का कहना है,
2: मैं उनके साथ संपर्क में था जब हम सिंगापुर में पहुंचे। सिंगापुर में हम कैदी थे तो उस वक्त वो आया करते थे हमारे कैंप में। हमें आ करके वो अपना कुछ मंत्र बताते थे कि आप अब हिंदुस्तान को आज़ाद करना है तो अब हमने INA में जाना, नेताजी की फौज में जाना।

नेताजी उस वक़्त आ चुके थे, तो उस वक़्त वो आ करके हमें ये बातें बताते रहते थे। वही थे हमारे एक किस्म का गुरु, समझिए कुछ भी समझिए। उन्होंने हमें INA में आने के लिए इन्हीं तक हमें उत्साह किया। उनके कहने पर उनके यानी उसमें आ करके फिर हम भी उनके INA में हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए छलांग लगा दिए जी। और वो बिल्कुल हठीले गठीले और बिल्कुल तकड़े और छोटा सा आदमी था वो। उस वक़्त हार्डली कोई 4.5 फुट ही होंगे उस वक़्त। तो वो आकर के बड़े रूप से वो आते थे और बड़े उनका चाल जो था बड़ा फुर्तीला, ठक ठक ठक ठक करके वो ऐसे चलते थे। तो बहुत हंसमुख थे और बड़ा जब आदमी से वो बात करते थे तो बड़े हंसमुख से और बहुत मिलनसार आदमी थे वो। तो हमें उनके संपर्क में आकर के हमने भी कुछ थोड़ा बहुत उनसे सीखा ऐसी ऐसी बातें।

रंगून और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज ने अपने रेडियो स्टेशन स्थापित किए। राम सिंह ठाकुर को इनका संगीत निर्देशक नियुक्त किया।

0: स्वतंत्रता सेनानी श्री होशियार सिंह जी ने इनके बारे में कहा।
1: 40 में जब लड़ाई हुआ तो हम इकट्ठे ही थे, उसके बाद फिर हम मलाई में इकट्ठा हुआ ईपो में, ईपो के बाद हम कोलालमपुर में जब आज़ाद हिंद आईएनए खड़ा हुआ था उस टाइम में वो मिजुक का डायरेक्टर था, मिजुक का गाना गुना गाते थे और वो आम जो इंडियन आर्मी का जो जवान है उनको एडवर्टाइजमेंट करते थे कि आप आज़ाद हिंद फौज में आए और अपना देश के लिए काम करें, उनका ये प्रथम उसका कार्य था, हमारे देश के आज़ादी के लिए ये कार्य है, इसलिए हमें अपने तन मन धन कुर्बान करके काम करना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज जब बना सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको म्यूजिक डायरेक्टर बनाया और उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे गाना बनाए हैं जोशीला, जैसे उन्होंने एक गाना जवान के लिए बनाया था, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। हम दोनों एक ही कंपनी में था, हेडक्वार्टर कंपनी में, और हम ऐसे प्रेम से बैठते थे, वो बहुत दिलचस्प आदमी थे गाना गाने के लिए, नाचने के लिए, और हर ड्रामा में वो पार्ट लेते थे, दशहरे में पार्ट लेते थे, दुनिया को मनोरंजन देते थे, बहुत खुश करते थे, वो तरह तरह के बाजे बजाते थे, वायलिन सैक्सफोन क्लैरिनेट, और ये बजा के वो सबको मनोरंजन करते थे देश में पल्टन में, तो उनका बहुत नाम था कि राम सिंह ने सब जवानों को खुश करके रखा है बटालियन में, और बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत ज्ञानवान विद्वान आदमी थे।
0: इस दौरान उन्होंने अनेक देश प्रेम के गीतों को मधुर संगीत में सजाकर उक्त रेडियो द्वारा प्रसारित किया। रेडियो के ये दोनों केंद्र केवल एक ही नाम रेडियो शियोनॉन के रूप में अपना दैनिक कार्यक्रम प्रसारित करते। कार्यक्रमों का शुभारंभ व समापन भारतीय राष्ट्रीय गान शुभ सुख चैन की बरखा बरसे से होता था।

0: और इस तरह रेडियो शिनॉन के माध्यम से कैप्टन राम सिंह ठाकुर समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत किया करते। क्रांतिवीरों ने देशभक्ति के गीत लिखे और कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने स्वरबद्ध तथा संगीतबद्ध किया उन गीतों को।
1: वर्ष 1945 ईस्वी के मई माह में ब्रिटिश सेना ने रंगून पर अधिकार कर लिया
2: और राम सिंह ठाकुर को बंदी बनाकर भारत लाया गया।
1: यहां लाकर लाल किला दिल्ली में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया।
2: इनका कसूर था कि इन्होंने गीत संगीत और अभिनय के माध्यम से हुकूमत के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया था।
1: अब कैप्टन राम सिंह ठाकुर के समक्ष अगर कुछ था तो वह केवल फांसी का फंदा।
2: अपील, दलील और वकील, ये तीनों ही सूत्र उनके लिए अर्थहीन सिद्ध हो चुके थे।
1: पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई।
2: अदालत में अंग्रेजी सरकार सहगल, ढिल्लो व शाहनवाज का केस ही हार गई
1: और आपको समस्त युद्ध बंदियों के साथ रिहा कर दिया गया।
2: इसी दौरान इनकी भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई।
1: नेहरू जी इनकी देशभक्ति व संगीत प्रतिभा से प्रभावित हुए,
2: इन्हें अपना कार्य जारी रखने के लिए कहा
1: और इस तरह कैप्टन राम सिंह ठाकुर अपने संगीत दल के साथ देश भर में भ्रमण किया करते और लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत करते।
2: इसी दौरान इन्हें पुनः पुलिस ने पकड़कर दिल्ली छावनी के कारागार में डाल दिया।
1: इसी वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल्ली छावनी के कारागार में स्वतंत्रता प्रेमी बंदियों से मिलने पधारे। कैप्टन राम सिंह ने नेताजी द्वारा भेंट में दी गई वायलिन पर देशभक्ति के गीत बजाना आरंभ कर दिया। गांधी जी ने इनके सिर पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। इनके आगमन के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सुबह ही इन्हें जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी के चले जाने के बाद अंग्रेजी सरकार ने कैप्टन राम सिंह को पुनः बंदी बनाकर मुल्तान की जेल में बंद कर दिया।
0: 11 अप्रैल 1946 को यहां से रिहा होने के पश्चात अपने पैतृक स्थान धर्मशाला वापस आए। योलकैंट में अपने पुराने मित्रों से मिलने गए। उन दिनों योलकैंट की सैनिक बैरकों में इटली के सैनिक बंदी भी थे जिनके पास अनेक वाद्य यंत्र थे। इटली के इन सैनिक बंदियों ने कैप्टन राम सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया और अपने समस्त वाद्य यंत्र इन्हें भेंट स्वरूप प्रदान कर दिए।
1: आखिर 15 अगस्त 1947 का शुभ दिन आ गया। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। इस शुभ अवसर पर राम सिंह ठाकुर ने अपने संगीत दल के साथ दिल्ली में लाल किले पर अपनी बनाई राष्ट्रगान की धुन बजाई और ये राष्ट्रगान था, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग्य है जागा।

0: प्रथम स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर नेहरू जी ने कैप्टन राम सिंह ठाकुर के प्रति ये कहा,
1: He is great.

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में कैप्टन राम सिंह ठाकुर को उनके संगीत दल सही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस सशस्त्र बल तृतीय वाहिनी में नियुक्त कर लिया। वर्ष 1974 में जब ये सेवा से निवृत्त हुए तब इन्हें इसी पुलिस सशस्त्र बल में आजीवन कार्य करने का सम्मान भी उप पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रदान किया। उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रथम राज्यपाल का पदक 1956 ईस्वी में तथा भारत के राष्ट्रपति का पदक इन्हें वर्ष 1971 ईस्वी में देकर राज्य तथा केंद्रीय सरकार ने सम्मानित किया।

0: कैप्टन राम सिंह ठाकुर, आकाशवाणी धर्मशाला में जुलाई 1999 में हुई भेंटवार्ता के दौरान बताते हैं।
1: नेताजी की जो भावनाएं कल्पनाएं थीं उसको सामने लाएं तो आज देश संकट में जरूर है, लेकिन हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो काबिलियत पुरुष हैं, अफसरान हैं, हम उनके आदेश पर, उनके आज्ञा पर, उनके विचारधारा पर सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और पिछड़े हुए लोगों को भी साथ लेकर अपने साथ आगे रखेंगे और देश को दिन दुनी चार चंदनी आगे बढ़ाते रहेंगे। और मरना जीना तो दुनिया में आता ही जाता है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज जो हमने सपना देखा था और नेताजी ने जो कल्पना की थी वो रूप आया नहीं, लेकिन आने की हम पूरा पूरा चेष्टा करते हैं और विश्वास करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हमारा देश पीछे कभी नहीं होगा, हमेशा आगे ही रहेगा। हमारा देश सारे दुनिया के देश को रास्ता बताएगा कि इस रास्ते से चलो।
0: 8 जनवरी सन 1970 ईस्वी को आजीवन उप पुलिस अधीक्षक, क्रांतिवीर संगीतकार के रूप में राम सिंह ठाकुर को लखनऊ के निवासियों ने अपनी ओर से भव्य सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने उन्हें 1,00,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। सिक्किम सरकार ने भी इन्हें 50,000 रुपए का मास्टर मित्रसेन पुरस्कार प्रदान किया।
2: पंद्रह अप्रैल 2002 ईस्वी के दिन इस अमर क्रांतिवीर संगीतकार के निधन के समाचार ने समस्त देशवासियों को शोकग्रस्त कर दिया। कैप्टन राम सिंह ठाकुर की अद्वितीय देशभक्ति और संगीत कला के माध्यम से भारतवर्ष के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतिहास में उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। राष्ट्र आज भी नतमस्तक है आज़ादी के अमर क्रांतिवीर कैप्टन राम सिंह ठाकुर की अमूल्य देन।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं दोस्ती फिल्म का।

रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया।

अनूप घोषाल को अभी आप सुन रहे थे। मासूम फिल्म से लिया गया ये गीत था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में ये गीत। फिल्म है आपकी कसम।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
1: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnam's President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions. The Prime Minister said, to keep the shared heritage alive, India is restoring the My Son and Nan Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization. President Tho Lam said, Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India, as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. Briefing the media after bilateral talks between Prime Minister Modi and the Vietnamese President, Secretary East in the Ministry of External Affairs P. Kumaran said both countries agreed to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. Acknowledging the advancements made by the Indian pharmaceutical industry, the two sides agreed to explore ways for the potential participation of Indian companies in the procurement of medicines for Vietnamese public healthcare facilities from 2027. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today held talks with his Surinamese counterpart Melvin Bova in Paramaribo. The Indian and Surinamese delegations engaged in a comprehensive review of India-Suriname relations under the aegis of the 9th Joint Commission meeting. They covered trade, investment, defence and energy, development assistance and capacity building, health and mobility, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jaishankar